0: Tanishq, no two diamonds are exactly alike. They're beautifully rare, just like the woman who wears them. That's why this is the perfect time to find yours at the Tanishq Festival of Diamonds, with up to 25% off on diamond value and making charges, plus zero deduction on your old gold exchange above 18 carat. Visit Tanishq Dallas at 2809 Preston Road, number 1200, Frisco, 75034 today. Tanishq, a Tata product. Terms and conditions apply.
1: जी सुनते हो, सोच रही थी बेटे की शादी इंडिया में करे।
2: इंडिया में तो यहाँ जो फ्रेंड्स और रिलेटिव्स हैं, वो कैसे अटेंड करेंगे?
1: पर यहाँ सारी अरेंजमेंट्स मैनेज करना भी तो कितना मुश्किल होगा।
2: हेलो, तुम डैलस में हो, यहाँ कोई भी इवेंट करना सुपर इजी है, स्पेशली जब वैनेसा इवेंट्स का साथ हो।
1: सच में सब संभालेंगे?
2: अरे सब कुछ, वेडिंग हो, हाउस वार्मिंग, ग्रेजुएशन, यू नेम इट, दे डिलीवर। वेन्यू, फोटोग्राफी, हॉस्पिटैलिटी, सब कुछ एक ही जगह। सिग्नेचर इवेंट्स का डेकोर और खाना बाय द रेनॉल्ड बसेरा ग्रैंड ओनली।
3: कॉल हरि बसेरा ऑन 4694428770. Vanessa Events, your celebration partner.
4: ये तारा वो तारा हर तारा।
3: अरे अरे अरे, डैलस के आसमान में इतने सारे तारा नहीं। बिजनेस ओनर्स के लिए तो सिर्फ एक ही तारा काफी है, तारा कमर्शियल एनर्जी। 2002 से टेक्सास के हजारों बिजनेसेस का ट्रस्टेड एनर्जी पार्टनर। होटल्स, गैस स्टेशंस, वेयरहाउसेस, मेडिकल फैसिलिटीज, रिटेल स्टोर्स और ऑफिस बिल्डिंग्स, कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग, पर्सनलाइज्ड एनर्जी सॉल्यूशंस और एक्सेप्शनल कस्टमर सर्विस। तारा कमर्शियल एनर्जी, पावरिंग टेक्सास बिजनेसेस फॉर ओवर 2 decades. कॉल 844-428-2808 और विजिट taraenergy.com टुडे। तारा कमर्शियल एनर्जी, जो आपके बिजनेस को रोशन रखे।
5: Coughing or sneezing at home? Your air ducts may be to blame. And clogged dry vents can even cause fires. Duct Time removes dust, pollen, allergens and lint, giving you cleaner air, better health, energy savings and peace of mind. Serving the DFW area and 15 plus years of experience with CSIA certified technicians and free estimates. Fun Asia listeners get $100 off duct cleaning plus free dryer vent cleaning and sanitizer with service. Call Jeetu Patel at 972-877-2500 or visit callducttime.com. Breathe easy. Live safe with Duck Time.
6: शादी ब्याह का कोई मौका हो या कोई त्योहार, खूबसूरत लिबास खुशियों को दुगना कर देता है।
3: हर खुशी में आपके साथ मान्यवर मोहे, ट्रेडिशनल सेलिब्रेशन वेयर फॉर मेन, वुमेन एंड चिल्ड्रन, क्राफ्टेड विद एक्सक्विजिट ब्लेंडेड फैब्रिक्स। मान्यवर मोहे, लोकेटेड ऑन रीजेंट बुलेवार्ड ऑफ 635 ईस्ट इन इरविंग।
7: इस साल तो कमाल हो गया, हमारा रेवेन्यू डबल हो गया।
8: सर अच्छा है, लेकिन आपने टैक्स प्लानिंग किया?
7: नहीं।
8: बुक कीपिंग अपडेटेड है?
7: नहीं।
8: कैश फ्लो फोरकास्ट बनाया?
7: वो भी नहीं।
8: तो पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त।
3: रेवेन्यू देखकर खुश मत होइए। बिजनेस में तब ऑल इज वेल होगा जब हमारे नंबर्स भी स्ट्रांग हो। फॉर योर टैक्स प्लानिंग, बुक कीपिंग एंड CFO सर्विसेज, विजिट agfintax.com, कॉल 972-618-8555। AG Fintax, योर ग्रोथ आवर स्ट्रेटजी। AG Fintax, led by Forbes Finance Council member Anil Granthi.
9: Services are subject to individual eligibility and applicable laws. Terms and conditions apply.
10: Weekend ka plan abhi tak nahi mara. Bas 90 minutes north of Dallas, Chalk Tower Casino and Resort, Durant mein high visit ban jata hai ek winning experience. Poker ho ya blackjack, exciting slots ho ya phir 20 amazing restaurants mein zabardast dining. Aur agar break chahiye to luxurious sky tower aur relaxing spa aapka intezar kar rahe hain. To sirf lucky feel mat kijiye, lucky ban jaiye. Chalk Tower Casino and Resort, Durant. Entertainment, luxury or excitement, sub ek hi destination mein. Please play responsibly. Must be 21 years or older to game.

दिल चीज क्या है आप मेरी जान लीजिए, बस एक बार मेरा कहा मान लीजिए। डैलस वेलकम। नहीं, मेरा नाम मोनिका बिल्कुल नहीं है, मेरा नाम है आरजे स्वाति और मैं हूँ आपकी ड्राइव टाइम साथी आरजे स्वाति, हंसते मुस्कुराते हुए हैप्पी हैप्पी हैप्पी मूड में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करना चाहती हूँ। डैलस, देखिए मैं अब कहीं जाऊंगी नहीं क्योंकि अब साल भर का कोटा मैं पूरा करके आई हूँ, यानी कि मैं ऑलरेडी इंडिया से वापस आ चुकी हूँ और मेरा कोई इरादा नहीं है डैलस एक बार फिर से आप सभी को छोड़ के जाने का। मैं तो इधर ही बस जाने वाली हूँ। स्वागत नहीं करेंगे डैलस आप हमारा? अरे यार, इतने दिनों के बाद आई हूँ, ऑलमोस्ट एक महीने के बाद आपसे जुड़ने का ये सौभाग्य प्राप्त हुआ है मुझे, वो भी आज से 10 का शो करती हूँ जहाँ पर आपको देती हूँ फ्राइडे वाइब। लेकिन आज 7 बजे से जुड़ गई हूँ क्योंकि मुझसे सबर ही नहीं हो रहा था। मैंने मार्विन को लिटरली धक्के मार के स्टूडियो से बाहर किया है और कहा है कि आप चले जाइए ताकि मैं सत्ता हासिल कर सकूँ। यार वो पक्का रेडियो सुन रहे होंगे अपनी गाड़ी से और फिर वो पक्का मुझे कॉल करके बताएंगे कि तुमने मुझे धक्के मार के नहीं निकाला झूठी। बट कोई बात नहीं, किसी ने किसी को कैसे भी निकाला, मैं अंदर आ चुकी हूँ, मेरा शो शुरू हो चुका है फ्राइडे वाइब और मेरे वाइब के रंग में रंगने के लिए हो जाइए तैयार। जलस आपकी हो कोई स्पेशल फरमाइश तो 9722355555 है स्टूडियो का नंबर और मेरा नाम तो याद रहेगा ना, जैसे राहुल ने पूछा था ना नाम तो याद रहेगा ना, वैसे ही आरजे स्वाति हस्ती मुस्कुराती।

love you all. दोस्तों, ना कोई मंजिल है ना कोई साथी है, फिर भी निकल पड़ा हूं घर से। शायद जिसकी तलाश है वही साथी है, वही मंजिल है।

देखिए, जिंदगी में आना नहीं आना आपका निजी फैसला है, लेकिन फोन कॉल पर तो आप आ ही सकते हैं। आप मेरा हाल चाल पूछ ही सकते हैं। यार, किन दुखों से गुजर कर मैं वहां से यहाँ तक आई, क्या क्या कष्ट उठाने पड़े मुझे, किस तरह के मैंने जिल्लतें सही, मैंने कितना दुख और दर्द पीड़ा झेला, कुछ तो पूछिए यार। डलस, एक महीने का ट्रिप लगाकर आई हूँ, मेरी हाल चाल जानना आपकी जिम्मेदारी बनती है, जैसे मेरी जिम्मेदारी बनती है आपके पार्टी मूड को ऑन रखना एंड कहना कि लेट्स पार्टी एंड पार्टी ऑन माई माइंड।

that at Shri Krishna Jewelers, jewelry is more than an accessory. It's a reflection of tradition, elegance, and timeless beauty. From classic gold designs to sparkling diamonds, and from intricate kundan to stunning polki collections, aapko sab kuch ek chhat ke niche milega, jo hai Shri Krishna Jewelers. Now welcoming you at their new location, 13145 Suite 220 Main Street, Frisco. और आप यहाँ जा सकते हैं इनके शोरूम पर. मुझे पता है क्या मेरे दिमाग में क्या बात चल रही है कि आजकल सारे जो ज्वेलरी के शोरूम्स हैं ना वो फ्रिस्को में ही लोकेट हो रहे हैं. सबके न्यू लोकेशंस मैं देख रही हूँ कि फ्रिस्को में ओपन हो रहे हैं. तो श्री कृष्णा का भी ये नया लोकेशन ओपन हुआ है, ज़रूर विजिट कीजिए. श्री कृष्णा ज्वेलर्स, क्राफ्टिंग फाइन ज्वेलरी एंड चेरिश्ड मेमोरी सिंस 1967. कहेंगे ना आप क्या बात है. जी हाँ, गाने में भी वही वर्ड यूज़ होने वाला है.

वेलकम बैक आफ्टर दिस ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल सॉन्ग। 10 बहाने करके ले गई दिल। देखिए, दिल लेने और देने में अगर बहानों की ज़रूरत पड़ रही है, इसका मतलब आपका प्यार डायलेट सच्चा नहीं है। क्योंकि जो प्यार सच्चा होता है वो हमेशा हमेशा एक्सप्रेशंस पर बिलीव करता है, एंड वो भी बिल्कुल ट्रू एक्सप्रेशंस। मतलब अगर आपके दिल में किसी के लिए कोई बात है, कोई जज्बात है, तो उसे ज़रूर एक्सप्रेस कीजिए। क्योंकि आपको पता होना चाहिए डायलेट्स कि प्यार का दूसरा नाम होता है प्यार को जताना। एंड हम बहुत बार प्यार अंदर रखते हैं लेकिन सामने वाले को नहीं बताते, और ये सोचते हैं कि अगर वो मेरा अपना है तो वो समझ क्यों नहीं जाता। पर लाइफ में अगर आपके पास कोई गाड़ी है, घोड़ा है, कोई मशीन है, हर चीज़ को समय समय पर मेंटेनेंस की ज़रूरत पड़ती है। रिश्तों को भी मेंटेनेंस की ज़रूरत पड़ती है डैलस, और रिश्तों का मेंटेनेंस यही होता है कि जहाँ पर आप रिश्ते में सामने वाले को फॉर ग्रांटेड लेने लगते हैं, वहीं से वो बिगड़ना शुरू हो जाता है। और रिश्तों का मेंटेनेंस अगर करना है तो जो दिल में बात है वो होंठों पे लाइए, और जो होंठों की बात है वो सामने वाले को ज़रूर बताइए। क्या पता सामने वाला सुनने के इंतज़ार में हो, क्या पता सामने वाले को ये लग रहा हो कि आपका प्यार अब ख़त्म हो चुका है। और अगर ऐसी कोई शिकायत आ रही है तो बस एक ही चीज़ करना है, किसी ने आपसे कोई आसमान नहीं मांग लिया है, आपसे वही करने को कहा जा रहा है जो आपके दिल में है लेकिन जबान तक नहीं आ रहा है। जबान पर लाइए और इजहार मोहब्बत कर लीजिए डैलस, और रिश्ते संवारने का ये खूबसूरत मौका पा लीजिए। अब अगर आपको रिश्तों से रिलेटेड और कोई टिप चाहिए तो 104.9 FM फनीशा रेडियो पर मैं आरजे स्वाति ज्ञान की गंगा बहा रही हूँ। आइए और इस ज्ञान की गंगा में अपने पाप धो लीजिए डैलस। पाप नहीं होता प्यार, प्यार तो बड़ा पाक होता है ना। किसी अजनबी से कभी किसी मोड़ पर हो जाती है मुलाकात, हो जाती है बातचीत और ढेर सारा प्यार, और फिर वही अजनबी आपकी जिंदगी का खास हिस्सा बन जाता है। ऐसे कहूं कि वो पूरी जिंदगी बन जाता है, इसमें कुछ गलत नहीं होगा डैलस, है ना।

0: अच्छा, मैनिफेस्ट करने से पहले थोड़ा दोबारा सोच लो, क्योंकि अब डायमंड्स में मिल रहा है बाय टू गेट वन फ्री ऑफर। तन्मय ज्वेलर्स इन अर्विंग, डायमंड रिंग्स, पेंडेंट्स, इयररिंग्स और ब्राइडल ज्वेलरी पर बाय टू गेट वन फ्री, और वो भी सब कुछ होलसेल प्राइस पर। चाहे प्रपोजल हो, वेडिंग हो या बस अपनी स्पार्कल अपग्रेड करनी हो, अब शाइन डबल विद इन बजट। लग्जरी ब्रिलियंस सेलिब्रेशन, तन्मय ज्वेलर्स इन अर्विंग।
1: 2026 में आपकी राशि के लिए धन और सफलता के योग हैं।
2: अरे सुन, ये एस्ट्रोलॉजर बोल रहा है 2026 तेरी राशि वालों के लिए बहुत लकी है।
3: माँ, रील्स पे सब लकी ही होते हैं, जेनेरिक प्रेडिक्शंस सबको थोड़ी हेल्प करती हैं। तो फिर अगर रियल क्लैरिटी चाहिए तो पर्सनलाइज्ड गाइडेंस लो।
4: गाइडेंस की बात हो तो एक ही नाम है, पंडित राम तुलसी, जहाँ एस्ट्रोलॉजी सिर्फ राशियों तक लिमिटेड नहीं बल्कि आपकी पर्सनल जर्नी के हिसाब से गाइड करता है। करियर हो, स्टडीज, शादी या फ्यूचर प्लानिंग, हर डिसीजन अब होगा क्लियर और कॉन्फिडेंट।
3: कॉल पंडित राम तुलसी एट 9797972654 और विजिट astroramji.com।
5: हेलो, वीकेंड लंच इमरजेंसी हेल्पलाइन, हाउ मे आई हेल्प यू?
6: हेलो, मेरे रिलेटिव्स आ रहे हैं, एवरीवन्स आस्किंग लंच में क्या है?
5: फिकर नॉट, वी हैव द perfect solution.
7: The Flavor Lounge in Frisco brings you its all new weekend lunch buffet, from flavorful Indian favorites to live counters and chef special, 25 plus dishes, welcome drink, chaat, appetizers, main course and dessert, Saturday to Sunday 12 p.m. to 3 p.m. This weekend, let the

हेलो नमस्कार एंड वेलकम बैक टू 104.9 एफएम फन एशिया रेडियो. मैं हूं आपकी ड्राइव टाइम साथी हंसती मुस्कुराती स्वाति. ऑलमोस्ट एक महीने के बाद आई एम बैक टू माय हैप्पी प्लेस जहां पर मुझे मिलता है बहुत सारा सुकून. एंड आपसे जुड़ जाने की जो खुशी होती है ना डैलस, वो मेरी आंखों में दिखाई देती है, मेरी आवाज़ में सुनाई देती है. एंड अगर मेरे धड़कते हुए दिल से पूछो तो वहाँ से भी आवाज़ आती है कि आई एम सुपर डुपर हैप्पी टू कनेक्ट विद माई फेवरेट पीपल, दैट इज़ डैलस की जनता. एंड डैलस की जनता को कौन मांगता, ओनली आरजे स्वाति, और वो भी हंसते और मुस्कुराते हुए. नहीं नहीं नहीं नहीं डैलस, नया नया नहीं सीखा मैंने, मुझे हो गए अब 6 साल. वैसे रेडियो पे बुढ़ापा इतनी जल्दी नहीं आता, लेकिन फिर भी मैं हर दिन अपने आप को नया महसूस करती हूँ. एंड इट इज़ बिकॉज ऑफ यू गाइज, क्योंकि आप सबका प्यार, सबका सपोर्ट और सबका जो वाइब होता है ना कलेक्टिवली जब मुझे मिलता है तो मैं अपने आप को और बेहतर फील करना शुरू कर देती हूँ. और यही तो होती है पॉजिटिव एनर्जी की खासियत, जहाँ पर आप सामने वाले की पॉजिटिव एनर्जी से अट्रैक्ट होकर खुद को बेहतर बनाते हैं. और साथी का मतलब वही होता है जो आप जिसके साथ रहे ना तो बेहतर से बेहतरीन फील करने लगे. और उस साथ का क्या ही मतलब जब आप किसी के साथ रहें और बेहतरीन फील ना करें. जैसे मुझे लगता है आपके साथ अच्छा, ऐसे आपको लगता होगा मेरे साथ बेहतरीन बनने का मजा. अच्छा ये बताती हूँ आपको कि बहुत दिनों बाद मेरे एक कॉलर हमारे साथ जुड़े और उनको चाहिए कि मैं उनके लिए खूबसूरत सा गाना प्ले कर दूँ जिनका नाम है सोहेल एंड मरियम. बहुत ही खूबसूरत कपल हैं और फिल्म गैंगस्टर का गाना उनके लिए है लाइंड अप, जहाँ पर कह रहे हैं ये कि शी फेल इन लव विथ हिम द डे शी बिट्रेड हिम. यार प्यार में धोखाधड़ी अच्छी बात नहीं है, प्यार में चुप्पी अच्छी बात नहीं है. प्यार है तो जताइए, प्यार है तो बताइए, प्यार है तो गाना गुनगुनाइए. सिर्फ गाना नहीं गुनगुनाना है डैलस, गाना अगर गुनगुनाना है तो सामने वाले के लिए गुनगुनाना है. डेडिकेट कीजिए.

और अ ब्यूटीफुल नंबर एंड गैंगस्टर लव स्टोरी, मतलब गैंगस्टर की भी इतनी खूबसूरत लव स्टोरी हो सकती है, मैं क्या ही बताऊँ, क्या ही कहने है यार। ये फिल्म मुझे बहुत बहुत ज़्यादा पसंद है एंड दोनों की एक्टिंग कमाल की है। तब मैंने कंगना रनौत को पहली बार देखा था एंड तब मुझे एहसास हुआ था कि डिफरेंट काइंड ऑफ एक्ट्रेस हैं। एंड देखा आपने कि उन्होंने अपनी एक्टिंग का लोहा डैलस डैलस के अंदर नहीं, मतलब बॉलीवुड के अंदर मनवा लिया है डैलस। एंड आपको बता दूं कि अगर आपको भी अपने सपनों का घर चाहिए, वैसे ये सपनों का घर जो है उनको भी मिला सांसद बनने के बाद, जबकि बतौर एक्ट्रेस वो इतनी कामयाब थी। अगर आपको भी अपने सपनों का घर चुनना है तो आपको सांसद बनने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ ड्रीम होम मॉर्गेज को कॉल कीजिए आज के आज 9722455626 एंड पा लीजिए अपने घर को अपना कहने का मौका। या ड्रीम होम मे बी क्लोजर एंड दैट यू थिंक कि आपका ड्रीम होम मॉर्गेज ही ये सपना पूरा कर सकता है। मैं आपको बता रही हूँ, सिंस 1998 ड्रीम होम मॉर्गेज बहुत सारी फैमिलीज को हेल्प कर चुके हैं ताकि वो घर को अपना कह सकें एंड आपको स्ट्रेस फ्री और स्मूथ प्रोसेस से गुजारते हैं ताकि आप उनके साथ काफ़ी कंफर्टेबल फील करें। लाइसेंस्ड इन ऑल 50 स्टेट्स, देयर एक्सपीरियंस्ड टीम इज कमिटेड टू फाइंड द राइट लोन ऑप्शंस टेलर्ड टू योर नीड्स, वेदर यू आर बाइंग योर फर्स्ट होम, अपग्रेडिंग और रीफाइनेंसिंग। आप अपनी जर्नी को ड्रीम होम मॉर्गेज के साथ तय कर सकते हैं। आज ही विजिट कीजिए dreamhomemortgage.com है उनका वेबसाइट एंड उनका नंबर है 9722455626। एक और गाने की रिक्वेस्ट आई थी हीर आसमानी एंड टोनिया की रिक्वेस्ट पर हम ये खूबसूरत गाना चला रहे हैं क्योंकि उन्हें है ऋतिक रोशन बहुत पसंद है।

0: अरे सर, हर गाने का रिमिक्स क्यों कर देते हैं सर? सर, हमारी जनरेशन को ये सब समझ नहीं आता, नहीं आ रहेगा कुछ बोलो यार, छोड़ो यार सर, मेरे को
1: गाने का इक्वल वैल्यू है।
0: अरे कोई कॉल नहीं करेगा भैया गाना,
2: अगर तू समझ नहीं रहा है ये हिट गाना है, तेरे को नहीं करना है तू मत कर, मैं जा रहा हूँ।

एंजॉय कर रहे हैं फ्राइडे वाइब मेरी यानी आरजे स्वाति के साथ। और आज की डेट है अगस्त 14th। यू नो व्हाट डैलस, हम एक दिन दूर हैं इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट करने के लिए। हम इसके बाद जानेंगे कि क्या कुछ इंडिपेंडेंस डे का प्रोग्राम होने वाला है डैलस के अंदर। तब तक एक गाना और एंजॉय करते हैं और इसके बाद हम ज़रूर ज़रूर ब्रेक के उस पार मिलेंगे। एंड उस ब्रेक के उस पार मैं आपको बताऊंगी कि कहाँ होने जा रहा है इंडिया इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट।

0: डालस की धड़कन 104.9 FM फनीजिया रेडियो।
1: नेशन का फन स्टेशन फनीशिया रेडियो

0: tracks that put you...
1: This is the Fun Asia Network. You are listening to Fun Asia Radio 104.9 FM. KZMP 104.9 FM HD1, Pilot Point, Texas. Simulcasting on KTCG 104.1 FM HD2, Sanger, Texas. Powered by Fun Asia Films and Fun Pizza Kitchen.
2: Official tax and finance partner, AG FinTax.
1: Official injury law partner, the law offices of Omar Khwaja.
2: In association with Passion Health Primary Care.
3: यार मॉडर्न मंगलसूत्र ढूंढते ढूंढते थक गई हूँ।
4: तो कैरेट लेन चलो, दे नाउ हैव अ स्टोर इन फ्रिस्को एंड द बेस्ट कलेक्शन ऑफ मॉडर्न मंगलसूत्रस।
3: सीरियसली, कैसा कलेक्शन है?
4: मिनिमल, डायमंड, एलिगेंट, एवरीडे स्टाइल्स। यू विल प्रोबेबली स्पेंड मोर टाइम चूजिंग देन शॉपिंग।
5: फाइंड द मंगलसूत्र दैट मैचेस योर स्टाइल एट कैरेट लेन, होम टू द लार्जेस्ट कलेक्शन ऑफ मॉडर्न मंगलसूत्रस। कैरेट लेन, नाउ ओपन इन फ्रिस्को नेक्स्ट टू तनिष्क।
6: जीनी हुकम मेरे आका, हम आज पार्टी के मूड में हैं। एक ऐसी जगह बताओ जहां मेरी एंट्री ही रॉयल हो।
7: मिराज लाउंज चलिए मेरे आका, लग्जरी लिमोजीन राइड्स आपके इंतजार में हैं।
6: मुझे ज्यादा क्राउड पसंद नहीं।
7: नो प्रॉब्लम आका, लग्जरी प्राइवेट स्पेस भी हाजिर है आपकी प्राइवेट पार्टी के लिए।
6: और एंटरटेनमेंट,
7: मूवी नाइट, बेली डांसिंग नाइट्स, प्रीमियम हुकर्स और अमेजिंग वाइब्स सब आपकी खिदमत में।
6: वाह जीनी, ये जगह है या कोई जादू?
7: जादू नहीं, मिराज लाउंज एट मिकिनी रेंज पार्कवे। मिरेकल्स हैपन इन मिराज।
8: जीत उनकी होती है जिनकी नजर सिर्फ टारगेट पर होती है, चाहे ओलंपिक स्टाइल आर्चरी हो या 10 मीटर्स इंडोर प्रिसिजन शूटिंग। फोकस, डिसिप्लिन, कंसिस्टेंसी। फ्रिस्को प्रिसिजन स्पोर्ट्स एकेडमी, वन एंड ओनली इन नॉर्थ डैलस। फ्रॉम बिगिनर टू कंपेटिटिव एथलीट्स, स्ट्रक्चर्ड कोचिंग, एक्सपर्ट गाइडेंस एंड परफॉर्मेंस ड्रिवन ट्रेनिंग एजेस 8 एंड अबव।
9: फ्रिस्को प्रिसिजन स्पोर्ट्स एकेडमी पावर्ड बाय अर्जुन आर्चरी एकेडमी, कन्वीनिएंटली लोकेटेड ऑन क्वाइट रोड इन फ्रिस्को। विजिट friscoprecisionsports.com और कॉल 469-333-1099.
10: Mention Fun Asia and get 50% off on tryout session.
11: Hello, Weekend Lunch Emergency Helpline. How may I help you?
12: Hello, मेरे relatives आ रहे हैं. Everyone's asking lunch में क्या है?
11: Fikar not. We have the perfect solution.
13: The Flavor Lounge in Frisco brings you its all-new weekend lunch buffet. From flavorful Indian favorites to live counters and chef special, 25-plus dishes, welcome drink, chaat, appetizers, main course and dessert. Saturday to Sunday, 12 p.m. to 3 p.m. This weekend, let the Flavor Lounge do the cooking.
14: Are you looking for a smarter approach to reducing taxes while building and preserving wealth? My Time Equity, a registered investment advisory firm led by CPA Sudhir Pai, offers active portfolio management, structured notes, tax and financial planning, real estate strategies, AI and late stage pre-IPO opportunities, and other alternative investments. Learn how a personalized strategy can help you pursue your financial goals. Visit mytimeequity.com or call 972-330-2771.
15: My Time Equity is a fee-based registered investment advisory firm. This advertisement is for informational purposes only and does not constitute investment, legal or tax advice. Investing involves risk, including the possible loss of principal.
16: Yaar, boss ne fir se daat diya. Traffic alag. और ऊपर से ये स्ट्रेस।
17: अरे रिलैक्स, यू नीड अ कूल थेरेपी।
16: थेरेपी? वो तो बहुत महंगी है।
17: नहीं, कूल मतलब कूल चा थेरेपी।
16: ये क्या होता?
17: सिंपल, चंडीगढ़ बाइट्स एक्सप्रेस इन एलन।
18: चंडीगढ़ बाइट्स एक्सप्रेस सर्विंग सम ऑफ द बेस्ट पंजाबी फूड इन डैलस। फ्रॉम बटरी करीज टू ऑथेंटिक पंजाबी स्ट्रीट फूड फेवरेट्स स्ट्रेट फ्रॉम शेफ गगन पन्नूस किचन। सो नेक्स्ट टाइम लाइफ गेट्स स्ट्रेसफुल, जस्ट टेक अ डोज ऑफ कूल चा थेरेपी एट चंडीगढ़ बाइट्स एक्सप्रेस।
19: एंड नाउ एट अ बिगर लोकेशन जस्ट 3 डोर्स डाउन विद लिमिटेड रिजर्वेशन ऑफ available.
20: If you or your family member is involved in a truck accident, here's what you must do. First, ensure everyone's safety. Next, gather as much information as possible. Make sure you take great photos, talk to any witnesses that may have seen the accident, and ensure that you document all of the information for the truck driver and company. Truck accidents often lead to serious injuries, so don't deal with it alone. Call Attorney Omar at 833-GET-OMAR or visit us online at attorneyomar.com. When it comes to representing your case, our goal is simple. We want you to receive the maximum amount of money you deserve.

जय हो भारत देश की, जय हो भारत के देश की जनता की, और जय हो हमारे डायरेक्स की जनता की। सेलिब्रेट इंडियाज 80th इंडिपेंडेंस डे एट IANT's आनंद बाजार 2026 ऑन सैटरडे अगस्त 15 यानी कि कल फ्रॉम 2 PM ऑनवर्ड्स एट द को अमेरिका सेंटर फ्रिस्को। द बेस्ट पार्ट इज इट्स कम्प्लीटली इंडोर एंड फ्री फॉर everyone. Enjoy authentic Indian food, a grand parade, cultural performances, live म्यूजिक, शॉपिंग, ब्रिंग योर फैमिली फ्रेंड्स एंड जिसको चाहिए उसको लेके आओ एंड बी द पार्ट ऑफ नॉर्थ टेक्सस बिगेस्ट इंडियन इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेशन जो कि हो रहा है IANT की तरफ से आनंद बाजार 2026 यानी कि ये जो मेला लगने वाला है डैलस, इस पे आपको बहुत मज़ा आने वाला है। एक तो अच्छे अच्छे खाने मिलेंगे, फिर आपको ग्रैंड परेड, कल्चरल परफॉर्मेंसेज, लाइव म्यूजिक, शॉपिंग, सब चीज़ का मज़ा एक ही छत के नीचे मिलने वाला है। तो इंडिया का इंडिपेंडेंस डे अपनों के साथ कीजिए सेलिब्रेट और ज़रूर आइए। कल हो कहाँ रहा है आपको फिर से बता दूँ, को अमेरिका सेंटर फ्रिस्को, और ये 2 PM ऑनवर्ड्स आपको के लिए ये सारी चीज़ें शुरू हो जाएंगी। तो आइए और मौज बनाइए और सेलिब्रेट कीजिए हमारे इंडिया का इंडिपेंडेंस डे। और लीजिए एक गाना, जो मुझे रिक्वेस्ट आई थी हमारे एक कॉलर की तरफ से, कॉलर का नाम मैं भूल गई, बट इट्स अ बादशाह सॉन्ग। यू नो व्हाट, बादशाह के सॉन्ग में ऑलरेडी वाइब होता है और वो वाइब आपको फ्राइडे को और ज्यादा मजा दिलाता है।

0: प्यार में चमको जैसे चुगनू।
1: So Dallas, bring your family, friends and your loved ones and be the part of North Texas biggest Indian Independence Day celebration IANT India Anand Bazaar Mela. Ji haan, 2026 ka ye bahut bada celebration hai. Kho America Center, Frisco, August 15 ko from 2 PM onwards. Aana mat bhuliyega. Ab Dallas, हमारे पास डैलस आज रिक्वेस्ट की झड़ी लग चुकी है और इस वक्त बहुत ही खूबसूरत सी रिक्वेस्ट आई है SPB सर के गाने की और हमारे खास दोस्त ने रिक्वेस्ट करी है। तो उन्होंने कहा है, यार वैसे तो मैं आप लोगों से पूछती हूँ कि क्या है कोई रिक्वेस्ट, क्या है कोई डेडिकेशन, लेकिन जब आप ये कह देते हैं ना कि स्वाति जी आप अपनी से चला दीजिए, पता है थोड़ा तो मुझे लगता है कि यार मैंने आपको काम दिया, आपने मुझे वापस से काम दे दिया, तो काम आखिर मुझे ही करना पड़ रहा है ना। लेकिन पता है खुशी किस बात की होती है कि आपको इतना भरोसा होता है डैलस कि मैं आपके मन की बात जान जाऊंगी और वो गाना आपके लिए प्ले कर दूंगी जो शायद आप भी सुनना चाहते हो, जो शायद आपके भी मन को भाता हो। तो ये जो भरोसा आपका मुझ पे होता है ना, यही तो मुझे बेहद पसंद आता है। थैंक यू सो मच इतना ट्रस्ट करने के लिए। तो लीजिए मैं आपका साथ निभाती हूँ। देखिए शाम होने को आ गई है, आप कहाँ हैं डैलस? आपको ढूंढ ढूंढ कर मैं परेशान हो गई हूँ। आज शाम होने आई, मौसम ने ली अंगड़ाई, तो फिर किस बात की है लड़ाई? लड़ाई झगड़ा छोड़ो और गाना एंजॉय करो।

ये तो आइकॉनिक फिल्म दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे का बहुत ही खूबसूरत सा गाना आपने सुना। अब हमारे पास, क्योंकि हम वैसे तो डैलस कल है इंडिपेंडेंस डे, लेकिन हमारे पास आज एक बहुत ही अच्छी और मज़ेदार रिक्वेस्ट आई है, जिसको सुनकर आपको अपनी मिट्टी की खुशबू आने लगेगी और आपको ऐसा लगेगा जैसे आप अपने देश लौट गए हैं। देश की मिट्टी, देश की खुशबू और देश का स्वाद, सब कुछ मिल जाएगा इस गाने के जरिए। तो ये गाना डेडिकेट किया है पूरे भारतवासियों को हमारे एक कॉलर जिनका नाम है अतुल पटेल, और ये गाना हर किसी के दिल को भाता है और हर किसी को अपने से, अपनों के साथ जोड़ जाता है। तो अतुल, थैंक यू सो मच फॉर मेकिंग दिस उम्दा वाला रिक्वेस्ट, जो कि हमको एक और कनेक्टेड फील कराता है।

0: कितने आदमी थे?
1: सरकार पूरा का पूरा डेलिस फनीशिया सुनता है।
2: कहाँ गया, कहाँ रखा था? सुनो ना, मेरा वो वाला सेट कहाँ है?
3: कौन सा?
2: अरे वो गोल वाला, थोड़ा ट्रेडिशनल, उसमें पोलकी भी है।
3: अरे सारे तो सेम है।
2: नहीं, वो श्री कृष्णा से जो लिया था ना हमने, ये देखो ये वाला।
3: ओ हाँ, ये तो अलग है।
4: अलग तो होगा ही, श्री कृष्णा ज्वेलर्स से जो है। From timeless gold and radiant diamonds to heritage polkis, discover Texas's largest handcrafted jewelry collection now at Main Street in Frisco. Shri Krishna Jewelers, crafted for moments that matter. Visit shrikrishna.com.
5: मैं शादी करूंगी तो करीना वाला डिजाइनर लहंगा पहन के करूंगी, वरना दूल्हे को टाटा बाय बाय कर दो।
6: अरे मैडम, करीना वाला लहंगा और आपका बजट मैच करेगा क्या?
4: अब करेगा, बिकॉज इंडियन अटायर फ्रिस्को समर सेल इज ऑन। स्टनिंग लहंगास, एलिगेंट साड़ीज, ब्राइडल ज्वेलरी, मेंस एंड किड्स वेयर।
7: इतना सब और प्राइस?
4: अप टू 25% ऑफ ऑन लहंगास एंड ब्राइडल कलेक्शन समर सेल थ्रू द एंड ऑफ ऑगस्ट ओनली एट इंडियन अटायर फ्रिस्को। ट्रेडिशनल हो या फ्यूजन, अब हर आउटफिट बोलेगा
8: मैं हीरो।
9: इट्स ट्रू, हम अपनी सद्बुद्धि से बहुत सी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं, बट समटाइम्स इवन द बेस्ट नीड अ लिटिल गाइडेंस। विद ओवर 400 इयर्स ऑफ फैमिली ट्रेडिशन थ्रू हिज एक्सटेंसिव नॉलेज ऑफ एस्ट्रोलॉजी एंड पाम रीडिंग, पंडित ईश्वर जी कैन हेल्प यू विद एनी डिफिकल्टी इन योर पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ, फ्रॉम रिलेशनशिप इश्यूज टू नेगेटिव एनर्जी रिमूवल। कॉल द मोस्ट ट्रस्टेड एस्ट्रोलॉजर पंडित ईश्वर जी 9455270897 और विजिट astrologerishwar.com।
10: अगर आपकी नाइट भी तंदूरी डिलाइट के बिना अधूरी लगती है तो ये खबर आपके लिए। दिस समर एंजॉय 20% ऑफ ऑन ऑल एपेटाइजर्स, तंदूरी आइटम्स एंड मॉकटेल्स ओनली एट तंदूरी फ्लेम। चिकन तंदूरी, मलाई चिकन टिक्का, पनीर टिक्का, मोमो या सोया चाप, अब हर बाइट के साथ मिलेगी एक्स्ट्रा सेविंग्स। डाइन इन ओनली एट तंदूरी फ्लेम गार्डन, वेयर एवरी बाइट इज अ सेलिब्रेशन।
11: उठा ले रे देवा, उठा ले रे बाबा, ये बॉक्सेस उठा ले रे।
12: अरे बॉक्सेस उठाने के लिए बाबा को नहीं, स्मार्ट लोग SFL वर्ल्ड वाइड को बुलाते हैं।
11: अच्छा, सिर्फ डॉक्यूमेंट्स भेजने हो तो?
12: डॉक्यूमेंट्स, बॉक्सेस, पूरा घर रिलोकेशन, इवन कार ट्रांसपोर्ट
11: इंडिया तक।
12: सिर्फ इंडिया नहीं, विद इन USA और वर्ल्ड वाइड कम्प्लीट डोर टू डोर शिपिंग एंड मूविंग सर्विसेज।
4: SFL वर्ल्ड वाइड, घर हो, गाड़ी हो या जिंदगी का नेक्स्ट मूव, सब सेफली पहुँचता है। विजिट SFLWorldwide.com और कॉल 1-800-691-2335।
13: जिंदगी एक रंगमंच है
14: और घर ढूंढना सिर्फ इंटरवल। असली क्लाइमेक्स तो तब है जब क्लोजिंग स्मूथ हो, पेपर वर्क क्लियर हो और चाबी आपके हाथ में हो। पर्दा गिरने से पहले फर्स्ट यूनाइटेड टेक्सास टाइटल, हम पक्का करते हैं कि घर सच में आपका हो, हर कदम आपके साथ।
4: कॉल 972-897-1530, firstunitedtexastitle.com।

लव माई इंडिया एंड ट्रस्ट मी डैलस, अभी अभी मैं इंडिया से वापस आई हूँ, मुझसे तो वैसे ही इंडिया की खुशबू अब तक आ रही है. हैप्पी इंडिपेंडेंस डे इन एडवांस. एंड आपको बता दूँ कि डायमंड्स आरंट जस्ट फॉर एवर, दे आर इवन मोर इररेसिस्टेबल ड्यूरिंग द तनिष्क फेस्टिवल ऑफ डायमंड्स. Enjoy up to 25% off on diamond value and making charges plus 0% deduction on the exchange of gold above 18 carat. Celebrate the season with timeless sparkle at Tanishq. Terms and conditions apply. Visit kijiye Tanishq jinka showroom hai Frisco mein located. To zarur jaiye aur check out.

सिलाई, विजिट कीजिए तनिष्क जिनका शोरूम है, जिनका शोरूम है फ्रिस्को में लोकेटेड। तो जरूर जाइए और चेक आउट कीजिए, तनिष्क फ्रिस्को में है लोकेटेड। ये रहा एक गाना जिसकी डेडिकेशन आई थी, नाम है परम सुंदरी। यू नो डैलस, ये जो एक डेडिकेशन आई है ये हमारे एक कॉलर की तरफ से आई है। एंड हम लड़कियां जो होती हैं ना थोड़ी सी अलग होती हैं, हम होती तो खूबसूरत हैं और जानती भी हैं कि हम बेहद खूबसूरत हैं, बट फिर भी हमें ज़रूर चाहिए होता है कि हमें कोई कहे कि हम कितनी परम सुंदरी है। और ये तो आज के ज़माने का गाना है कि परम सुंदरी, हाय मेरी परम परम परम सुंदरी। लेकिन जब 90s के दौर में इसी गाने को कहा जाता था, मतलब इस गाने को अगर कहा जाता कि परम सुंदरी का कौन सा सब्स्टिट्यूट होता, तो मैं बता रही हूँ उस समय पर बहुत पहले हमारे गायक कहे गए हैं, यानी कि गा गए हैं अभिजीत जी, बहुत खूबसूरत हो, बहुत खूबसूरत हो, है ना। तो ये गाना जो आज परम सुंदरी के नाम से है, अगर 90s के दौर में बना था तो गाया है अभिजीत जी ने बहुत खूबसूरती से और कहा है कि बहुत खूबसूरत हो। ये गाना एंजॉय कीजिए और बाद में मैं आपको वहाँ नॉस्टैल्जिक 90s की गलियों में भी ले चलूँगी और बताऊँगी कि कैसे ये गाना और वो गाना ज़्यादा डिफरेंस नहीं है।

टू ऑल द खूबसूरत लेडीज ऑफ डैलस। जी हाँ, मरियम जी की रिक्वेस्ट पर तमन्ना जी को मैं कहना चाहती हूँ कि तमन्ना जी आप बेहद खूबसूरत हैं, एंड हर एक मतलब यू नो जो खूबसूरती होती है ना, वो चेहरे की होती ही है, लेकिन उससे ज़्यादा मन की होती है, आत्मा की होती है, और अगर वो खूबसूरत है तो पूरी दुनिया खूबसूरत है।

ऑलराइट डैलस, फन पिज्जा किचन की तरफ से आपको गिव अवे जीतने का मौका मिल रहा है। हियर इज योर चांस टू विन $10 गिफ्ट कार्ड फ्रॉम फन पिज्जा किचन बाय आंसरिंग अ सिंपल सिंपल क्वेश्चन। क्वेश्चन ये है कि जो अगला गाना मैं प्ले करूंगी वो गाना आपको बताना है कौन सी फिल्म का है। फन पिज्जा किचन हैज लॉन्च्ड अ ब्रांड न्यू मैक्सिकन इंस्पायर्ड पिज्जा लाइनअप एंड दीज आर एंड जस्ट पिज्जाज, दे आर फुल ऑफ फ्लेवर। यार आपको बहुत ही मजे का फ्लेवर मिलने वाला है, आप जरूर जरूर विजिट कीजिए funpizzakitchen.com। ये वेबसाइट है और फन पिज्जा की दो लोकेशन है, कैरल्टन एंड फ्रिस्को। चेकआउट कीजिए अगर आप फ्रिस्को में हैं, फ्रिस्को इज द न्यूरेस्ट लोकेशन एंड मैं भी यहाँ से 10 मिनट के अंदर वहीं जाने वाली हूँ एंड कुछ मजे का एंजॉय करने वाली हूँ। तो आप भी आंसर दीजिए ये जो गाना है कौन सी फिल्म से लिया गया है और जीत जाइए $10 का गिफ्ट कार्ड फ्रॉम फन पिज्जा किचन। 972-235-5555 है स्टूडियो का नंबर।

जेलस, थैंक यू सो मच फॉर पार्टिसिपेटिंग. हमारे विनर हमें मिल चुके हैं. आपको बता दूं कि दिस पार्ट ऑफ द शो इज प्राउडली ब्रॉट यू बाय एजी फिनटेक्स, वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग टैक्स एंड अकाउंटिंग फर्म्स इन द यूनाइटेड स्टेट्स. वेदर यू आर एन इंडिविजुअल, अ स्टार्टअप और एस्टैब्लिश बिजनेस, आपको एजी फिनटेक्स ऑफर करते हैं इनोवेटिव फाइनेंशियल सॉल्यूशंस जो कि आपके नीड्स को मीट भी करेगी. आज ही विजिट कीजिए 4699429888 और या फिर आप agfintechs.com पर भी विजिट कर सकते हैं. इसके अलावा आपको बता दूं कि भाई अगर आप भी अपने हेल्थ को लेकर काफ़ी कंसर्न हैं, देन आप कितना टाइम देते हैं, आप बताइए अपने हेल्थ को लेकर आप अपने आप कितना कंसर्न और कितना समय आप अपने हेल्थ के बारे में सोचते हैं. हाउ मच टाइम डज योर डॉक्टर स्पेंड विद यू, आप डॉक्टर के साथ कितना टाइम स्पेंड करते हैं, 5 मिनट 10 मिनट. तो पैशन हेल्थ प्राइमरी केयर आपको बताता है कि अगर आप हेल्थ को लेकर कंसर्न है तो एवरी अपॉइंटमेंट इज स्केड्यूल्ड फॉर 30 मिनट्स, बिकॉज ट्रूली अंडरस्टैंडिंग फॉर योर हेल्थ टेक्स टाइम एंड इट इज रियली रियली नेसेसरी, बिकॉज एट पैशन हेल्थ यू आर नॉट जस्ट अ पेशेंट, यू आर अ फैमिली. तो आज अगर आपने अपॉइंटमेंट नहीं लिया है अपने फिजिकल चेकअप का तो आज ही स्केड्यूल कीजिए अपॉइंटमेंट. नंबर है 2146666259. ये है नंबर टू बुक एन अपॉइंटमेंट. एंड पैशन हेल्थ प्राइमरी केयर 30 मिनट्स आपको देते हैं आपके एंजाइटी केयर, फाइब्रो स्कैन या फिर आपके लीवर रिलेटेड इश्यूज, विटामिन B12 की डेफिशिएंसी की टेस्टिंग, हर कुछ आपके लिए स्केड्यूल करते हैं. तो आप अपॉइंटमेंट जरूर स्केड्यूल कीजिए. द नंबर अगेन इज 2146666259. इंडिया का इंडिपेंडेंस डे है कल और हम सब प्राउडली कहते हैं कि भाई हम आज की डेट में स्वतंत्र हैं और यहाँ हर कदम कदम पर धरती बदलती है रंग, लेकिन हम देश के रंग के साथ हर साल रंग जाते हैं. सेलिब्रेटिंग 88th इंडिया इंडिपेंडेंस डे. हैप्पी इंडिपेंडेंस डे टू एवरीवन. मैं लेती हूँ आज के लिए इजाज़त, मुझे दीजिए आप इजाज़त. डैलस में हर फ्राइडे आपके से 8 to 10 PM जुड़ जाती हूँ और देती हूँ आपको फ्राइडे वाइब. स्टे ट्यून्ड हर फ्राइडे के लिए. मेरा इंतज़ार, मुझे आपका इंतज़ार रहेगा, आपको मेरा. तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए.

0: Dallas, are you ready? Jago Times Group of Publications अब आ चुका है डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कई मिलियन फॉलोअर्स के साथ बोथ इन इंग्लिश एंड उर्दू लेड बाय द फेमस एंड फियरलेस जर्नलिस्ट राजा जाहिद अख्तर खानजादा जिन्होंने अपने कलम से सोशल इनजस्टिस और करप्ट प्रैक्टिसेस के खिलाफ भरपूर आवाज उठाई डैलस और दुनिया भर की ताजा तरीन खबरों के लिए द जागो टाइम्स अवेलेबल है एक क्लिक पर jagotimes.com फॉर मोर डिटेल्स एंड एडवर्टाइजमेंट कॉन्टेक्ट राजा जाहिद अख्तर खानजादा 6825516500 The Jago Times Commission Jago bhi jagao bhi Exclusive Media Partner Panacea
1: This 15th of August, don't just celebrate Independence Day, celebrate it the Indian way. Join India Association of North Texas's Anand Bazaar 2026 at the Comerica Center in Frisco. Saturday from 2 p.m. onwards, experience a grand Independence Day parade, authentic Indian food, colorful cultural performances, live music, shopping, family fun, and an unforgettable celebration of India's independence. And the best part? It's completely indoors and free for everyone.
2: Sponsorship booth from $3,000 to $50,000 and vendor stalls at $750. Call 214-529-3257.
1: Celebrate India's 80th Independence Day with the entire community. IANT Anand Bazaar 2026 on Saturday the 15th of August, 2 p.m. onwards at the Comerica Center in Frisco.
3: Hello guys, this is me Kinjal Dave and you are listening and watching Fun Asia Radio.

0: पुष्पा झुकेगा नहीं और फनेजिया रुकेगा नहीं। नॉन स्टॉप बॉलीवुड, नॉन स्टॉप स्वैग।
1: Get your body moving and your heart pumping with the hottest dance tracks on your airwaves.
2: Turn it up.
1: Brought to you by Club Phonasia.

0: अगर आपकी नाइट भी तंदूरी डिलाइट्स के बिना अधूरी लगती है तो ये खबर आपके लिए। दिस समर एंजॉय 20% ऑफ ऑन ऑल एपेटाइजर्स, तंदूरी आइटम्स एंड मॉकटेल्स ओनली एट तंदूरी फ्लेम। चिकन तंदूरी, मलाई चिकन टिक्का, पनीर टिक्का, मोमो या सोया चाप, अब हर बाइट के साथ मिलेगी एक्स्ट्रा सेविंग्स। डाइन इन ओनली एट तंदूरी फ्लेम गार्लैंड, वेयर एवरी बाइट इज अ सेलिब्रेशन।
1: Hi, this is Stephanie Khan. You are listening to Fun Asia Radio.

0: पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त, पिक्चर अभी बाकी है।
1: और एंटरटेनमेंट भी, स्टे ट्यून्ड टू फन एशिया। फन एशिया।
2: Get your body moving and your heart pumping with the hottest dance tracks on your airwaves.
3: Turn it up.
2: Brought to you by Club Fanasia.

0: बड़े बड़े देशों में ऐसी छोटी छोटी बातें होती रहती हैं।
1: पर डैलस में सिर्फ एक ही बात होती है, फन एशिया प्लेज द बेस्ट बॉलीवुड।
2: Get your body moving and your heart pumping with the hottest dance tracks on your airwaves.
3: Turn it up.
2: Brought to you by Club Fanasia.

0: अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है।
1: पनवेल हो या डेलस, सफर तभी मस्त। जब गाने हो जबरदस्त, ओनली ऑन फन एशिया रेडियो।

पुष्पा झुकेगा नहीं और फनेजिया रुकेगा नहीं। नॉन स्टॉप बॉलीवुड, नॉन स्टॉप स्वैग।

0: पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त, पिक्चर अभी बाकी है
1: और एंटरटेनमेंट भी। स्टे ट्यून्ड टू फन एशिया।

0: साल तो कमाल हो गया, हमारा रेवेन्यू डबल हो गया।
1: सर अच्छा है, लेकिन आपने टैक्स प्लानिंग किया?
0: नहीं।
1: बुक कीपिंग अपडेटेड है?
0: नहीं।
1: कैश फ्लो फोरकास्ट बनाया?
0: वो भी नहीं।
1: तो पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त।
2: रेवेन्यू देखकर खुश मत होइए। बिजनेस में तब ऑल इज वेल होगा जब हमारे नंबर्स भी स्ट्रांग हो। फॉर योर टैक्स प्लानिंग, बुककीपिंग एंड CFO सर्विसेज, विजिट agfintax.com, कॉल 972-618-8555। AG Fintax, योर ग्रोथ आवर स्ट्रेटजी। AG Fintax, led by Forbes Finance Council member Anil Granthi. Services are subject to individual eligibility and applicable laws. Terms and conditions apply.
3: This is Uday Chopra, and you are listening to Fun Asia Radio.
4: Plays the best Bollywood.

0: हलन
1: लगे रहो।
2: I love you।
3: हलन तेरा फोन आया यार।
1: औरत
3: चल चल।

0: एंटरटेनमेंट से कर दे मैट, डैलस में रेडियो का डैड, फोनीशिया 104.9 FM.
1: Yeah, it's coming up.

0: IT is the spice of our station.
1: Yeah,
0: 104.9 FM.
1: That's right. Pump it up.

0: जान। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है।
1: पनवेल हो या डेलस, सफर तभी मस्त। जब गाने हो जबरदस्त, ओनली ऑन फन एशिया रेडियो।

0: अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है।
1: पनवेल हो या डेलस, सफर तभी मस्त। जब गाने हो जबरदस्त, ओनली ऑन फन एशिया रेडियो।

0: Rest a while and run a mile with Fun Asia Radio.
1: जिद शर्दे हरबीर जे सरकार नहीं कुछ कर सकी ता तू कर लेगा।
2: संसारपुर सरकार दा पिंड नहीं, मेरा पिंड है, मैं जिंदी करूंगा हॉकी।

पुष्पा झुकेगा नहीं और फनेजिया रुकेगा नहीं। नॉन स्टॉप बॉलीवुड, नॉन स्टॉप स्वैग।

0: पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त, पिक्चर अभी बाकी है।
1: और एंटरटेनमेंट भी। स्टे ट्यून्ड टू फन एशिया।
2: फन एशिया।

0: बड़े बड़े देशों में ऐसी छोटी छोटी बातें होती रहती हैं।
1: डैलस में सिर्फ एक ही बात होती है, फन एशिया प्लेज द बेस्ट बॉलीवुड।

0: Bollywood, Tollywood, Lollywood. 24 karat pure on 104.9 FM.
1: Praveen, what is this? ये सब क्या है? देखो तुम्हारे पास दो दिन है
2: सर, वो
1: अगर अच्छे फोटोग्राफ्स नहीं लाए ना देन आई एम सॉरी।

0: एंटरटेनमेंट से कर दे मैड। डैलस में रेडियो का डैड फोनीशिया 104.9 FM।
1: Yeah, it's coming up।
2: मैं साबित कर सकती
3: हूँ।

0: भगवान से, रक्षाबंधन हमें जोड़ता है अपनों से, और कुछ रिश्ते एक डोर से शुरू होते हैं और एक अनमोल निशानी के साथ हमेशा के लिए अमर हो जाते हैं। हर रिश्ता अपनी एक कहानी लिखता है और पीएमजे ज्वेल्स उस कहानी को देता है सोने की चमक, हीरों की रोशनी और क्राफ्टमैनशिप जो पीढ़ियों तक साथ रहे।
1: पीएमजे ज्वेल्स नाउ ओपन ऑन 13215 मेन स्ट्रीट फ्रिस्को।
2: सुनो, कल बहुत काम है। पहले ग्रोसरी, फिर पूजा का सामान, गिफ्ट्स भी खरीदने हैं, और इन सब कुछ के बाद मैं कुकिंग नहीं करने वाली। कहीं अच्छा सा डिनर करके आएंगे।
3: और ये सब कुछ अगर एक ही जगह हो जाए तो
2: कहाँ?
4: फूडिस्तान इन ऑबरी, फ्रेश ग्रोसरी, हलाल मीट, पूजा एसेंशियल्स, लाइव पानी पूरी, केटरिंग सर्विसेज, प्लस लोएस्ट प्राइस मैच गारंटी। एंड इनसाइड फूडिस्तान, एंजॉय द प्रीमियम इंडियन कुजीन एट डीवाइव, एन अपस्केल रेस्टोरेंट फॉर द परफेक्ट फैमिली डिनर।
5: फूडिस्तान इन ऑबरी, मेंशन फन एशिया एंड एंजॉय 10% डिस्काउंट।
6: Are you looking for a smarter approach to reducing taxes while building and preserving wealth? My Time Equity, a registered investment advisory firm led by CPA Sudhir Pai, offers active portfolio management, structured notes, tax and financial planning, real estate strategies, AI and late stage pre-IPO opportunities, and other alternative investments. Learn how a personalized strategy can help you pursue your financial goals. Visit mytimeequity.com or call 972-330-2771.
7: My Time Equity is a fee-based registered investment advisory firm. This advertisement is for informational purposes only and does not constitute investment, legal or tax advice. Investing involves risk, including the possible loss of principal.
8: अरे, डैलस के आसमान में इतने सारे तारा नहीं। बिजनेस ओनर्स के लिए तो सिर्फ एक ही तारा काफी है, तारा कमर्शियल एनर्जी। 2002 से टेक्सास के हजारों बिजनेसेस का ट्रस्टेड एनर्जी पार्टनर। होटल्स, गैस स्टेशंस, वेयरहाउसेस, मेडिकल फैसिलिटीज, रिटेल स्टोर्स और ऑफिस बिल्डिंग्स, कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग, पर्सनलाइज्ड एनर्जी सॉल्यूशंस और एक्सेप्शनल कस्टमर सर्विस। तारा कमर्शियल एनर्जी, पावरिंग टेक्सास बिजनेसेस फॉर ओवर 2 decades। कॉल 844-428-2808 और विजिट taraenergy.com टुडे। तारा कमर्शियल एनर्जी, जो आपके बिजनेस को रोशन रखे।
9: 2026 में आपकी राशि के लिए धन और सफलता के योग हैं।
10: अरे सुन, ये एस्ट्रोलॉजर बोल रहा है 2026 तेरी राशि वालों के लिए बहुत लकी है।
11: माँ, रील्स पे सब लकी ही होते हैं, जेनेरिक प्रेडिक्शंस सबको थोड़ी हेल्प करती हैं। तो फिर अगर रियल क्लैरिटी चाहिए तो पर्सनलाइज्ड गाइडेंस लो।
12: गाइडेंस की बात हो तो एक ही नाम है, पंडित राम तुलसी, जहाँ एस्ट्रोलॉजी सिर्फ राशियों तक लिमिटेड नहीं बल्कि आपकी पर्सनल जर्नी के हिसाब से गाइड करता है। करियर हो, स्टडीज, शादी या फ्यूचर प्लानिंग, हर डिसीजन अब होगा क्लियर और कॉन्फिडेंट।
11: कॉल पंडित राम तुलसी एट 9797972654 और विजिट astroramji.com।
13: अजी सुनते हो?
14: अजी नहीं, एजी सुनते हैं।
15: The OG of tax planning, AG Fintax, सुनेंगे आपके फाइनेंशियल कंसर्न्स, देंगे स्मार्ट सॉल्यूशंस। एवरी फ्राइडे 9:45 AM only on Funasia Radio.
16: Hi, this is Sefali Khan. You are listening to Fun Asia Radio.

0: The Magic 24/7. Only on 104.9 FM.
1: This is the Fun Asia Network. You are listening to Fun Asia Radio 104.9 FM. KZMP 104.9 FM HD1, Pilot Point, Texas. Simulcasting on KTCG 104.1 FM HD2, Sanger, Texas. Powered by Fun Asia Films and Fun Pizza Kitchen.
2: Official tax and finance partner, AG FinTax.
1: Official injury law partner, the law offices of Omar Khwaja.
2: In association with Passion Health Primary Care.
3: Beautiful home, Ravi. $1 million. Wow.
4: Thank you. Well, Sana and me just got lucky as Hussein Panjwani helped us with the purchase of our first home. He practically walked us through the entire process. Ever since, with his guidance and support, I've become a pretty savvy real estate investor myself. Unka radio show suna tha, and then consulted with him for all my financing needs. Now my real estate portfolio has grown into many single family homes, apartment complexes, agricultural land, or up ye $1 million property bhi.
5: Hi, this is Hussein Panjwani. Dream Home will help you grow your real estate portfolio. Remember, we just don't promise, we deliver.
6: For details, visit dreamhomemortgage.com or call Dream Home Mortgage 972-245-5626 or email info@dreamhomemortgage.com.
7: Some restrictions apply. Equal housing lender, NMLS 334616, Division of Brazos National Bank.
8: कहाँ गया? कहाँ रखा था? सुनो ना, मेरा वो वाला सेट कहाँ है?
9: कौन सा?
8: अरे वो गोल वाला, थोड़ा ट्रेडिशनल, उसमें पोलकी भी है।
9: अरे सारे तो सेम है।
8: नहीं, वो श्री कृष्णा से जो लिया था ना हमने, ये देखो ये वाला।
9: ओ हाँ, ये तो अलग है।
10: अलग तो होगा ही, श्री कृष्णा ज्वेलर्स से जो है। From timeless gold and radiant diamonds to heritage polkis, discover Texas's largest handcrafted jewelry collection now at Main Street in Frisco. Shri Krishna Jewelers, crafted for moments that matter. Visit shrikrishna.com.
11: वीकेंड का प्लान अभी तक नहीं बना? बस 90 मिनट्स नॉर्थ ऑफ डैलस चौकटाउ कैसीनो एंड रिसॉर्ट ड्यूरेंट में हर विजिट बन जाता है एक विनिंग एक्सपीरियंस। पोकर हो या ब्लैक जैक, एक्साइटिंग स्लॉट्स हो या फिर 20 अमेजिंग रेस्टोरेंट्स में जबरदस्त डाइनिंग, और अगर ब्रेक चाहिए तो लग्जूरियस स्काई टावर और रिलैक्सिंग स्पा आपका इंतजार कर रहे हैं। तो सिर्फ लकी फील मत कीजिए, लकी बन जाइए। चौकटाउ कैसीनो एंड रिसॉर्ट ड्यूरेंट, एंटरटेनमेंट, लग्जरी और एक्साइटमेंट सब एक ही डेस्टिनेशन में। प्लीज प्ले रिस्पॉन्सिबली, मस्ट बी 21 ईयर्स।
12: क्या आपको बिजनेस खरीदने के लिए लोन चाहिए?
13: कॉल दी SBA लोन एक्सपर्ट्स।
12: क्या आप फ्रेंचाइज शुरू करना चाहते हैं?
13: कॉल दी SBA लोन एक्सपर्ट्स।
12: क्या आपको अपने बिजनेस के लिए वर्किंग कैपिटल की जरूरत है?
13: कॉल दी SBA लोन एक्सपर्ट्स।
12: कंस्ट्रक्शन हो या रेनोवेशन, बिजनेस खरीदना हो या रीफाइनेंस कराना हो, फॉर ऑल योर बिजनेस फाइनेंशियल नीड्स एट द बेस्ट इंटरेस्ट रेट एंड लोएस्ट डाउन पेमेंट, कॉल द SBA लोन एक्सपर्ट्स एट 817-786-3338। दैट्स 817-786-3338।
14: Everyone's mind at the moment in Dallas, cause the hottest destination to party with your tribe is in town. Mirage Lounge, a premium lounge offering hookahs, bites, crafted cocktails and live music and DJ nights. And guess what? A happy hour from 11 a.m. to 5 p.m. Monday to Thursday with hookahs at $15.99 and shots at $4.99 each. Plus, ladies' night and college nights bhi.
10: Visit Mirage Lounge at McKinney Ranch Parkway, cause miracles happen in Mirage.
15: Coughing or sneezing at home? Your air ducts may be to blame. And clogged dry vents can even cause fires. Duct Time removes dust, pollen, allergens and lint, giving you cleaner air, better health, energy savings and peace of mind. Serving the DFW area and 15 plus years of experience with CSIA certified technicians and free estimates. Fun Asia listeners get $100 off duct cleaning plus free dryer vent cleaning and sanitizer with service. Call Jeetu Patel at 972-877-2500 or visit callducttime.com. Breathe easy, live safe with Duck Time.
16: मेरे कल वाले खाने में डोसा, आने वाले खाने में डोसा।
10: क्या आपको भी हमेशा डोसा की क्रेविंग्स रहती है या फिर ऑथेंटिक वेज खाने की तलाश? Your search ends here.
17: San Idli Vegetarian Restaurant, 100% pure vegetarian, made with fresh authentic flavors. Crispy dosas, fluffy idlis, comforting South Indian thali, और साथ में शहर की best filter coffee. Family dinners to catering services with Jain friendly options.
10: Visit San Idli Veg Restaurant at the Highway 121 or Custer Junction.
18: 90s के गाने सिर्फ हिट्स नहीं, हमारी यादें हैं, और अब वो लेजेंडरी आवाज आ रही है लाइव टू प्लेनो। वो आवाज जिसने 90s को अनफॉरगेटेबल बना दिया। कुमार सानू लाइव इन कॉन्सर्ट, अनफॉरगेटेबल 90s, सितंबर 11th एट द ब्रांड न्यू रॉबिन्सन फाइन आर्ट्स प्लेनो। लिमिटेड सीट्स, फ्री पार्किंग एंड मीट एंड ग्रीट ऑप्शंस अवेलेबल। टिकट्स एट eventbrite.com। मोर इन्फो 2148692668। प्रेजेंटेड बाय फोकस एंटरटेनमेंट एंड फॉर्च्यून ग्रुप।

सुप्रभात दोस्तों, सुस्वागत है माफी के कार्यक्रम म्यूजिक मंत्र में, जिसमें मैं हूं आपके संग संगीता। आपका और मेरा साथ रहेगा सुबह के 10 बजे तक, और हमारे साथ रहेंगे मीठे तराने और खूबसूरत संगीत। आज का दिन है बड़ा महान, आज है 15 अगस्त का दिन, और साथ में मनाएंगे हम इंडिया का इंडिपेंडेंस डे। अ वेरी हैप्पी इंडिया इंडिपेंडेंस डे टू ऑल आवर लिसनर्स। We'll bring you a special presentation this morning. Umeed karti hu jude rahenge all the way till 10 a.m.

0: अनफॉरगेटेबल सॉन्ग लता जी की आवाज़ में। और भी ऐसे कुछ गाने और यादें गूंजेंगी आज के इस कार्यक्रम में, जहां मैं आपको ले चलूंगी एक सफ़र की ओर, इंडिया का सफ़र फ्रॉम 1947 अंटिल टुडे।
1: डालस की धड़कन 104.9 FM, फनीजिया रेडियो।
0: तो शुरुआत करते हैं आज के इस कार्यक्रम में। बहुत ही स्पेशल प्रेजेंटेशन ले आई हूं मैं आपके लिए ऑन द ओकेजन ऑफ इंडियाज इंडिपेंडेंस डे टुडे। तो आज का जो इंडिया है वो 1947 के इंडिया से बहुत ही अलग है। और अगर आप याद रहेगा आपको ये कि तकरीबन 200 साल के ब्रिटिश रूल के बाद इंडिया एक लार्जली रूरल कंट्री था। ज्यादातर लोग विलेजेस में रहते थे और एग्रीकल्चर पर डिपेंड करते थे। पॉवर्टी वॉज वाइड स्प्रेड एंड एक्सेस टू लिटरेसी एंड एजुकेशन एंड ऑल्सो हेल्थ केयर वॉज वेरी लिमिटेड। और कम्युनिकेशन, वेल कम्युनिकेशन वॉज नॉट एग्जिस्टेंट द वे यू नो इट टूडे। तो उन दिनों में कम्युनिकेशन के लिए बहुत ही ज़रूरी था खत लिखना और वो खत का इंतज़ार करना, और कुछ इंफॉर्मेशन न्यूज़पेपर्स और रेडियो के ज़रिए भी मिलता था। लेकिन इंडिया सिर्फ स्ट्रगल का नाम नहीं था, ये बहुत ही इनफैक्ट वेरी लाइक इनक्रेडिबली रिच और डिवर्स सोसाइटी थी। अपनी भाषाएं थी, अपनी म्यूजिक, अपना लिटरेचर, अपना सिनेमा, अपने खाने, अपने फेस्टिवल्स और ट्रेडिशंस के साथ आगे बढ़ रहा था। और साथ बढ़ रहा था मूवमेंट, इस तरह का मूवमेंट चल रहा था जहां बहुत बड़े फ्रीडम फाइटर्स से इंक्लूडिंग महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल एंड सो मेनी मोर फ्रीडम फाइटर्स, जिनके डेकेड्स के बहुत सालों के लॉन्ग स्ट्रगल के बाद ब्रिटिश रूल का फाइनली एंड हुआ इंडिपेंडेंस के साथ। लेकिन पार्टीशन भी आया और उसके साथ अनइमेजिनेबल अनसर्टेनिटी। As you can imagine, it was very, very difficult to go where they wanted to go. और फिर आई वो रात 14 अगस्त की, यानी कि 15th अगस्त एक सुबह, जहां सेलिब्रेशन और फ्रीडम की खुशी थी और दूसरी तरफ एक नए अनसर्टेन फ्यूचर का सामना। However, at this time, India was now free. We are at August 15th, 1947. एक नई कहानी शुरू हो चुकी थी और आज यानी कि 15th August 2026, 79 years के बाद आज के इस कार्यक्रम में हम जुड़े हैं to see India then and India now. I hope you will be with me on this journey all the way until 10 a.m. इंडिपेंडेंस डे को मना रहे हैं, कोई गाने सुनना चाह रहे हैं, एनीथिंग विद नॉस्टैल्जिया स्लैश पेट्रियटिज्म अटैच्ड, लेट मी नो।

तो जैसे कि मैंने कहा इस गाने के पहले कि आज के इस कार्यक्रम में मैं आपको ले चलूंगी एक सफर की ओर, इंडिया का सफर फ्रॉम 1947 टिल नाउ. एंड विद दैट सेड विल प्रॉब्ली कवर सम बिग पार्ट्स ऑफ यू नो द चेंजेस दैट टुक प्लेस. सो इन द वर्ल्ड ऑफ आई गेस कम्युनिकेशन इट विल बी, वी विल ऑल्सो टॉक अबाउट थिंग्स लाइक ट्रांसपोर्टेशन, वील टॉक अबाउट टेक्नोलॉजी and we will talk about of course music. तो इन विषयों पे अगर आपके जहन में कोई गाने आ रहे हैं और या actually you know very specifically I'll ask if you can think of the trend or the changes, the transformation that might have taken place from 1947 until now in India in any of these sectors, you can let me know and I'll be happy to include your conversation in our show this morning. 9722355555 है स्टूडियो का नंबर. तो जब हम कहते हैं कि सफर तय किया हमने, वेल इस सेगमेंट में आपको बताती हूँ, सफर जो तय किया वाज इन द वर्ल्ड ऑफ कम्युनिकेशन. आप सोच सकते हैं कि 1947 में इंडिया में कम्युनिकेशन कैसा था. वेल द आंसर दैट कम्स थ्रू इज कम्युनिकेशन स्लो था. बहुत ही धीरे धीरे पहुंचती थी बातें लोगों के पास. इंफॉर्मेशन भी लिमिटेड थी, ऑप्शंस भी ज्यादा कुछ नहीं थे. और कम्युनिकेट करना चाहें, यदि आप किसी रिलेटिव से या किसी परिवार वालों सदस्यों से, तो आपने भेजना होता है एक खत. उन दिनों में वो खत जाता था और फिर होता था इंतजार. राइट, दैट वॉज द बिगेस्ट थिंग. इट वॉज ऑल अबाउट वेटिंग. वेल खतों के लिखने के बाद आया टेलीग्राम, टेलीग्राम के बाद आया टेलीफोन. और टेलीफोन भी कोई सरल ऐसे आसान सी चीज नहीं थी. याद है वो दिन, ट्रंक कॉल बुक करना पड़ता था. उसके बाद थोड़ी सी चेंज आई, थोड़ा आगे बढ़े हम और उसमें इंट्रोड्यूस किया एसटीडी बूथ को. एनीबडी रिमेंबर गोइंग टू एन एसटीडी बूथ टू मेक अ कॉल so that you could hear the voice of your loved one, call me and share that with me. Uske baad, of course, gharon mein aaye landlines. Wo dial ghumana, wo number pe, you know, making that dial go all the way to make sure that that number was connected. Uske baad aaye pagers, mobile, SMS, email. और अब तो भाई इतने सारे ऐप्स हैं, ऐप्स के जरिए आप दुनिया के किसी भी कोने में बैठे हुए इंसान को वीडियो कॉल कर सकते हैं. सो हियर वी आर, सच अ लॉन्ग जर्नी दैट वाज, जहां खतों से को भेजकर हमने इंतजार करना था, आज वो इंतजार की घड़ियां जीरो हैं. सो दैट इज व्हाट वाज द फर्स्ट पार्ट ऑफ द ट्रांसफॉर्मेशन आई वांट टू टॉक अबाउट. उसके बाद और भी बातें करेंगे इन अदर सेक्टर्स. फॉर नाउ दो आई एम गेटिंग कॉल्स एंड रिक्वेस्ट एंड आई वुड लव टू प्ले दोज फॉर यू. हियर इज वन मोर रेट्रो ट्रैक.

वाह वाह वाह वाह वाह, इतने लोग जाग गए हैं सुबह सुबह और कॉल कर रहे हैं, पार्टिसिपेट कर रहे हैं और अप्रिशिएट भी कर रहे हैं आज के इस कार्यक्रम को. एंड आई से अ बिग थैंक यू टू ईच ऑफ यू एंड अ बिग थैंक यू टू एजी फिनटेक्स फॉर ब्रिंगिंग दिस पार्ट ऑफ आवर शो हियर दिस मॉर्निंग. एजी फिनटेक्स के बारे में बताना चाहूंगी कि दे आर वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग टैक्स एंड अकाउंटिंग फर्म्स इन द US. और अगर आप इंडिविजुअल हैं या स्टार्टअप हैं या हो एस्टैब्लिश्ड बिजनेस, एजी फिनटेक्स ऑफर्स इनोवेटिव फाइनेंशियल सॉल्यूशंस टेलर टू योर नीड्स. और इनके पास है काफी सारी सर्विसेज उपलब्ध कर सकते हैं आप, बुककीपिंग, पेरोल अकाउंटिंग एंड बैंक एंड क्रेडिट कार्ड रिकंसिलिएशंस टू प्रोएक्टिव टैक्स प्लानिंग, टैक्स कंप्लायंस, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग एंड बिजनेस एडवाइजरी सर्विसेज. इन सब के लिए आप कॉल करेंगे बिकॉज दे हेल्प कीप योर फाइनेंसेस ऑर्गेनाइज, कंप्लायंट एंड फ्यूचर रेडी. दे आर ट्रस्टेड, दे आर एफिशिएंट एंड कमिटेड टू योर सक्सेस. विद ऑल दैट सेड, आई नो यू वांट टू कॉल देम. द नंबर इज 4699429888 और यू कुड विजिट agfintechs.com टुडे. I have a number of songs lined up. Patriotism is, of course, the thing today. Aaj hai 15th August. It is India's Independence Day. Happy India's Independence Day to everybody out there. I don't think I will be able to play any song in its entirety, you know, from the list that I have received here. But I think as much as we can listen to is a pleasure when it comes to songs that celebrate India's Independence Day today.

0: At Tanishq, no two diamonds are exactly alike. They're beautifully rare, just like the woman who wears them. That's why this is the perfect time to find yours at the Tanishq Festival of Diamonds, with up to 25% off on diamond value and making charges, plus zero deduction on your old gold exchange above 18 carat. Visit Tanishq Dallas at 2809 Preston Road, number 1200, Frisco, 75034 today. Tanishq, a Tata product. Terms and conditions apply.
1: हेलो, मेरे रिलेटिव्स आ रहे हैं. Everyone's asking लंच में क्या है.
2: Fikar not. We have the perfect solution.
3: The Flavor Lounge in Frisco brings you its all new weekend lunch buffet. From flavorful Indian favorites to live counters and chef special, 25 plus dishes, welcome drink, chaat, appetizers, main course and dessert. Saturday to Sunday, 12 p.m. to 3 p.m. This weekend, let the Flavor Lounge do the cooking.
1: अजी सुनते हो, सोच रही थी बेटे की शादी इंडिया में करे.
4: इंडिया में? तो यहाँ जो फ्रेंड्स और रिलेटिव्स हैं, वो कैसे अटेंड करेंगे?
1: पर यहाँ सारे अरेंजमेंट्स मैनेज करना भी तो कितना मुश्किल होगा.
4: हेलो, तुम डैलस में हो, यहाँ कोई भी इवेंट करना सुपर इजी है, स्पेशली जब वैनेसा इवेंट्स का साथ हो.
1: सच में? सब संभालेंगे?
4: अरे सब कुछ, वेडिंग हो, हाउस वार्मिंग, ग्रेजुएशन, यू नेम इट, दे डिलीवर. वेन्यू, फोटोग्राफी, हॉस्पिटैलिटी, सब कुछ एक ही जगह. सिग्नेचर इवेंट्स का डेकोर और खाना बाय द रेनॉल्ड बसेरा ग्रैंड ओनली.
3: कॉल हरी बसेरा ऑन 4694428770. वैनेसा इवेंट्स, योर सेलिब्रेशन पार्टनर.
5: Dallas, are you ready? Jago Times Group of Publications अब आ चुका है डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कई मिलियन फॉलोअर्स के साथ, बोथ इन इंग्लिश एंड उर्दू. लेड बाय द फेमस एंड फियरलेस जर्नलिस्ट राजा जाहिद अख्तर खानजादा, जिन्होंने अपनी कलम से सोशल इनजस्टिस और करप्ट प्रैक्टिसेस के खिलाफ भरपूर आवाज उठाई. डैलस और दुनिया भर की ताजा तरीन खबरों के लिए द जागो टाइम्स अवेलेबल है एक क्लिक पर, thejagotimes.com. फॉर मोर डिटेल्स एंड एडवर्टाइजमेंट, कॉन्टैक्ट राजा जाहिद अख्तर खानजादा, 6825516500. The Jago Times Commission. Jago bhi, jagao bhi. Exclusive media partner, Panacea.
6: शादी ब्याह का कोई मौका हो या कोई त्योहार, खूबसूरत लिबास खुशियों को दुगना कर देता है.
3: हर खुशी में आपके साथ मान्यवर मोहे, ट्रेडिशनल सेलिब्रेशन वेयर फॉर मेन, वुमेन एंड चिल्ड्रन, क्राफ्टेड विद एक्सक्विजिट ब्लेंडेड फैब्रिक्स. मान्यवर मोहे, लोकेटेड ऑन रीजेंट बुलेवार्ड ऑफ 635 ईस्ट इन इरविंग.
7: I am so stressed. Credit card bills, unsecured debts. What are we going to do?
8: Kuch bhi nahi. Ura Debt Relief will do it for us.
7: Kya matlab?
8: Ura can help us save up to 50% on our total debt and the rest we pay in easy monthly installments.
7: But what if it doesn't work? We cannot afford to lose more money. हम खुद ही मैनेज कर लेंगे.
8: उरा डेट रिलीफ इज वन ऑफ द लीडिंग डेट सेटलमेंट कंपनीज. दे डोंट चार्ज अ सिंगल पेनी अंटिल आवर डेट इज सेटल्ड एंड दे हैव 100% मनी बैक गारंटी. कॉल तो करो 888-888-9914.
7: अब तो करना ही पड़ेगा मैडम.
5: डोंट लेट डेट रुइन योर लाइफ. विजिट ura.org और कॉल 888-888-9914 एंड टेक कंट्रोल ऑफ योर फाइनेंशियल फ्यूचर.
9: This 15th of August, don't just celebrate Independence Day, celebrate it the Indian way. Join India Association of North Texas's Anand Bazaar 2026 at the Comerica Center in Frisco. Saturday from 2 p.m. onwards, experience a grand Independence Day parade, authentic Indian food, colorful cultural performances, live music, shopping, family fun, and an unforgettable celebration of India's independence. And the best part? It's completely indoors and free for everyone.
3: For sponsorship booth from $3,000 to $50,000 and vendor stalls at $750. Call 214-529-3257.
9: Celebrate India's 80th Independence Day with the entire community. IANT Anand Bazaar 2026 on Saturday the 15th of August, 2 p.m. onwards at the Comerica Center in Frisco.

एंड वार्म वेलकम बैक टू म्यूजिक मंत्र दोस्तों, जिसमें मैं हूं आपके संग संगीता। आपका मेरा साथ रहेगा सुबह के 10 बजे तक। और आज है ये विशेष कार्यक्रम टू सेलिब्रेट इंडियाज इंडिपेंडेंस डे। विशिंग अ वेरी हैप्पी इंडिपेंडेंस डे टू ऑल आवर इंडियन फोक्स हु आर सेलिब्रेटिंग दिस स्पेशल ओकेजन। और शुरुआत करते हैं इस सेगमेंट की इस गाने के साथ।

0: Patriotism, nostalgia, and excitement all a part of this morning's show on Music Mantra. But first, a message from Passion Health Primary Care. Ye kehte hain ki aap aaiye and we will give you all the time you need so that we can take care of your health. Yes, that's the thing they would say that, you know what, when you make an appointment, we're going to spend 30 minutes with you and talk about your health, overall health, the whole you. Because at Passion Health, you're not just a patient, you are family. So for you, for your family, and for the health of our community, remember the name Passion Health Primary Care. 30 minutes is all it takes to complete your annual physical. Iske alawa, anxiety care, fibroscan for alcohol related liver concerns, vitamin B12 testing, and many more services are available at Passion Health. So schedule your appointment today. And remember, when you schedule your appointment, you also have to make sure you have the 30 minutes. The number to call them then is 214-666-6259. Book your appointment today. Passion Health Primary Care. Your health is our passion.
1: 104.9 FM. Fun Asia Radio. Fun Asia Radio. Non-stop infotainment.
0: तो आज के इस स्पेशल कार्यक्रम में वेयर वी आर सेलिब्रेटिंग इंडिया इंडिपेंडेंस डे वी आर ऑल्सो टॉकिंग अबाउट द जर्नी फ्रॉम इंडिया ऑफ इंडिया फ्रॉम देन अंटिल नाउ तब से अब तक और शुरुआत की हमने कि भाई कम्युनिकेशन उस वक्त पे बहुत ही लिमिटेड था. इनफैक्ट हम खतों के जरिए लोगों से बात करते थे एंड आज के इस जमाने में जब इतनी सारी चेंजेस हुई हैं हैज मेड सो मेनी एडवांसमेंट्स इन द सेक्टर ऑफ कम्युनिकेशंस वी कम टू दिस स्पॉट वेयर पहले डिस्टेंस का मतलब था वेटिंग आज डिस्टेंस ऑलमोस्ट इनविजिबल हो गया है और कम्युनिकेशन के साथ साथ एंटरटेनमेंट भी कम्प्लीटली ट्रांसफॉर्म हुआ इंडिया में. आपको याद होगा कि बहुत ही थोड़े माध्यम थे टू हैव एनी काइंड ऑफ एंटरटेनमेंट इन दोज डेज बट वन ऑफ द फर्स्ट वेज टू एंटरटेन एंड ऑल्सो रियली इन्फॉर्म वॉज वेयर रेडियो. रेडियो के बाद आया टेलीविजन. टेलीविजन जब आया बहुत कुछ चेंज हुआ इंडिया में और टेलीविजन जब आया पहले पहले आए ब्लैक एंड व्हाइट टीवीज. ब्लैक एंड व्हाइट टीवी के एरा काफी देर चली और फिर धूम मचाने आए कलर टीवीज. एंड इफ यू हैव एनी मेमोरीज ऑफ हैविंग ए टीवी इन योर होम और कलर टीवीज इन योर होम फील फ्री टू शेयर विद अस. आई विल शेयर माय ओन इन अ मिनट. एंड कलर टीवी के बाद यू नो बहुत ही हंगामा मचाया कलर टीवी ने. इट चेंज द वे पीपल वर लिविंग एक्चुअली लाइफस्टाइल चेंज. और कलर टीवी पे हमने देखी दूरदर्शन और दूरदर्शन के जो बहुत ही लिमिटेड चॉइसेस थी उनको बहुत ही इंजॉय किया आज तक भी. एंड आई नो व्हेन आई एम यूजिंग द वर्ड दूरदर्शन आपको वो टाइटल म्यूजिक याद आ रहा है उनका वो लोगो याद आ रहा है. इट वॉज अ लाइफ चेंजिंग इवेंट रियली. उसके बाद आया VCR, धीरे धीरे मूव ऑन टू केबल, केबल टू सैटेलाइट टेलीविजन और फिर आया इंटरनेट एंड यूट्यूब एंड देन OTT विच इज अ वेरी वेरी वेरी पॉपुलर प्लेटफॉर्म एंड अ वेरी पॉपुलर फॉर्म ऑफ एंटरटेनमेंट टुडे. अब इस यू नो टाइमलाइन में एक चीज बहुत बदला. पहले पूरा परिवार एक ही टेलीविजन के सामने बैठा था, याद है आपको? तो मुझे ये याद है, मेरा पर्सनल वाकया ये है, मैं शेयर करना चाहूंगी कि कलर टीवी जब आया तो हम एक बिल्डिंग में रहते थे इन बॉम्बे और उस बिल्डिंग में हमारे घर पर पहले पहले कलर टीवी आया. इनफैक्ट हमारे घर पर बहुत देर तक वी वर द ओनली वंस विद अ कलर टीवी. तो ना सिर्फ हमारी परिवार बट सारे बिल्डिंग वाले जमा हो जाते थे टू वॉच कलर टीवी एट माई हाउस. सो यू नो इट इज अ मेमोरी दैट आई होल्ड डियर. वी आर स्टिल वेरी मच इन कॉन्टेक्ट विद एवरीबडी देयर बट इट इज रियली दैट टीवी दैट ब्रॉट अस टुगेदर. तो पहले पूरा फैमिली और आई गेस नेबर्स पड़ोसी एक ही टेलीविजन के सामने बैठते थे. आज एक ही घर में भाई चार लोग हैं तो चार स्क्रीन्स भी. पहले की कुछ समस्याएं अलग थी, कहते थे आज क्या देखें. आज प्रॉब्लम है इतना कुछ है क्या देखें. And that way, then, in the world of entertainment, India moved from scarcity to abundance. Guys, if you have a memory to share about how entertainment in India might have changed your life, or you have an anecdote to share, give me a call at 972-235-5555.

0: दे बसंती।
1: और बिस्मिल दा संदेश है कि लखनऊ जाने वाली ट्रेन जो जिसमें फिरंगियों ना पैसा जानता है उसे हम काकुरी में लूटेंगे, काकुरी कबाब खाते खाते लूटेंगे। हाँ, और उन पैसों से हम खरीदेंगे बम। क्या खरीदेंगे? बम।
2: तू नहीं हटता, उन्हें दूध देना बंद कर दे।
0: सपने

0: मिलता संदेश कि लखनऊ जाने वाली ट्रेन जिसमें छोटू सुन तेन बिस्मिल का संदेश मिल गया
1: है?
0: नहीं तो सुन 8 दिन बाद जो ट्रेन लखनऊ जा रही है उसे हम काकोरी में लुटेंगे। बड़े पैसे जा रहे हैं अंग्रेजों के उसमें लुटेगा
1: नहीं।
0: यार उसे हम हथियार खरीदेंगे। क्या खरीदेंगे?
1: हथियार।
0: हाँ शाबाश जा।
2: धीमी आंच पे तू जरा इश्क चढ़ा थोड़े छरने ला।

0: इस बिल का संदेश है। लखनऊ जाने वाली ट्रेन उस पे फिरंगियों का पैसा जाता है, उसे हम 7 दिन बाद काकोरी में लूटेंगे और उन्हीं पैसों से आएंगे हमारे हथियार।
1: बस्ती रंग दे, हस्ती रंग दे, हस हस रंग दे, नस नस

0: Basanti.
1: The Dill of Dallas. Heart to Heart, Fun Asia.
2: पहले तो शुक्रिया कहूंगी आप सभी का जो कॉल कर रहे हैं मुझे और बहुत सारी यादें ताजे हो रही हैं लोगों की एंड आई अप्रिशिएट दैट एंड दे आर अप्रिशिएटिंग इट टू. यू नो बेसिकली फोन और टीवी के जरिए बहुत लोगों की उनके पड़ोसियों के साथ, मोहल्ले वालों के साथ, आसपास रहने वाले दोस्तों के साथ बहुत ही टाइट, बहुत ही खास संबंध रहा है. यू नो समवन कॉल्ड इन एंड सेड कि आप टीवी की बात कर रहे हैं तो टीवी देखने के लिए जो संडे को शाम को टीवी पर एक फिल्म आती थी दूरदर्शन पर, उसे देखने के लिए सभी लोग उनके घर पर जमा हो जाते थे एंड यू नो दैट यूज टू बी लाइक फैंटास्टिक टाइम्स टुगेदर. एंड समबडी एल्स कॉल्ड इन और कहा कि जब फोन की बात आई तो उनके घर पर फोन था और पड़ोसियों के घर पर फोन नहीं था. तो छोटी सी छोटी बात होती थी किसी पड़ोसी की या बड़ी सी बड़ी कोई खबर होती थी, वो सब शेयर करने के लिए लोग उनके घर पर फोन करते थे और सब यू नो देयर फ्रेंड्स यूज़ टू जस्ट गैदर अराउंड एंड समटाइम्स फोन के बहाने बहुत सारी बातें होती थी, एक दूसरे से ज्यादा मुलाकात होती थी एंड दैट रियली टर्न आउट टू बी वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग एंड लॉन्ग लास्टिंग फ्रेंडशिप्स.
3: 104.9 FM, Fun Asia Radio, Fun Asia Radio, non-stop entertainment.
2: और दोस्तों के साथ जाएंगे आज शाम को, एक्चुअली आज दोपहर को 2 बजे के बाद आप भी मनाएंगे इंडिया का इंडिपेंडेंस डे एट IANT's इंडिया बाजार 2026. इट इज हैपनिंग टूडे एट द कोमेरिका सेंटर इन फ्रिस्को. बहुत गर्मी है पर ये वाला तो भाई इंडोर्स है पूरा. And it is also free for everybody. You will go out there and enjoy Indian food, a grand parade, cultural performances, live music, shopping and an incredible drone show. और उसके बाद fireworks का होगा finale. तो चलिए परिवार और दोस्तों के साथ जाइए and be a part of North Texas's biggest Indian Independence Day celebration that's happening today and that is IANT's Anand Bazaar 2026.

0: तो जैसे कि हम 8 बजे से यही कह रहे हैं कि वी टॉकिंग अबाउट द जर्नी ऑफ इंडिया फ्रॉम 1947 अंटिल नाउ, और अब तक हमने कवर किया है द सेक्टर्स ऑफ कम्युनिकेशन एंड एंटरटेनमेंट. आपसे पूछना चाहती हूँ कि व्हाट आर द चेंजेस, ट्रांसफॉर्मेशन, एडवांसमेंट्स, इम्प्रूवमेंट्स, प्रोग्रेस दैट हैज बीन मेड इन द सेक्टर्स ऑफ टेक्नोलॉजी, लाइफस्टाइल, बैंकिंग एंड म्यूजिक एंड मोर. If there's anything you'd like to add, feel free to call me in the studio at 972-235-5555. Let me know what else you'd like to listen to in terms of songs as well. Creating nostalgia and patriotism all the way until 10 a.m. Studio ka number hai 972-235-5555. Sun rahe aap Music Mantra, jisme main hoon aapke sang Sangeeta.
1: This is the Fun Asia Network. You are listening to Fun Asia Radio 104.9 FM. KZMP 104.9 FM HD1, Pilot Point, Texas. Simulcasting on KTCG 104.1 FM HD2, Sanger, Texas. Powered by Fun Asia Films and Fun Pizza Kitchen.
2: Official tax and finance partner, AG FinTax.
1: Official injury law partner, the law offices of Omar Khwaja.
2: In association with Passion Health Primary Care.
3: Fun Asia 104.9 FM. Turn up the volume.
4: At Tanishq, no two diamonds are exactly alike. They're beautifully rare, just like the woman who wears them. That's why this is the perfect time to find yours at the Tanishq Festival of Diamonds, with up to 25% off on diamond value and making charges, plus zero deduction on your old gold exchange above 18 carat. Visit Tanishq Dallas at 2809 Preston Road, number 1200, Frisco, 75034 today. Tanishq, a Tata product. Terms and conditions apply.
5: Give your children the gift of spiritual grounding and cultural identity through Chinmaya Mission's Balavihar program. Families can choose from 3 convenient locations. Chinmaya Mission also offers a variety of enriching programs, including Gita chanting, shlokathon, satsangs for adults, festival celebrations, cultural activities, and language classes. Registration for Balavihar is now open. Visit cmdfw.org for complete details. Hari Om.
6: सुनो सुनो सुनो सारे मैकन्नी वाले सुनो, हाईवे 380 पर खुल गया है पैशन हेल्थ प्राइमरी केयर. अब एनुअल फिजिकल के लिए दूर जाने की जरूरत नहीं, सेम डे अपॉइंटमेंट के लिए इंतजार करने की जरूरत नहीं, और पूरे परिवार के भरोसेमंद डॉक्टर्स की तलाश भी खत्म. सुनो सुनो सुनो, स्वास्थ्य का नया ठिकाना पैशन हेल्थ प्राइमरी केयर, अब मैकन्नी में हाईवे 380 पर.
7: एनुअल फिजिकल्स, प्रिवेंटिव केयर, सेम डे अपॉइंटमेंट्स, क्रॉनिक डिजीज मैनेजमेंट और केयरिंग फिजिशियंस, सब एक ही जगह. कॉल टुडे और टेक्स्ट 214-666-6259.
8: मैं शादी करूंगी तो करीना वाला डिजाइनर लहंगा पहन के करूंगी, वरना दूल्हे को टाटा बाय बाय कर दो.
9: अरे मैडम, करीना वाला लहंगा और आपका बजट मैच करेगा क्या?
10: अब करेगा, बिकॉज इंडियन अटायर फ्रिस्को समर सेल इज ऑन. स्टनिंग लहंगास, एलिगेंट साड़ीज, ब्राइडल ज्वेलरी, मेंस एंड किड्स वेयर.
11: इतना सब और प्राइस?
10: अप टू 25% ऑफ ऑन लहंगास एंड ब्राइडल कलेक्शन. समर सेल थ्रू द एंड ऑफ ऑगस्ट, ओनली एट इंडियन अटायर फ्रिस्को. ट्रेडिशनल हो या फ्यूजन, अब हर आउटफिट बोलेगा
12: मैं हीरो.
13: देसी फ्लेवर्स भी और टेक्सास के फेवरेट्स भी, अब सब कुछ मिलेगा एक ही जगह HEB में. सोना मसूरी राइस, नानक पनीर, पाले जी बिस्किट्स और बहुत कुछ. वही ऑथेंटिक स्वाद जिसके साथ आप बड़े हुए हैं, और साथ ही HEB के एक्सक्लूसिव टेक्सन फेवरेट्स जो आपको यहाँ पसंद है. अब एक ही शॉपिंग ट्रिप में ज्यादा काम निपटाइए, और इस समर जरूर देखिए HEB के नए DFW स्टोर्स, मिड सीरीज, अर्विंग और मर्फी में खुल रहे हैं. तो आज ही अपने नजदीकी HEB पर जाएं और खरीदिए अपने ट्रेडिशनल्स और टेक्सन फेवरेट्स. HEB, हियर एवरीथिंग इज बेटर.
14: Are you on F1 visa and looking for mortgage options? Ya aap H1B pe hain and looking options with 5% or 10% or even 3% down? So call kijiye Kamna ko at 214-845-4189, kyunki aapka bharosa hi meri pehchan hai. NMLS 926641.
12: इस रक्षाबंधन चौकटा कैसीनो एंड रिसोर्ट ड्यूरांड के साथ सेलिब्रेट कीजिए वो रिश्ता जिसमें नोकझोंक भी है, दोस्ती भी एंड ए लाइफ टाइम ऑफ अनफॉरगेटेबल मेमोरीज। अपने भाई या बहन के साथ जुड़ी सबसे यादगार मेमोरी हमें 1 मिनट वॉइस नोट में भेजिए एंड विन एक्साइटिंग डेली प्राइजेस इंक्लूडिंग डाइनिंग एक्सपीरियंसेस, एंटरटेनमेंट, रिजॉर्ट स्टेज एंड द ग्रैंड प्राइज एंड अनफॉरगेटेबल सिबलिंग रीयूनियन वीकेंड एट चौकटा कैसीनो एंड रिसोर्ट ड्यूरांड। अपनी स्टोरी व्हाट्सएप कीजिए 214-837-7147 पर या कॉन्टेस्ट डिटेल्स के लिए विजिट कीजिए फनेशिया रेडियो के सोशल मीडिया पेजेस।
15: चौकटा कैसीनो एंड रिसोर्ट ड्यूरांड, वेयर अनफॉरगेटेबल मेमोरीज आर मेड टुगेदर। मस्ट बी 21 और ओल्डर टू पार्टिसिपेट। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई। प्लीज प्ले रिस्पॉन्सिबली।

एंड अ वार्म वेलकम बैक टू म्यूजिक मंत्र दोस्तों, जिसमें मैं हूं आपके संग संगीता, ले आई हूं एक खास प्रस्तुति आज के इस 15 अगस्त के दिन यानी कि इंडिपेंडेंस डे पे. हैप्पी इंडियाज इंडिपेंडेंस डे टू एवरीबॉडी. एंड हियर इज द फर्स्ट सॉन्ग फॉर दिस सेगमेंट. वैसे गानों की रिक्वेस्ट ले रही हूँ. सॉन्ग्स दैट हैव नॉस्टैल्जिया स्लैश पेट्रियटिज्म फिल्ड इन देयर. एंड दिस वन टॉकिंग अबाउट पॉजिटिविटी एंड व्हाट द यूथ ऑफ इंडिया इज लुकिंग फॉर.

दिल चाहता है परफेक्ट सॉन्ग फॉर द टाइम्स दैट हैड चेंज्ड. इतनी सारी बाधाएं थी आफ्टर 1947. उन बाधाओं को यू नो आफ्टर गोइंग थ्रू ऑल द ऑब्स्टिकल्स एंड फेसिंग देम द चैलेंजेस टेकिंग इन द हार्डशिप इट वाज टाइम फॉर अ चेंज. अ टाइम फॉर अ यंगर मोर अर्बन मोर एस्पिरेशनल इंडिया जहां पर बहुत सारी ऑप्शंस और चॉइसेस अब उपलब्ध थी. बहुत ही सारी चॉइसेस बढ़ रही थी, ब्रांड्स आ रहे थे, लोग अलग अलग तरह के ख्वाब बुन रहे थे, ट्रैवल एस्पिरेशंस बढ़ रही थी, शॉपिंग का एक्सपीरियंस बदल रहा था. और यहीं से हम आते हैं इंडिया एज अ कंज्यूमर. Now, this happened kind of a little bit later, you know, not in the 60s, but more so this started happening in the early 80s. And then in the 90s, we saw it change in a big way. And of course, the biggest change we saw with liberalization. Well, ye kisi ne gana request kiya, kaha ki, please laga lo, drive kar rahe hain, ye gana sunna hai. Here we go.

और इंडिया की बातें कर रहे हैं आज. Telling you a little bit about the journey of India from 1947 until now. और हम पहुंचे हैं in this segment where India goes shopping. तो shopping यानी कि you know, we'll talk a little bit about the payments as well, क्योंकि वहां पर बहुत सारी changes और transformation आई इंडिया में. तो एक वक्त था जब हम कुछ खरीदने जाते थे तो कहते थे कि बाजार चलो, किराने की दुकान पर चलो, पास में जो मार्केट है वहां जाते हैं, जो दुकानदार है वहां पे आप सभी को जानते थे, एवरीबडीज नेम्स यू नो, एवरीबडी के सबके परिवार के सदस्यों को भी जानते थे वो. इस तरह का यू नो क्लोज निट काइंड स्मॉल स्केल पे शॉपिंग हुआ करता था. वहां पे बहुत सारी बार्गेनिंग होती थी. और आपको याद है कि आपके शॉपकीपर को याद होता था कि आपको कौन सा ब्रांड या कौन सी चीज ज्यादा पसंद है. वेल यू रिमेंबर दोज डेज? इफ यू डू शेयर विथ मी, गिव मी अ कॉल एट 9722355555. पर आगे बढ़ते हुए फिर वो जो छोटी दुकानें थी ना, वो छोटी दुकानें बड़ी हो गई. सुपरमार्केट्स आ गए, शॉपिंग मॉल्स आ गए, ब्रांडेड स्टोर्स आ गए, और एयर कंडीशनिंग बिकेम अ पार्ट ऑफ योर शॉपिंग एक्सपीरियंस. एंड फूड मॉल्स आ गए. एंड यू नो द शॉपिंग का जो मायने है वो पूरा बदल गया. इनफैक्ट जब मैं वहां जाती हूँ, आई एम स्टिल लुकिंग फॉर दोज स्मॉल शॉप्स एंड लोकल थिंग्स टू डू एंड लोकल प्लेसेस टू गेट थिंग्स एट. बट नो, आई एम नाउ हैविंग टू गो टू अ शॉपिंग मॉल. तो बहुत ही फर्क आ गया है इस चीज में, बहुत ही ट्रांसफॉर्मेशन बड़ा वाला आया है. बट आई थिंक द बिगेस्ट वन हैज बीन द वन दैट वी एक्सपीरियंसिंग टुडे, एंड दैट इज कॉल्ड ऑनलाइन शॉपिंग. आज बस आपने कुछ फोन लेकर ढूंढना है, थोड़ी कंपैरिजन करते हैं हम, कुछ रिव्यूज पढ़ लेते हैं, और फिर कार्ट में ऐड करके हम पेमेंट कर लेते हैं, और फिर फोन पर नोटिफिकेशन आ जाता है कि आपका ऑर्डर कल आ रहा है. वेल, इंडिया की ब्यूटी का यू नो वो पुराने जमाने की ब्यूटी अब चेंज हो रही है. काफी लोग कहते हैं कि इट इज वेरी मच कन्वीनियंट, एंड ऑनेस्टली कन्वीनियंस केम थ्रू अ लॉट ऑफ चेंजेस. बेसिकली बहुत सारी चैलेंजेस, हार्डशिप्स, ट्रायल एंड एरर के बाद यहां तक पहुंचे हैं इंडिया में भी. तो किराने की दुकान पे अब भी आप जा सकते हैं वैसे. बस फर्क ये है कि पहले काउंटर पे वो हाथ से कुछ लेजर पर लिख कर देते थे, और आज है QR कोड के जमाने. QR कोड एंड पेमेंट्स, दैट ब्रिंग्स अस टू येट अनदर मैसिव ट्रांसफॉर्मेशन दैट वी नीड टू कम बैक एंड टॉक अबाउट, एंड दैट इज इन द वर्ल्ड ऑफ बैंकिंग इन इंडिया. You have something to share about banking? Let me know at 972-235-5555.

0: And when you're going through all these obstacles and you're trying to battle them, well, sometimes you might have a slip or fall incident. और अगर आप डालिस में हैं, कभी कार या ट्रक एक्सीडेंट भी हो सकता है, तो आपको याद रखना है अटर्नी ओमर ख्वाजा का नाम, because attorney Omar Khwaja will fight your case and help you get the compensation that you deserve. वहाँ पे ना जब slip and fall incident होता है या एक्सीडेंट होती है, unfortunately already it's a very very difficult time. Then you have to also deal with insurance companies that adds to that stress. Now you don't have to do that on your own. If you call attorney Omar Khwaja, they will be there and they will make sure you are compensated. Now I also want to add that when you're working with Omar Khwaja, you don't pay until you win. With all that said, want to tell you that you can schedule a free consultation call. The number to call for that is 469-300-5046. If you want to get more information online about them, visit attorneyomar.com.
1: 104.9 FM, Fun Asia Radio, Fun Asia Radio, non-stop entertainment.
0: काफी अच्छा सफर तय किया है इंडिया ने 1947 से लेकर अब तक, और हमने बातचीत की है उस सफर के बारे में इन द सेक्टर्स ऑफ कम्युनिकेशन, एंटरटेनमेंट एंड कंज्यूमरिज्म यानी कि शॉपिंग. अब आई है बारी ऑफ दैट सेक्टर दैट गॉट अनदर मैसिव ट्रांसफॉर्मेशन एंड दैट इज बैंकिंग. इंडिया में आप बैंक पहले जाते थे तो पहले तो एक लंबी क्यू में खड़े होते थे टू मीट विद द टेलर और द बैंकर और रादर द मैनेजर ओवर देयर, राइट. फिर वहां पे बहुत सारे पेपर वर्क करते थे, यानी कि कुछ फॉर्म्स भरते थे, फिर चेक काटते थे. एक पासबुक होता था जहां पर आप हर एक ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते थे, एंड देन यू नो समटाइम्स यू वुड नीड टू विदड्रॉ कैश और थिंग्स टू डू विद कैश पेमेंट्स. आज क्या करते हैं, आज क्या करते हैं वो बताएंगे आप मुझे 9722355555. हाउ इज अ पेमेंट डन इन इंडिया टुडे इन द बैंक सिस्टम और एनी काइंड ऑफ पेमेंट्स, हाउ डू यू मेक दोज, गिव मी अ कॉल, शेयर विद मी. आई लुक फॉरवर्ड टू हियरिंग फ्रॉम यू एट 9722355555.

0: थैंक यू फॉर योर फोन कॉल्स फ्रेंड्स. तो पूछ रही थी मैं कि आजकल आप इंडिया जाते हैं तो किस तरह की बैंकिंग सिचुएशन है. वेल, पहले बैंक जाते थे, क्यू में खड़े होते थे, चेक बुक होता था, पास बुक होता था, एंड आज बस फोन निकाला, क्यूआर कोड स्कैन किया एंड पेमेंट डन. इंडिया ने कैश से डिजिटल पेमेंट्स की एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जर्नी की है. वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर एप्स दे यूज इज अ यूपीआई ऐप, विच इज अ मोबाइल प्लेटफॉर्म दैट यूजेस इंडियाज यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस टू सेंड एंड रिसीव मनी इंस्टेंटली बिटवीन बैंक अकाउंट्स. विल कम बैक विद मोर आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक.
1: Are you looking for a smarter approach to reducing taxes while building and preserving wealth? My Time Equity, a registered investment advisory firm led by CPA Sudhir Pai, offers active portfolio management, structured notes, tax and financial planning, real estate strategies, AI and late stage pre-IPO opportunities, and other alternative investments. Learn how a personalized strategy can help you pursue your financial goals. Visit mytimeequity.com or call 972-330-2771.
2: My Time Equity is a fee-based registered investment advisory firm. This advertisement is for informational purposes only and does not constitute investment, legal or tax advice. Investing involves risk, including the possible loss of principal.
3: कहाँ गया? कहाँ रखा था? सुनो ना, मेरा वो वाला सेट कहाँ है?
4: कौन सा?
3: अरे वो गोल वाला, थोड़ा ट्रेडिशनल, उसमें पोल की भी है.
4: अरे सारे तो सेम है.
3: नहीं, वो श्री कृष्णा से जो लिया था ना हमने, ये देखो ये वाला.
4: ओ हाँ, ये तो अलग है.
5: अलग तो होगा ही, श्री कृष्णा ज्वेलर्स से जो है. From timeless gold and radiant diamonds to heritage polkis, discover Texas's largest handcrafted jewelry collection now at Main Street in Frisco. Shri Krishna Jewelers, crafted for moments that matter. Visit shrikrishna.com.
6: इस साल तो कमाल हो गया, हमारा रेवेन्यू डबल हो गया.
7: सर अच्छा है, लेकिन आपने टैक्स प्लानिंग किया?
6: नहीं.
7: बुक कीपिंग अपडेटेड है?
6: नहीं.
7: कैश फ्लो फोरकास्ट बनाया?
6: वो भी नहीं.
7: तो पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त.
5: रेवेन्यू देखकर खुश मत होइए. बिजनेस में तब ऑल इज वेल होगा जब हमारे नंबर्स भी स्ट्रॉन्ग हो. फॉर योर टैक्स प्लानिंग, बुक कीपिंग एंड CFO सर्विसेज, विजिट agfintax.com. कॉल 972-618-8555. AG Fintax, योर ग्रोथ आवर स्ट्रेटजी. AG Fintax, led by Forbes Finance Council member Anil Granthi. Services are subject to individual eligibility and applicable laws. Terms and conditions apply.
8: Are you seeking clarity in life? Wondering what destiny has in store for you?
9: हर समस्या का हल है एस्ट्रोलॉजर ईश्वर के पास. 400 साल की फैमिली विजडम के साथ वर्ल्ड फेमस एस्ट्रोलॉजर अब डैलस में.
8: That magic removal हो, love and relationship issues हो, get trusted solutions with 100% privacy.
9: Thousands की लाइफ बदली उनकी divine guidance से. Now it's your turn. समस्या का पक्का समाधान. एस्ट्रोलॉजर ईश्वर. Call now 945-527-0897 or visit astrologerishwar.com.
10: अगर आपकी नाइट भी तंदूरी डिलाइट्स के बिना अधूरी लगती है तो ये खबर आपके लिए. दिस समर एंजॉय 20% ऑफ ऑन ऑल एपेटाइजर्स, तंदूरी आइटम्स एंड मॉकटेल्स ओनली एट तंदूरी फ्लेम. चिकन तंदूरी, मलाई चिकन टिक्का, पनीर टिक्का, मोमो या सोया चाप, अब हर बाइट के साथ मिलेगी एक्स्ट्रा सेविंग्स. डाइन इन ओनली एट तंदूरी फ्लेम गार्डन, वेयर एवरी बाइट इज अ सेलिब्रेशन.
11: ये तारा वो तारा हर तारा.
12: अरे अरे अरे, डैलस के आसमान में इतने सारे तारा नहीं. बिजनेस ओनर्स के लिए तो सिर्फ एक ही तारा काफी है, तारा कमर्शियल एनर्जी. 2002 से टेक्सास के हजारों बिजनेसेस का ट्रस्टेड एनर्जी पार्टनर. होटल्स, गैस स्टेशंस, वेयरहाउसेस, मेडिकल फैसिलिटीज, रिटेल स्टोर्स और ऑफिस बिल्डिंग्स, कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग, पर्सनलाइज्ड एनर्जी सॉल्यूशंस और एक्सेप्शनल कस्टमर सर्विस. तारा कमर्शियल एनर्जी, पावरिंग टेक्सास बिजनेसेस फॉर ओवर 2 decades. कॉल 844-428-2808 और विजिट taraenergy.com टुडे. तारा कमर्शियल एनर्जी, जो आपके बिजनेस को रोशन रखे.
13: 2026 में आपकी राशि के लिए धन और सफलता के योग हैं।
14: अरे सुन, ये एस्ट्रोलॉजर बोल रहा है 2026 तेरी राशि वालों के लिए बहुत लकी है.
15: माँ, रील्स पे सब लकी ही होते हैं, जेनेरिक प्रेडिक्शंस सबको थोड़ी हेल्प करती हैं. तो फिर अगर रियल क्लैरिटी चाहिए तो पर्सनलाइज्ड गाइडेंस लो.
16: गाइडेंस की बात हो तो एक ही नाम है, पंडित राम तुलसी, जहाँ एस्ट्रोलॉजी सिर्फ राशियों तक लिमिटेड नहीं बल्कि आपकी पर्सनल जर्नी के हिसाब से गाइड करता है. करियर हो, स्टडीज, शादी या फ्यूचर प्लानिंग, हर डिसीजन अब होगा क्लियर और कॉन्फिडेंट.
15: कॉल पंडित राम तुलसी एट 9797972654 और विजिट astroramji.com.
17: भूख लगी
18: भूख लगी है या बस कुछ एक्सेप्शनल खाना है?
19: स्ट्रीट स्टाइल चाट्स, रिच अवधी फ्लेवर्स एंड दैट क्लासिक बटर चिकन यू कीप गोइंग बैक टू, ऑल अंडर वन रूफ एट पेज 3 ईटरी। ऑनेस्टली ये सिर्फ खाना नहीं है, इट्स व्हाट योर मूड इज एक्चुअली क्रेविंग।
20: अ क्विक बाइट, अ परफेक्ट लंच एम्बियंस एंड एन इवनिंग दैट जस्ट फ्लोज इनटू द नाइट। यू डोंट गो जस्ट एनीवेयर, यू गो टू पेज 3, हब 121 मैकिनी।
21: Hi, I'm Rajkumar Rao, and you're listening to the most popular FM station in the US, 104.9 FM, Fun Asia Radio.

एंड वेलकम बैक टू द फाइनल सेगमेंट ऑफ दिस मॉर्निंग म्यूजिक मंत्र दोस्तों, जिसमें रही हूँ मैं आपके संग संगीता। तो हम आज मना रहे हैं इंडिया इंडिपेंडेंस डे से, एंड आई एम सेइंग अ वेरी हैप्पी इंडियन इंडिपेंडेंस डे फ्रॉम माई सेल्फ एंड फ्रॉम एवरीबडी हियर एट फन एशिया।

Celebrating the true spirit of India this afternoon at Comerica Center in Frisco is IANT's Independence Day Anand Bazaar, and I know you will be there. Well, moving ahead with what we started at 8 a.m., a journey. We're celebrating the journey, the resilience, the ambition, the imagination and the transformation of India that we have built from 1947 until today. Aur ab baari aayi hai kuch baatein karne ki about technology. Technology ki journey dekhiyega. Aapko yaad ho, typewriter ka wo zamana. Typewriter jo tak tak tak ke har ek letter ko type karte the aur phir jab line ko badalni thi, you would, you know, pull that lever and then move to the next line. I know you all remember that. वहाँ से धीरे धीरे धीरे कुछ प्रोग्रेस करके हम पहुँच गए कंप्यूटर तक, कंप्यूटर से इंटरनेट तक. इंटरनेट के जरिए काफ़ी कुछ ऐसा लगा कि द वर्ल्ड इज कमिंग क्लोजर, एंड देन टू हैव दैट इंफॉर्मेशन एक्सेसिबल ऑन योर मोबाइल फोन. वेल दैट टू वेयर स्मार्टफोन देन. Amazing a journey, and India has actually been taking the lead in this part of transformation, yani ki in the world of technology. Aur ab aaye hain hum artificial intelligence ki or. Now this I will tell you ki ek waqt tha jab computers institutions mein hi hote the, aur aaj har ek bande ke paas ek powerful computer hamare pockets mein hai. उसी पावरफुल कंप्यूटर में है कैमरा, बैंक, शॉपिंग, मैप्स, एंटरटेनमेंट, खबरें. यू नो, खबरें यानी कि एट द मोमेंट व्हेन थिंग्स आर हैपनिंग, दैट इज व्हाट इज अवेलेबल टू अस टुडे. सभी कुछ एक ही फोन में. और इंडिया ने सिर्फ टेक्नोलॉजी को कंज्यूम ही नहीं किया, इंडिया ने टेक्नोलॉजीज को स्केल भी किया है. Think about it. I mean, we just talked about digital payments, and you know, they really upped the game in digital infrastructure as well. Jaise ki IT industry mein aap dekhenge, the number of startups that there are available and amazing things that are coming out from there. Uske alawa, I want to tell you the other transformation that has been taken in big ways in India is in the space of space. एक यंग नेशन जो इंडिपेंडेंस के टाइम बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर रहा था, आज मून तक मिशंस भेज रहा है, मार्स तक पहुंच चुका है, सन को स्टडी कर रहा है और ह्यूमन स्पेस फ्लाइट की ड्रीम्स देख रहा है. व्हाट एन अमेजिंग फीट दैट इज. ऑन दैट नोट आई हैव ए क्वेश्चन फॉर यू, एंड आई एनकरेज यू टू पिक अप द फोन एंड कॉल मी एंड टेल मी what the answer is. For that, the number is 972-235-5555. Aur aap agar jeet gaye to aap jeet, agar aapke paas sahi jawab hoga, well, let me back up. Sahi jawab hoga, I'm going to put your name as an entry to win a $10 gift card from Fun Pizza Kitchen in Frisco. And I want to also tell you a little bit about Fun Pizza Kitchen. They have launched a brand new Mexican-inspired pizza lineup. And these aren't just pizzas. They are full-on flavor fiesta. From the fresh fiesta veggie to the fiery pollo loco, the seafood-packed Senor Camarón, and the loaded mucho macho pork. Every bite is bold, every bite is exciting, and every bite made to impress. So head over to Fun Pizza Kitchen and taste the new obsession for yourself. New flavors, new obsession, and the website is the same, funpizzakitchen.com. Ab aaya hai sawal aapke liye. Agar aapke paas sahi jawab hoga, I will put your name in a drawing to win a $10 gift card from Fun Pizza Kitchen. 972-235-5555 is the number to the studio. And the question is, what was India's first Mars mission called? इंडिया का पहला मार्स मिशन कौन सा था, बताएंगे मुझे 972-235-5555 पे, और मैं आपका नाम डालूंगी इन एन एंट्री टू विन अ $10 गिफ्ट कार्ड फ्रॉम फन पिज़्ज़ा किचन.

0: ऑलराइट, यूं ही चला चल, ये गाना बहुत ही इंस्पिरेशनल एंड मोटिवेशनल है. और मैंने आपसे पूछा था कि व्हाट वाज इंडियाज फर्स्ट मार्स मिशन कॉल्ड. आई गॉट द राइट नेम, इट वाज कॉल्ड ईदर मॉम और मंगलयान. मॉम यानी कि मार्स ऑर्बिटर मिशन, एंड दिस वाज लॉन्च्ड इन नवंबर ऑफ 2013. और सही जवाब दिया हमें काफी लोगों ने, बट आवर विनर is Adi Shah. Adi, congratulations on winning the $10 gift card from Fun Pizza Kitchen. I'm sure you will enjoy the tasty, tasty treats they have out there.
1: 104.9 FM, Fun Asia Radio, Fun Asia Radio, non-stop entertainment.
0: Honestly, India has made so much progress by leaps and bounds from 1947 until today. Itni sari jagahon par unhone advancements kiye hain ki I really cannot include them all in a 2-hour radio show. I will say I'm very, very proud of where we have come and where we are going. However, one sector that I definitely want to talk about is in the world of technology and music. That is a topic really dear to my heart. Wanted to bring it to you. तो 1947 के आसपास के म्यूजिक का मतलब क्या था? Well, बहुत ही सरल तरीके से कुछ म्यूजिक बनाए करते थे, कुछ म्यूजिक लोग इंजॉय कर पाते थे, जैसे कि यू नो थ्रू मे बी लाइव परफॉर्मेंसेज, नॉट द ग्रैंड वंस यू सी इन कॉन्सर्ट्स दीज डेज. हाउएवर छोटे छोटे शहरों में, यू नो, कहीं पे मिडल एरिया, कहीं सेंटर ऑफ द टाउन और विलेज में जाकर छोटे छोटे परफॉर्मेंसेज हुआ करते थे. उसके बाद आए ग्रामोफोन रिकॉर्ड्स, याद है, LP रिकॉर्ड्स, रेडियोज और सिनेमा हॉल्स. फिर रेडियो घर घर में पहुंचा, एंड देन LP रिकॉर्ड्स, कैसेट्स एंड ऑडियो टेप्स. आई नो यू ऑलरेडी थिंकिंग कि वो टेप को हम रिवाइंड करते थे और कभी कभी पेंसिल से कैसेट को मैन्युअली रिवाइंड करते थे. फिर आई CDs, फिर म्यूजिक सिस्टम्स, MP3s, और फिर MP3s ने म्यूजिक को कंप्यूटर में डाल दिया. एंड यू नो विथ कंप्यूटर देन केम द फोन्स एंड एवरीथिंग इज इन आवर फोन दीज डेज. इंडिया की म्यूजिक जर्नी भी इंडिया की जर्नी जैसे है, राइट? ट्रेडिशनल रूट्स के साथ साथ कॉन्स्टेंटली री इन्वेंट होती गई. शायद इसीलिए, यू नो, वी रियली कैन थिंक व्हाट वाज इंडिया देन ट्रूली एंड व्हाट इट हैज बिकम नाउ.

0: This is the Fun Asia Network. You are listening to Fun Asia Radio 104.9 FM. KZMP 104.9 FM HD1, Pilot Point, Texas. Simulcasting on KTCG 104.1 FM HD2, Sanger, Texas. Powered by Fun Asia Films and Fun Pizza Kitchen.
1: Official tax and finance partner, AG FinTax.
0: Official injury law partner, the law offices of Omar Khwaja.
1: In association with Passion Health Primary Care.
2: श्रावण हमें जोड़ता है भगवान से, रक्षाबंधन हमें जोड़ता है अपनों से, और कुछ रिश्ते एक डोर से शुरू होते हैं और एक अनमोल निशानी के साथ हमेशा के लिए अमर हो जाते हैं। हर रिश्ता अपनी एक कहानी लिखता है और पीएमजे ज्वेल्स उस कहानी को देता है सोने की चमक, हीरों की रोशनी और क्राफ्टमैनशिप जो पीढ़ियों तक साथ रहे।
0: पीएमजे ज्वेल्स नाउ ओपन ऑन 13215 मेन स्ट्रीट, फ्रिस्को।
3: वीकेंड का प्लान अभी तक नहीं बना? बस 90 मिनट्स नॉर्थ ऑफ डैलस, चॉकटाव कैसीनो एंड रिसॉर्ट ड्यूरेंट में हर विजिट बन जाता है एक विनिंग एक्सपीरियंस। पोकर हो या ब्लैक जैक, एक्साइटिंग स्लॉट्स हो या फिर 20 अमेजिंग रेस्टोरेंट्स में जबरदस्त डाइनिंग, और अगर ब्रेक चाहिए तो लग्जूरियस स्काई टावर और रिलैक्सिंग स्पा आपका इंतजार कर रहे हैं। तो सिर्फ लकी फील मत कीजिए, लकी बन जाइए। चॉकटाव कैसीनो एंड रिसॉर्ट ड्यूरेंट, एंटरटेनमेंट, लग्जरी और एक्साइटमेंट सब एक ही डेस्टिनेशन में। प्लीज प्ले रिस्पॉन्सिबली, मस्ट बी 21 ईयर्स ओल्ड टू गेम।
4: मेरे कल वाले खाने में डोसा, आने वाले खाने में डोसा।
5: क्या आपको भी हमेशा डोसा की क्रेविंग्स रहती है या फिर ऑथेंटिक वेज खाने की तलाश? योर सर्च एंड्स हियर।
6: फैन इडली वेजिटेरियन रेस्टोरेंट, 100% प्योर वेजिटेरियन मेड विथ फ्रेश ऑथेंटिक फ्लेवर्स, क्रिस्पी डोसास, फ्लफी इडलीज, कंफर्टिंग साउथ इंडियन थाली और साथ में शहर की बेस्ट फिल्टर कॉफी। फैमिली डिनर्स टू केटरिंग सर्विसेज विद जैन फ्रेंडली ऑप्शंस।
0: विजिट फैन इडली वेज रेस्टोरेंट एट द हाईवे 121 और कस्टर जंक्शन।
7: I am so stressed. Credit card bills, unsecured debts. What are we going to do?
8: कुछ भी नहीं, Ura Debt Relief will do it for us.
7: क्या मतलब?
8: Ura can help us save up to 50% on our total debt and the rest we pay in easy monthly installments.
7: But what if it doesn't work? We cannot afford to lose more money. हम खुद ही मैनेज कर लेंगे।
8: Ura Debt Relief is one of the leading debt settlement companies. They don't charge a single penny until our debt is settled. And they have a 100% money back guarantee. Call to karo 888-888-9914.
7: अब तो करना ही पड़ेगा मैडम।
9: Don't let debt ruin your life. Visit ura.org or call 888-888-9914 and take control of your financial future.
10: सुनो, कल बहुत काम है। पहले ग्रोसरी, फिर पूजा का सामान, गिफ्ट्स भी खरीदने हैं और इन सब कुछ के बाद में कुकिंग नहीं करने वाली। कहीं अच्छा सा डिनर करके आएंगे।
5: और ये सब कुछ अगर एक ही जगह हो जाए तो?
10: कहाँ?
11: फूडिस्तान इन ऑबरी, फ्रेश ग्रोसरी, हलाल मीट, पूजा एसेंशियल्स, लाइव पानी पूरी, केटरिंग सर्विसेज, प्लस लोएस्ट प्राइस मैच गारंटी। एंड इनसाइड फूडिस्तान, एंजॉय द प्रीमियम इंडियन कुजीन एट D-Vibe, एन अपस्केल रेस्टोरेंट फॉर द परफेक्ट फैमिली डिनर।
0: फूडिस्तान इन ऑबरी, मेंशन फन एशिया एंड एंजॉय 10% डिस्काउंट।
12: क्या आपको बिजनेस खरीदने के लिए लोन चाहिए?
13: कॉल दी SBA लोन एक्सपर्ट्स।
12: क्या आप फ्रेंचाइज शुरू करना चाहते हैं?
13: कॉल दी SBA लोन एक्सपर्ट्स।
12: क्या आपको अपने बिजनेस के लिए वर्किंग कैपिटल की जरूरत है?
13: कॉल दी SBA लोन एक्सपर्ट्स।
12: कंस्ट्रक्शन हो या रेनोवेशन, बिजनेस खरीदना हो या रीफाइनेंस कराना हो, फॉर ऑल योर बिजनेस फाइनेंशियल नीड्स एट द बेस्ट इंटरेस्ट रेट एंड लोएस्ट डाउन पेमेंट, कॉल द SBA लोन एक्सपर्ट्स एट 817-786-3338। दैट्स 817-786-3338।
14: 90s के गाने सिर्फ हिट्स नहीं, हमारी यादें हैं। और अब वो लेजेंडरी आवाज आ रही है लाइव टू प्लेनो, वो आवाज जिसने 90s को अनफॉरगेटेबल बना दिया। कुमार सानू लाइव इन कॉन्सर्ट, अनफॉरगेटेबल 90s, सितंबर 11th एट द ब्रांड न्यू रॉबिन्सन फाइन आर्ट्स प्लेनो। लिमिटेड सीट्स, फ्री पार्किंग एंड मीट एंड ग्रीट ऑप्शंस अवेलेबल। टिकट्स एट eventbrite.com। मोर इन्फो 214-869-2668। प्रेजेंटेड बाय फोकस एंटरटेनमेंट एंड फॉर्च्यून ग्रुप।
15: हेलो गाइस, दिस इज मी किंजल दवे एंड यू आर लिसनिंग एंड वॉचिंग फन एशिया रेडियो।
16: डालस की धड़कन 104.9 FM, फन एशिया रेडियो।

वेलकम, नमस्कार, खुशामदीद फनीशिया रेडियो 104.9 एफएम पर। मैं मधुलिका आप सभी का जस्ट चिल में करती हूँ हार्दिक स्वागत। वेल, आज़ादी का यह पावन पर्व हमारे दिलों में देशभक्ति, एकता और गर्व की भावना को और मजबूत करे, हमारा तिरंगा हमेशा शान से लहराता रहे और हमारा भारत निरंतर प्रगति करता रहे। Well, wishing you all a very happy Independence Day of India. This is Madhulika, लेकर आई हूँ Just Chill, जहाँ करेंगे हम, as the name suggests, Just Chill. A big shout out to Sangeeta for a wonderful show that she brought to us today morning. मैं मधुलिका दूंगी आपका साथ दोपहर के 12 बजे तक। स्टूडियो का नंबर रखें याद, 972-235-5555। और आज है इंडिया का इंडिपेंडेंस डे, सो I thought that we will take you all over India and talk about the independence fight that India fought and some beautiful stories, some anecdotes and some beautiful songs that we have celebrating India.

Well, that was Vande Mataram by A.R. Rahman. और आज हम इंडिपेंडेंस डे, जी हाँ, इंडिया का इंडिपेंडेंस डे स्पेशल शो लेकर आए हैं. एंड यू नो वी विल बी डूइंग सम टाइम ट्रैवल बिकॉज बैक इन टाइम वी विल टेक यू टू द प्लेसेस दैट हेल्प इंडिया बिकम फ्री. सो टाइम ट्रैवल का जो पहला स्टॉप है, आई वुड टेक यू टू चंपारण बिहार इन 1917. यू नो हमारा जो ये पहला स्टॉप है चंपारण बिहार, इट्स 1917, इमेजिन करें. एंड जो किसान थे, दे वर स्ट्रगलिंग, द फार्मर्स वर स्ट्रगलिंग अंडर द ऑप्रेसिव इंडिगो कल्टिवेशन सिस्टम, राइट. एंड एक लॉयर जिनका नाम था मोहनदास करमचंद गांधी, ही अराइव्ड एंड उन्होंने इन फार्मर्स की जो दुखी किस्से कहानियाँ वो सब सुने समझे. एंड फिर शुरू हुआ चंपारण का सत्याग्रह, विच बिकेम वन ऑफ गांधीज अर्लीस्ट मेजर मूवमेंट्स इन इंडिया. पता है, इट शोड दैट ऑर्डनरी पीपल, एक आम इंसान जो है, व्हेन दे कम टुगेदर पीसफुली, दे कैन चैलेंज एन इनॉर्मस कॉलोनियल सिस्टम. तो चाहे यू नो जब भी, वेन एवर यू हियर द वर्ड फ्रीडम, याद रखें दैट फ्रीडम वॉजंट क्रिएटेड ओनली इन बिग सिटीज, छोटे छोटे यू नो खेतों से, गाँव से इट बिगैन, यू नो. सो समटाइम्स इट बिगैन इन अ फार्मर्स फील्ड. सो यस, एवरी स्टेप, एवरी मूवमेंट, एवरी मोमेंट काउंट्स.

What a beautiful song, isn't it? And yes, अगला गाना प्ले करूं उसके पहले बताना चाहूंगी दैट दिस पार्ट ऑफ आवर शो इज ब्रॉट टू यू बाय एजी फिनटेक्स, वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग टैक्स फर्म इन द यूएस. ये ऑफर करते हैं आपके लिए इनोवेटिव फाइनेंशियल सर्विसेज विद अनटैप्ड पोटेंशियल फॉर बोथ इंडिविजुअल्स एंड बिजनेसेस. तो आप इन्हें ट्रस्ट कर सकते हैं, दे आर वेरी एफिशिएंट एंड देन यू दे इवन गेट यू रेडी फॉर द फ्यूचर. सो आप एजी फिनटेक्स को कॉल करें, द नंबर इज 4699429888 और यू कैन विजिट agfintax.com. अच्छा, देश से जब आप दूर रहते हैं ना, जब आप देश से दूर रहते हैं तो शायद इंडिपेंडेंस डे और भी ज़्यादा इमोशनल लगता है. यू नो, वो बचपन की वो फ्लैग होस्टिंग, स्कूल में वो प्रोग्राम्स, यू नो, वो लड्डू बटना, वो पेट्रियाटिक सॉन्ग्स सुनना और गाना और ज़ोर ज़ोर से जय हिंद बोलना, ये सब बहुत याद आता है, नहीं? And yes, we are celebrating today India's Independence Day. And if you have any songs in mind, do give me a call. The studio number is 972-235-5555.

वेल द नेक्स्ट सॉन्ग इज अ सॉन्ग रिक्वेस्ट एंड इट्स रियली रियली नाइस. लेकिन उसके पहले, उस गाने को प्ले करने के पहले, मैं आपको पैशन हेल्थ प्राइमरी केयर के बारे में बताना चाहूँगी. बिकॉज यू नो, कई बार होता है कि आप अपने हेल्थ केयर डॉक्टर के पास जाते हैं एंड यू जस्ट फील कि यार डॉक्टर ने पूरी बात ठीक से सुनी भी नहीं, या यू नो पूरा टाइम नहीं दिया. राइट, हाउ मच टाइम डज योर डॉक्टर स्पेंड विद यू? 5 मिनट्स, 10 मिनट्स? वेल, पैशन हेल्थ प्राइमरी केयर की अगर बात करें तो यहाँ हर अपॉइंटमेंट जो है वो करीबन 30 मिनट का होता है. बिकॉज दे अंडरस्टैंड दैट ट्रूली अंडरस्टैंडिंग योर हेल्थ टेक्स टाइम. एंड पैशन हेल्थ जो अगर आप जाएंगे तो वहाँ यू आर नॉट जस्ट अ पेशेंट, यू आर ट्रीटेड लाइक अ फैमिली. यू नो, सो फॉर यू, फॉर योर फैमिली एंड फॉर द हेल्थ ऑफ आवर कम्युनिटी, पैशन हेल्थ प्राइमरी केयर को रखें याद. बिकॉज 30 मिनट्स इज ऑल इट टेक्स टू कम्प्लीट योर एनुअल फिजिकल, चाहे फिर वो एनजाइटी केयर हो, फाइब्रो स्कैन फॉर एल्कोहल रिलेटेड लिवर कंसर्न्स, या फिर वाइटामिन B12 डिफिशियंसी टेस्टिंग हो, एंड सो मच मोर आर ऑल अवेलेबल एट पैशन हेल्थ. आप अपना अपॉइंटमेंट स्केड्यूल करें. द नंबर इज 214-666-6259. एंड याद रखें दैट पैशन हेल्थ प्राइमरी केयर, योर हेल्थ इज आवर पैशन. And yes, coming back to Just Chill, we are celebrating India's Independence Day today. तो मैं कहूँ कि यू नो, अगर हम अब साबरमती से चले यू नो अहमदाबाद और साबरमती की तरफ, यू नो नेक्स्ट स्टॉप अहमदाबाद गुजरात, तो दिस इज़ वेयर गांधी साबरमती आश्रम बिकेम वन ऑफ द ग्रेट सेंटर्स ऑफ इंडियाज फ्रीडम मूवमेंट, है ना. सो फ्रॉम हियर, यू नो 1930 की अगर बात करें तो गांधी जी एंड हिज फॉलोअर्स बिगैन द फेमस डांडी मार्च. यू नो, थिंक अबाउट द सिम्बोलिज्म. एक सिंपल सा एक्ट था, वॉकिंग इन टू द सी एंड मेकिंग सॉल्ट ऑफ योर ओन, राइट. बट दैट सिंपल वन एक्ट बिकेम अ पावरफुल चैलेंज टू ब्रिटिश अथॉरिटी. यू नो, हमारा जो टाइम मशीन है नाउ फॉलोज दोज फुट स्टेप्स. तो अहमदाबाद, दैट विलेज आफ्टर विलेज, यू नो अंटिल वी रीच डांडी, अ प्लेस वेयर सॉल्ट बिकेम अ सिंबल ऑफ फ्रीडम. यू नो, कितनी सिंपल सी ये बात है, बट हाउ इंटरेस्टिंग कि ये छोटी छोटी बातें जो हैं बड़े बड़े मूवमेंट में बदल गई. सो दैट्स द ब्यूटी ऑफ द फ्रीडम मूवमेंट एंड यू नो इंडिया.

0: Coughing or sneezing at home? Your air ducts may be to blame. And clogged dry vents can even cause fires. Duct Time removes dust, pollen, allergens and lint, giving you cleaner air, better health, energy savings and peace of mind. Serving the DFW area and 15 plus years of experience with CSIA certified technicians and free estimates. Fun Asia listeners get $100 off duct cleaning plus free dryer vent cleaning and sanitizer with service. Call Jeetu Patel at 972-877-2500 or visit callducttime.com. Breathe easy, live safe with Duck Time.
1: अजी सुनते हो, सोच रही थी बेटे की शादी इंडिया में करे?
2: इंडिया में? तो यहाँ जो फ्रेंड्स और रिलेटिव्स हैं, वो कैसे अटेंड करेंगे?
1: पर यहाँ सारी अरेंजमेंट्स मैनेज करना भी तो कितना मुश्किल होगा।
2: हेलो, तुम डैलस में हो, यहाँ कोई भी इवेंट करना सुपर इजी है, स्पेशली जब वैनेसा इवेंट्स का साथ हो।
1: सच में? सब संभाल लेंगे?
2: अरे सब कुछ, वेडिंग हो, हाउस वार्मिंग, ग्रेजुएशन, यू नेम इट, दे डिलीवर। वेन्यू, फोटोग्राफी, हॉस्पिटैलिटी, सब कुछ एक ही जगह। सिग्नेचर इवेंट्स का डेकोर और खाना बाय द रेनॉल्ड बसेरा ग्रैंड ओनली।
3: कॉल हरी बसेरा ऑन 469-442-8770। वैनेसा इवेंट्स, योर सेलिब्रेशन पार्टनर।
4: शादी ब्याह का कोई मौका हो या कोई त्योहार, खूबसूरत लिबास खुशियों को दुगना कर देता है।
3: हर खुशी में आपके साथ मान्यवर मोहे, ट्रेडिशनल सेलिब्रेशन वेयर फॉर मेन, वुमेन एंड चिल्ड्रन, क्राफ्टेड विद एक्सक्विजिट ब्लेंडेड फैब्रिक्स। मान्यवर मोहे, लोकेटेड ऑन रीजेंट बुलेवार्ड ऑफ 635 ईस्ट इन इरविंग। आर यू ट्राइंग टू प्रोटेक्ट योर बिजनेस, रिटेन टॉप टैलेंट एंड प्लान फॉर फ्यूचर सक्सेशन ऑल एट द सेम टाइम? एन एग्जीक्यूटिव रिटेंशन स्ट्रेटजी यूजिंग लाइफ इंश्योरेंस मे हेल्प एड्रेस मल्टीपल बिजनेस गोल्स, इंक्लूडिंग की पर्सन प्रोटेक्शन, एम्प्लॉई रिटेंशन incentives and future buyout planning. To explore business life insurance strategies, visit shopcompareinsure.com to get started. Call 469-789-3603. That's shopcompareinsure.com, your 360 insurance solution. Products subject to carrier approval, policy terms and state availability. Guarantees depend on the issuing carrier. Business planning strategies should be reviewed with qualified legal and tax professionals. Not legal, tax or investment advice.
5: 2026 mein aapki rashi ke liye dhan aur safalta ke yog hain.
6: Are you sun ye astrology जो बोल रहा है 2026 तेरी राशि वालों के लिए बहुत लकी है।
7: माँ, रील्स पे सब लकी ही होते हैं, जेनेरिक प्रेडिक्शंस सबको थोड़ी हेल्प करती हैं। तो फिर अगर रियल क्लैरिटी चाहिए तो पर्सनलाइज्ड गाइडेंस लो।
8: गाइडेंस की बात हो तो एक ही नाम है, पंडित राम तुलसी, जहाँ एस्ट्रोलॉजी सिर्फ राशियों तक लिमिटेड नहीं बल्कि आपकी पर्सनल जर्नी के हिसाब से गाइड करता है। करियर हो, स्टडीज, शादी या फ्यूचर प्लानिंग, हर डिसीजन अब होगा क्लियर और कॉन्फिडेंट।
7: कॉल पंडित राम तुलसी एट 9797972654 और विजिट astroramji.com।
9: This 15th of August, don't just celebrate Independence Day, celebrate it the Indian way. Join India Association of North Texas's Anand Bazaar 2026 at the Comerica Center in Frisco. Saturday from 2 p.m. onwards, experience a grand Independence Day parade, authentic Indian food, colorful cultural performances, live music, shopping, family fun, and an unforgettable celebration of India's independence. And the best part? It's completely indoors and free for everyone.
3: Sponsorship booth from $3,000 to $50,000 and vendor stalls at $750. Call 214-529-3257.
9: Celebrate India's 80th Independence Day with the entire community. IANT Anand Bazaar 2026 on Saturday the 15th of August, 2 p.m. onwards at the Comerica Center in Frisco.
10: The Dill of Dallas. Heart to heart.

Well, that was this Rangila taken from the movie Fana. And अब आपके लिए आ गया है सैन इडली रेस्टोरेंट की तरफ से एक गिव अवे. जहाँ हेयर योर चांस टू विन एनी डोसा ऑफ योर चॉइस प्लस वन फिल्टर कॉफी एट सैन इडली वेजिटेरियन रेस्टोरेंट एंड इंडियन फूड. जहाँ 100% प्योर वेजिटेरियन खाना मिलता है मेड विद फ्रेश ऑथेंटिक फ्लेवर्स. यू नो, चाहे हो क्रिस्पी डोसाज या फ्लफी इडलीज या फिर कुछ कम्फर्टिंग साउथ इंडियन फेवरेट्स. तो साथ में शहर की जो बेस्ट फिल्टर कॉफ़ी है वो भी आपको पीने को मिलेगी. एंड यू नो, चाहे फैमिली डिनर्स हों या केटरिंग सर्विसेज विद जैन फ्रेंडली ऑप्शंस अवेलेबल, विजिट सैन इडली वेज रेस्टोरेंट. दिस इज़ गोइंग टू बी एट द हाईवे 121 और कस्टर के जंक्शन पर. तो अब ये जो गिव अवे है विच इज़ अ डोसा ऑफ योर चॉइस प्लस वन फिल्टर कॉफ़ी, वो मिलेगा आपको इस तरह जो आप मुझे बताएंगे. पहली बात तो फ़ोन नंबर रखें याद, 972-235-5555. सो यू हैव टू टेल मी दैट द ट्राई कलर्स ऑफ इंडियाज़ फ्लैग, व्हाट डू दे रिप्रेजेंट. सो यू हैव टू टेल मी व्हाट डू दोज थ्री ट्राई कलर्स ऑन इंडियन फ्लैग represent. So the studio number 972-235-5555. Let me know, what does India's flag, the tricolors and the Ashok Chakra represent.

0: ऑलराइट तो मैंने आपसे पूछा था एक सवाल, सवाल का सही जवाब देंगे तो आपको सैन एंडली रेस्टोरेंट का एक गिव अवे मिलेगा, विच इज़ अ डोसा ऑफ योर चॉइस प्लस वन फिल्टर कॉफी। तो सवाल ये था कि जो इंडिया का फ्लैग है, व्हाट डज इट रिप्रेजेंट? एंड वी डू हैव अ कॉलर ऑन एयर विद अस। हाय, यू आर लाइव ऑन एयर।
1: हाय मधुलिका, अशोक ही है।
0: हाय अशोक, सो बताइए कि जो हमारा ये इंडियन फ्लैग है, व्हाट डज इट रिप्रेजेंट?
1: ओके, सो इंडियन फ्लैग में तीन कलर होते हैं। सैफरॉन रिप्रेजेंट करेज, हिम्मत के लिए, व्हाइट है पीस के लिए, एंड जो ग्रीन है वो ग्रोथ के लिए,
0: ऑसम ऑसम,
1: एंड जो अशोक चक्र है वो धर्मा के लिए।
0: वेरी वेरी ब्यूटिफुल वे ऑफ डिस्क्राइबिंग द इंडियन फ्लैग। बिल्कुल सही जवाब दिया अशोक जी आपने। इट इज़ सो ट्रू दैट द सैफ्रन कलर, द केसरी कलर जो टॉप पे है, इट रिप्रेजेंट्स करेज, स्ट्रेंथ एंड सैक्रिफाइस। इट रिफ्लेक्ट्स द स्पिरिट ऑफ पुटिंग द नेशन बिफोर वन सेल्फ। एंड फिर जो आता है वाइट कलर जो मिडल में आता है, दैट रिप्रेजेंट्स पीस, ट्रूथ एंड प्योरिटी। इट सिंबलाइजेज द पाथ ऑफ ऑनेस्टी एंड हार्मनी। एंड देन द ग्रीन कलर, you know, at the bottom represents growth, fertility and prosperity, reflecting India's connection with the land and its progress. And then beech mein Ashok Chakra hai, which is, you know, in the middle of the white band, and it's navy blue Ashok Chakra with 24 spokes, and it represents dharma, righteousness, continuous movement and progress. So Ashok, aapne bilkul sahi jawab diya. I'm going to take you off air and take some details from you while I'm going to play a song for our listeners. So aap hold kariyega, I'll take you off air.
1: Sure.

0: The Fun Asia Network. You are listening to Fun Asia Radio 104.9 FM. KZMP 104.9 FM HD1, Pilot Point, Texas. Simulcasting on KTCG 104.1 FM HD2, Sanger, Texas. Powered by Fun Asia Films and Fun Pizza Kitchen.
1: Official tax and finance partner, AG FinTax.
0: Official injury law partner, the law offices of Omar Khwaja.
1: In association with Passion Health Primary Care.
2: Fun Asia 104.9 FM. Turn up the volume.
3: At Tanishq, no two diamonds are exactly alike. They're beautifully rare, just like the woman who wears them. That's why this is the perfect time to find yours at the Tanishq Festival of Diamonds, with up to 25% off on diamond value and making charges, plus zero deduction on your old gold exchange above 18 carat. Visit Tanishq Dallas at 2809 Preston Road, number 1200, Frisco, 75034 today. Tanishq, a Tata product. Terms and conditions apply.
4: Same order again? Same pizza, same taste, same story? Time to upgrade your cravings, Dallas. Because Fun Pizza Kitchen just dropped a bold new Mexican-inspired menu. And trust us, this is not your regular slice. Fiesta Veggie, Pollo Loco, Senor Cameron, Mucho Macho Pork. Different names, crazy flavors. Once you try these, your old order might just get ghosted. Fun Pizza Kitchen. New flavors, new obsession.
5: इस साल तो कमाल हो गया, हमारा रेवेन्यू डबल हो गया।
6: सर अच्छा है, लेकिन आपने टैक्स प्लानिंग किया?
5: नहीं।
6: बुक कीपिंग अपडेटेड है?
5: नहीं।
6: कैश फ्लो फोरकास्ट बनाया?
5: वो भी नहीं।
6: तो पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त।
7: रेवेन्यू देखकर खुश मत होइए। बिजनेस में तब ऑल इज वेल होगा जब हमारे नंबर्स भी स्ट्रांग हो। फॉर योर टैक्स प्लानिंग, बुक कीपिंग एंड CFO सर्विसेज, विजिट agfintax.com, कॉल 972-618-8555। AG FinTax, your growth, our strategy. AG Fintax, led by Forbes Finance Council member Anil Granthi.
8: Services are subject to individual eligibility and applicable laws. Terms and conditions apply.
9: मैं शादी करूंगी तो करीना वाला डिजाइनर लहंगा पहन के करूंगी, वरना दूल्हे को टाटा बाय बाय कर दो।
10: अरे मैडम, करीना वाला लहंगा और आपका बजट मैच करेगा क्या?
7: अब करेगा, बिकॉज इंडियन अटायर फ्रिस्को समर सेल इज ऑन। स्टनिंग लहंगास, एलिगेंट साड़ीज, ब्राइडल ज्वेलरी, मेंस एंड किड्स वेयर।
11: Now, sir, or price?
7: Up to 25% off on lehengas and bridal collection. Summer sale through the end of August. Only at Indian Attire Frisco. Traditional ho ya fusion, ab har outfit bolega.
12: जीनी हुकम मेरे आका, हम आज पार्टी के मूड में हैं। एक ऐसी जगह बताओ जहां मेरी एंट्री ही रॉयल हो।
13: मिराज लाउंज चलिए मेरे आका, लग्जरी लिमोजीन राइड्स आपके इंतजार में हैं।
12: मुझे ज्यादा क्राउड पसंद नहीं।
13: नो प्रॉब्लम आका, लग्जरी प्राइवेट स्पेस भी हाजिर है आपकी प्राइवेट पार्टी के लिए।
12: और एंटरटेनमेंट,
13: मूवी नाइट, बेली डांसिंग नाइट्स, प्रीमियम हुकर्स और अमेजिंग वाइब्स सब आपकी खिदमत में है।
12: वाह जीनी, ये जगह है या कोई जादू?
13: जादू नहीं, मिराज लाउंज एट मिकिनी रेंज पार्कवे। मिरेकल्स हैपन इन मिराज।
14: इस रक्षाबंधन चौकटा कैसीनो एंड रिसोर्ट ड्यूरांड के साथ सेलिब्रेट कीजिए वो रिश्ता जिसमें नोकझोंक भी है, दोस्ती भी, एंड ए लाइफ टाइम ऑफ अनफॉरगेटेबल मेमोरीज। अपने भाई या बहन के साथ जुड़ी सबसे यादगार मेमोरी हमें 1 मिनट वॉइस नोट में भेजिए एंड विन एक्साइटिंग डेली प्राइजेस इंक्लूडिंग डाइनिंग एक्सपीरियंसेस, एंटरटेनमेंट, रिजॉर्ट स्टेज एंड द ग्रैंड प्राइज, एन अनफॉरगेटेबल सिबलिंग रीयूनियन वीकेंड एट चौकटा कैसीनो एंड रिसोर्ट ड्यूरांड। अपनी स्टोरी व्हाट्सएप कीजिए 214-837-7147 पर या कॉन्टेस्ट डिटेल्स के लिए विजिट कीजिए फन एशिया रेडियो के सोशल मीडिया पेजेस।
7: चौक टॉक कैसीनो एंड रिसॉर्ट डुरांट, वेयर अनफॉरगेटेबल मेमोरीज आर मेड टुगेदर। मस्ट बी 21 और ओल्डर टू पार्टिसिपेट। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई। प्लीज प्ले रिस्पांसिबली।
15: हाय, दिस इज दीपिका पादुकोण एंड यू आर लिसनिंग टू फन एशिया रेडियो।
16: जुड़ जाओ अपनी धरती से, देसियों का सच्चा रेडियो चैनल फन एशिया 104.9 FM।

वेल दिस इज मधुलिका, लेकर आई हूँ जस्ट चिल, जहाँ करते हैं हम एज द नेम सजेस्ट जस्ट चिल। वेल सैटरडे होता है हमारा ट्रैवल सेगमेंट, जिसमें ले चलती हूँ आपको दुनिया की एक ऐसी खूबसूरत डेस्टिनेशन पर जहाँ या तो आप जा चुके हैं या जाने का मन रखते हैं। सो वेल आज इंडिया का इंडिपेंडेंस डे है, तो मैंने सोचा आपको आज मैं थोड़ा टाइम ट्रैवल कराऊँ और इंडिया की उन जगहों पर ले जाऊँ जहाँ विच रियली मेजरली कॉन्ट्रीब्यूटेड टूवर्ड्स इंडियाज इंडिपेंडेंस, राइट? तो अब जो है हमारा ट्रैवल स्टॉप नंबर 3 इज अमृतसर, पंजाब। 1919 की अगर बात करें, राइट, इफ वी टर्न द क्लॉक टू 1919 एंड ट्रैवल टू अमृतसर, यहाँ पर जलियांवाला बाग ऑन अप्रैल 13, 1919 एक बड़ी पीसफुल सी गैदरिंग थी एंड वॉज फायर्ड अपॉन बाय ब्रिटिश ट्रूप्स अंडर ब्रिगेडियर जनरल रेनाल्ड डायर। द मसैक्र शुक्ड इंडिया, यू नो इट शॉक्ड इंडिया, बहुत से इंडियंस, द इवेंट, यू नो फॉर मैनी इंडियंस द इवेंट बिकेम अ टर्निंग पॉइंट, डीपनिंग द कन्विक्शन दैट कलोनियल रूल हैड टू एंड, हैड टू स्टॉप। वेल दिस इज वन ऑफ दोज स्टॉप्स ऑन द जर्नी वेयर द म्यूजिक नीड्स टू बिकम क्वाइटर, बिकॉज इंडिपेंडेंस वॉजन सिंपली अ सेलिब्रेशन वेटिंग टू हैपन, इट केम आफ्टर इनॉर्मस पेन एंड सेक्रीफाइस। सो द नेक्स्ट वन, वेल, it's sung by none other than Lata Mangeshkar ji.

आज हम कर रहे हैं टाइम ट्रैवल। जी हाँ, हम इंडिपेंडेंस डे तो सेलिब्रेट कर ही रहे हैं, साथ ही साथ याद कर रहे हैं कि ये इंडिपेंडेंस डे, यू नो, इट टुक सो मेनी फाइट्स, सो मेनी बैटल्स, सो मेनी रेवोल्यूशंस टू एक्चुअली हैपन। सो द टाइम ट्रैवल का स्टॉप नंबर 4 है काकोरी, उत्तर प्रदेश, 1925। यू नो, काकोरी ट्रेन एक्शन बिकेम वन ऑफ द मोस्ट फेमस रेवोल्यूशनरी एपिसोड्स ऑफ द फ्रीडम स्ट्रगल। यहाँ पर जो यू नो यंग रेवोल्यूशनरीज थे, इंक्लूडिंग राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाकुल्ला खान, राजेंद्र लहरी एंड रोशन सिंह, दे वर एसोसिएटेड विद द मूवमेंट। इनका ऑब्जेक्टिव था टू अबटेन फंड्स फॉर रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज बाय टारगेटिंग अ ट्रेन कैरिंग गवर्नमेंट मनी। ये जो स्टोरी ऑफ काकोरी है, इट रिमाइंड्स अस दैट इंडियाज फ्रीडम मूवमेंट वॉज नॉट वन सिंगल मूवमेंट बट यू नो विद वन सिंगल मेथड। लेकिन देर वॉज सत्याग्रही, देर वर रेवोल्यूशनरीज, देर वर स्टूडेंट्स, देर वर वर्कर्स, देर वर जर्नलिस्ट, सोल्जर्स एंड देर वर ऑर्डिनरी सिटीजन्स। दे ऑल यू नो वर ऑल कंबाइनिंग टूगेदर डिफरेंट पार्ट्स, वन इनॉर्मस ड्रीम, एंड दैट वॉज द इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया।

Well, that was a Vande Mataram sung by none other than A.R. Rahman. Well, this is Madhulika, लेकर आई हूँ जस्ट चिल, जहाँ कर रहे हैं हम, as the name suggests, just chill. Well, आज हम celebrate कर रहे हैं इंडिया का इंडिपेंडेंस डे, एंड और भी कुछ बातें बताऊंगी, कुछ अच्छे अच्छे गाने प्ले करूंगी, लेकिन पहले आपको मैं श्री कृष्णा ज्वेलर्स के बारे में बताना चाहूंगी. वेयर ज्वेलरी इज मोर देन एन एक्सेसरी, यू नो, इट्स अ रिफ्लेक्शन ऑफ ट्रेडिशन, इट्स अ रिफ्लेक्शन ऑफ एलिगेंस एंड टाइमलेस ब्यूटी. तो चाहे आपको क्लासिक गोल्ड डिजाइन चाहिए हों या स्पार्कलिंग डायमंड्स, फ्रॉम इंट्रिकेट कुंदन टू स्टनिंग पोलकी कलेक्शन, सब कुछ यहाँ मिलेगा. जी हाँ, एवरी पीस इज क्राफ्टेड टू सेलिब्रेट लाइफ स्पेशल मोमेंट्स. सो नाउ वेलकमिंग यू एट द न्यू लोकेशन, एंड दैट्स 13145 स्वीट 220 मेन स्ट्रीट, फ्रिस्को. The Shri Krishna Jewelers crafting fine jewelry and cherished memories since 1967.

Well, that was taken from the movie राजी. अच्छा, आप राजी हो या ना हो भैया, एनर्जी बिल्स तो आते ही हैं, राइट? तो जब आपके घर के ही एनर्जी बिल्स इतने ज़्यादा आ रहे हैं, स्पेशली इतनी गर्मी जो हो रखी है, इमेजिन जो बिजनेस ओनर्स हैं उनके क्या हाल हो रहे होंगे. सो दिस अनाउंसमेंट इज स्पेशली गोइंग आउट फॉर टेक्सस बिजनेस ओनर्स. अगर आप ढूंढ रहे हैं, इफ़ यू आर लुकिंग फॉर अ स्मार्टर कमर्शियल एनर्जी सोल्यूशन, देन आपको मैं बताऊँगी तारा कमर्शियल एनर्जी के बारे में. जी हाँ, बिकॉज they have been proudly serving Texas businesses since 2002. Inke hai competitive rates, reliable service and customized energy plan. So they can literally customize your energy plan as per your need. To aap Tara Commercial Energy ko call kare. The number is 844-428-2808 or you can visit taraenergy.com today and figure out what is the thing that will best suit you. So the number once again for Tara Commercial Energy, 844-428-2808.

दैट वाज टेकन फ्रॉम स्वदेश. लेकिन अगर आप कहीं कोई ट्रक या कार एक्सीडेंट में फंस गए हैं तो मैं आपको बता सकती हूँ कि आपको किसे आवाज़ देनी है. आपको आवाज़ देनी है अटर्नी ओमर ख्वाजा को, क्योंकि अगर आप कहीं कार या ट्रक एक्सीडेंट में या कोई स्लिप या फॉल इंसिडेंट में अटक गए हैं, फंस गए हैं, देन अटर्नी ओमर ख्वाजा जो है ना केवल आपका केस लड़ेंगे बल्कि ही विल मेक श्योर दैट यू गेट द कॉम्पनसेशन दैट यू डिजर्व. इंश्योरेंस कंपनीज के स्ट्रेस से भी वही डील करेंगे एंड आप उन्हें पे नहीं करेंगे जब तक आप अपना केस जीत नहीं जाते. सो फॉर अ फ्री कंसल्टेशन आप उन्हें कॉल करें. द नंबर इज 4693005046 और विजिट attorneyomar.com. और अब जो हमारा टाइम ट्रैवल है, आई टेक यू टू कोलकाता, बंगाल. यू नो कोलकाता वॉज वन ऑफ द मेजर सेंटर्स ऑफ इंडियाज पॉलिटिकल एंड इंटेलेक्चुअल अवेकनिंग. चाहे वो रेवोल्यूशनरी मूवमेंट्स हों टू न्यूज़ पेपर्स, लिटरेचर, यू नो इंडियाज फ्रीडम स्टोरी वॉजन कन्फाइंड टू जस्ट गांधी एंड द कांग्रेस. देर वर रेवोल्यूशनरीज, थिंकर्स एंड लीडर्स अक्रॉस द पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम, इंक्लूडिंग सुभाष चंद्र बोस, हुज कॉल ऑफ गिव मी ब्लड एंड आई विल गिव यू फ्रीडम बिकेम वन ऑफ द मोस्ट मेमोरेबल स्लोगन्स ऑफ द एरा. Indian National Army would later become another powerful part of the final chapter of the struggle. So, Independence Day ki jo aaj hum celebration kar rahe hain, there are so many people who you can credit to. You know, it was like a pura nation lag gaya tha is struggle mein. So, that's the beauty of India's independence.

मैं ये कहानी आगे और बढ़ाऊं उसके पहले माई टाइम इक्विटी के बारे में बताना चाहूंगी, क्योंकि अगर आपको कोई भी फाइनेंशियल गाइडेंस चाहिए देन माई टाइम इक्विटी लेड बाय सीपीए सुधीर पाए इज देयर फॉर यू। ये ऑफर करते हैं आपके लिए पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, रियल एस्टेट एंड ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट्स एज वेल। आप विजिट करें mytimeequity.com या फिर उन्हें कॉल करें। द नंबर इज 4697021272। द नंबर वंस अगेन इज 4697021272।

Well, it's always fun talking to you all and playing some melodious songs along the way. It's time for me to say goodbye. But aap kahin jaiyega nahi. Do stay tuned in to 104.9 FM, Fun Asia Radio. As yahan hamare shows aapko entertain karte rahenge. Coming up next is Neelam. Well, jaate jaate main kahungi that I want to wish all our wonderful listeners a very happy Independence Day of India. Well, aaj ka din hai apni azadi ko celebrate karne ka, apne freedom fighters ko salute karne ka aur Hindustani hone par garv mehsoos karne ka. Well, chahe hum duniya ke kisi bhi kone mein kyun na ho, दिल हमेशा हिंदुस्तान के लिए ही धड़कता है. नहीं, आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं. जय हिंद, जय भारत. एंड मैं मिलूंगी आपको अब कल सुबह 10 बजे इन जस्ट चिल, जहां करेंगे हम एज द नेम सजेस्ट जस्ट चिल. वेल, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा. दिस इज मधुलिका साइनिंग ऑफ.

0: is the Fun Asia Network. You are listening to Fun Asia Radio 104.9 FM. KZMP 104.9 FM HD1, Pilot Point, Texas. Simulcasting on KTCG 104.1 FM HD2, Sanger, Texas. Powered by Fun Asia Films and Fun Pizza Kitchen.
1: Official tax and finance partner, AG FinTax.
0: Official injury law partner, the law offices of Omar Khwaja.
1: In association with Passion Health Primary Care.
2: कहाँ गया, कहाँ रखा था? सुनो ना, मेरा वो वाला सेट कहाँ है?
3: कौन सा?
2: अरे वो गोल वाला, थोड़ा ट्रेडिशनल, उसमें पोलकी भी है।
3: अरे सारे तो सेम है।
2: नहीं, वो श्री कृष्णा से जो लिया था ना हमने, ये देखो, ये वाला।
3: ओह हाँ, ये तो अलग है।
4: अलग तो होगा ही, श्री कृष्णा ज्वेलर्स से जो है। From timeless gold and radiant diamonds to heritage polkis, discover Texas's largest handcrafted jewelry collection, now at Main Street in Frisco. Shri Krishna Jewelers, crafted for moments that matter. Visit shrikrishna.com.
5: अगर आपकी नाइट भी तंदूरी डिलाइट्स के बिना अधूरी लगती है तो ये खबर आपके लिए। दिस समर एंजॉय 20% ऑफ ऑन ऑल एपेटाइजर्स, तंदूरी आइटम्स एंड मॉकटेल्स ओनली एट तंदूरी फ्लेम। चिकन तंदूरी, मलाई चिकन टिक्का, पनीर टिक्का, मोमो या सोया चाप, अब हर बाइट के साथ मिलेगी एक्स्ट्रा सेविंग्स। डाइन इन ओनली एट तंदूरी फ्लेम गार्लैंड, वेयर एवरी बाइट इज अ सेलिब्रेशन।
6: ये तारा वो तारा हर तारा।
4: अरे अरे अरे, डैलस के आसमान में इतने सारे तारा नहीं, बिजनेस ओनर्स के लिए तो सिर्फ एक ही तारा काफी है, तारा कमर्शियल एनर्जी। 2002 से टेक्सास के हजारों बिजनेसेस का ट्रस्टेड एनर्जी पार्टनर, होटल्स, गैस स्टेशंस, वेयरहाउसेस, मेडिकल फैसिलिटीज, रिटेल स्टोर्स और ऑफिस बिल्डिंग्स, कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग, पर्सनलाइज्ड एनर्जी सॉल्यूशंस और एक्सेप्शनल कस्टमर सर्विस। तारा कमर्शियल एनर्जी, पावरिंग टेक्सास बिजनेसेस फॉर ओवर 2 decades। कॉल 844-428-2808 और विजिट taraenergy.com टुडे। तारा कमर्शियल एनर्जी, जो आपके बिजनेस को रोशन रखे।
7: अजी सुनते हो, सोच रही थी बेटे की शादी इंडिया में करे।
5: इंडिया में तो यहाँ जो फ्रेंड्स और रिलेटिव्स हैं वो कैसे अटेंड करेंगे?
7: पर यहाँ सारे अरेंजमेंट्स मैनेज करना भी तो कितना मुश्किल होगा।
5: हेलो, तुम डैलस में हो, यहाँ कोई भी इवेंट करना सुपर इजी है, स्पेशली जब वैनेसा इवेंट्स का साथ हो।
7: सच में सब संभालेंगे?
5: अरे सब कुछ, वेडिंग हो, हाउस वार्मिंग, ग्रेजुएशन, यू नेम इट, दे डिलीवर। वेन्यू, फोटोग्राफी, हॉस्पिटैलिटी, सब कुछ एक ही जगह। सिग्नेचर इवेंट्स का डेकोर और खाना बाय द रेनॉल्ड बसेरा ग्रैंड ओनली।
4: कॉल हरी बसेरा ऑन 4694428770। वैनेसा इवेंट्स, योर सेलिब्रेशन पार्टनर।
8: Same order again? Same pizza? Same taste? Same story? Time to upgrade your cravings, Dallas. Because Fun Pizza Kitchen just dropped a bold new Mexican-inspired menu. And trust us, this is not your regular slice. Fiesta Veggie, Pollo Loco, Sanao Cameron, Mucho Macho Pork. Different names, crazy flavors. Once you try these, your old order might just get ghosted. Fun Pizza Kitchen. New flavors, new obsession.
9: This 15th of August, don't just celebrate Independence Day, celebrate it the Indian way. Join India Association of North Texas's Anand Bazaar 2026 at the Comerica Center in Frisco. Saturday from 2 p.m. onwards, experience a grand Independence Day parade, authentic Indian food, colorful cultural performances, live music, shopping, family fun, and an unforgettable celebration of India's independence. And the best part? It's completely indoors and free for everyone.
4: Sponsorship booth from $3,000 to $50,000 and vendor stalls at $750. Call 214-529-3257.
9: Celebrate India's 80th Independence Day with the entire community. IANT Anand Bazaar 2026 on Saturday the 15th of August, 2 p.m. onwards at the Comerica Center in Frisco.

दिस इज़ के जी एम पी 104.9 FM फनेशा रेडियो पे मैं हूँ नीलम आपके साथ और इस बहुत ही खूबसूरत शहनाई की धुन के साथ स्वागत है आप सभी का, प्यार भरा स्वागत। ये कार्यक्रम आपकी सेवा में हम प्रस्तुत करते हैं हर शनिवार की दोपहर 12 से 3 के बीच में। 2 बजे तक आपके लिए कुछ थीम बेस्ड गाने प्रस्तुत करूंगी और 2 से 3 के बीच में हम प्रस्तुत करेंगे कम्युनिटी आउटरीच की प्रस्तुति, दैट इज कम्युनिटी राउंडअप। आज है 15 अगस्त जी, बिल्कुल 15th ऑफ अगस्त इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेशन, और आपने हमारे फनेशा रेडियो पे कई सारे गाने सुने हमारे वतन को याद करते हुए। जी बिल्कुल, ये सेलिब्रेशन जारी रहेगा हमारे साथ भी, लेकिन कुछ अलग होगी, बातें होगी बिल्कुल वतन की, लेकिन गाने होंगे कुछ अलग। मधुलिका को सुना आपने 12 बजे तक, और जैसे कि हमने कहा हमारा और आपका साथ रहेगा 3 बजे तक। जी हाँ, लाती हूँ मैं आपके लिए 2 बजे तक बॉलीवुड बेस्ड गाने, एंड राइट आफ्टर 2 PM वी विल हैव अ कम्युनिटी राउंड अप। तो आज का जो विषय है ऑफकोर्स 15 अगस्त को याद करते हुए, हमारे वतन को याद करते हुए, लेकिन इतिहास के कुछ पन्ने को हम याद करेंगे, हम चलेंगे कुछ पीछे और ऐसी फिल्म्स को याद करेंगे, ऐसी बॉलीवुड फिल्म्स को याद करेंगे जहां ये सारी फिल्म बनी थी कहीं ना कहीं किसी ऐतिहासिक घटना पे, कहीं ना कहीं किसी हिस्टोरिकल कैरेक्टर्स पे, और वही बातें वही सवाल भी होंगे कुछ इतिहास से। जी हाँ, आपको आपके क्लासरूम में ले जाऊंगी आज, और कुछ हिस्ट्री क्लासेस हो जाएगी आज, हम बहुत सारी बातें करेंगे हमारे वतन की लेकिन इतिहास की। तो गाने, जैसे कि मैंने कहा, जितने भी आप फिल्मों के गाने सुनेंगे वो सारी फिल्म्स कहीं ना कहीं बनी थी किसी हिस्टोरिकल इवेंट्स पे, हिस्टोरिकल कैरेक्टर्स पे। पहला गीत हम सुनेंगे मंगल पांडे से, और मंगल पांडे एज यू नो की जो बनी थी 1857 की जो रेवोल्यूशन हुई थी उनके, मंगल पांडे की जिंदगी पर आधारित थी ये बातें। ऐसे बहुत सारे गाने, कुछ सवाल हो गए इतिहास के आप ही के लिए, और 104.9 FM फनेशिया रेडियो।

0: चिंगारी फड़क चुकी है।
1: मंगल पांडे से सुना आपने ये गीत, और जैसे कि मैंने कहा जी हाँ, आज आज़ादी का जश्न हम मना रहे हैं यहाँ पे आपके साथ ऑन फनेश रेडियो, और इसीलिए जितने भी गाने होंगे कुछ ऐसे गाने हैं जो ऐतिहासिक पात्र पे बने थे, ऐतिहासिक घटना पे बने थे, इतिहास के पन्नों को हम पलटा रहे हैं यहाँ पर आज उन्होंने 4.9 FM फनेश रेडियो। कुछ सवाल भी हो गया आपके लिए, और हो सकता है कि आपके भी कुछ हमें जानकारी मिले, आपसे कुछ हमें ज़्यादा मुझे सुनने को मिले जो मुझे शायद ना पता हो। बस थोड़ा सा इंतज़ार कीजिए कौन से सवाल होंगे। चलिए अगला गीत है रज़िया सुल्तान फिल्म से लिया गया है ये गीत लता जी की आवाज़ में। रज़िया सुल्तान वॉज अगेन अ हिस्टोरिकल कैरेक्टर जो दिल्ली पे उनकी सल्तनत थी। तो ये ऐसे बहुत सारे हम बातें करेंगे हमारे इतिहास से ऑन 104.9 FM फनेश रेडियो, ब्रिंगिंग द कम्युनिटी टुगेदर एवरी संडे विथ मी योर होस्ट नीलम।

0: रज़िया सुल्तान से सुना आपने ये गीत। स्वागत कर रही हूँ आपका इस कार्यक्रम में ऑन 15 अगस्त। आज आपके लिए कुछ ऐसे गाने, ऐसी फिल्म्स लाई हूँ जो हमारी बॉलीवुड में बनी हुई है इतिहास पे। जी हाँ, ऐतिहासिक घटनाओं पे, ऐतिहासिक पात्र पे, और ऐसे बहुत सारे गाने हम सुनेंगे और उसी के साथ कुछ सवाल भी होंगे। तो चलिए, अब आ रहा है हमारा पहला सवाल। भगत सिंह के लिए तो हम सभी जानते हैं, भगत सिंह पे बहुत सारी फिल्म्स भी बनी हुई है। हमने हमारे इतिहास के क्लासेस में भी भगत सिंह के लिए बहुत कुछ पढ़ा है, जाना है, और गर्व भी हमने हमेशा महसूस किया है। सवाल मेरा ये है कि आप मुझे बताएंगे कि भगत सिंह के साथ और भी उनके दो दोस्त थे जो जेल में थे, और इन तीनों को साथ में फांसी लगाई गई थी। तो ये है आपके लिए सवाल। आप जैसे कि मैंने कहा कि आज पूरी इतिहास की क्लास लेने वाली हूँ मैं कितना पढ़ा हुआ है, कितना याद था, क्या क्या भूल गए हैं, वो सारे सवाल आपको आज याद आएंगे। एंड ऑफकोर्स गूगल इज देयर, बट आई वुड अप्रीशिएट कि हम गूगल को आज इस्तेमाल ना करें और आप मुझे बस यूं ही आपकी जितनी भी याद है, आपकी जितनी मेमोरीज है हमारे इतिहास के लिए, हमारे वतन के लिए, वो हमसे शेयर करेंगे। तो सवाल मैं एक बार फिर से दोहरा रही हूँ कि भगत सिंह, शहीद भगत सिंह, जो हम उन्हें बहुत ही गर्व के साथ उन्हें याद करते हैं, उनके साथ उनके दो दोस्त भी थे जिनको फांसी लगाई गई थी। इट वॉज नॉट ओनली हिम, देर वर टू मोर फ्रेंड्स टूगेदर एंड दे ऑल वर वेरी यंग, नौजवान थे, और तीनों को फांसी लगाई गई थी। तो कौन थे ये बताएंगे मुझे आप। एंड फनीशा, यू आर लाइव ऑन एयर, रेडियो की आवाज प्लीज। यस सर, यू आर ऑन एयर।
1: यस, द टू फ्रेंड्स आर राजगुरु एंड सुखदेव।
0: यस सर, एब्सोल्युटली राजगुरु एंड सुखदेव। एंड व्हाट्स योर नेम?
1: समर।
0: समर जी, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच सर। एंड फनीशा, यू आर लाइव ऑन एयर। हेलो, एंड आई थिंक आई लॉस्ट दैट लाइन। फनीशा, यू आर लाइव ऑन एयर। हेलो, यस सर, बताइए क्या है आपके जवाब।
1: भगत सिंह के साथ दो लोग थे, एक राजगुरु और एक सुखदेव।
0: वेरी नाइस सर, तो आपको उनकी पूरी कहानी भी बताओगे कि उनके साथ एक और भी थे चंद्रशेखर आजाद, लेकिन तीनों की ये जो तिकड़म है, भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, वो बहुत ही करीबी दोस्त भी थे और साथ ही उन्होंने क्रांति की थी। सो थैंक यू सो मच सर फॉर रिमेम्बरिंग एंड नॉट डूइंग गूगल, राइट?
1: नो नो नो
0: नो गूगल, नॉट गूगल एआई टुडे। फनीशा, यू आर लाइव ऑन एयर।
2: Hello? Yeah.
0: Yes,
2: did
0: sir.
2: You get the answer?
0: Yes, I did, sir. But do you have anything to say about those friends? आप कुछ कहना चाहेंगे उन तीनों के लिए?
2: They were awesome for whatever the fight that they have done.
0: Absolutely, yeah, absolutely.
2: It was incredible.
0: Thank you so much,
2: independence,
0: sir. Thank you, जी. सोचिए जरा, जिस उम्र में हम अपने फ्यूचर की योजनाएं बनाते हैं, कॉलेज में ये करेंगे, कॉलेज में वो करेंगे, जिस उम्र में हमारे माँ बाप हमारे लिए इतने सारे ख्वाब देखते हैं कि क्या होगा मेरे बेटे का भविष्य, पढ़ने के बाद कहाँ जाएगा, पढ़ने के बाद क्या करियर होगी, उसी उम्र में जब आपकी ज़िंदगी को आप कुर्बान करते देश के लिए, वतन के लिए, तो उन शहीदों को सलाम। और उन शहीदों पे बहुत सारी फिल्म्स बनी है, शहीद भगत सिंह 50s में, 70s में, 80s में, जैसे कि मैंने कहा कि आज जो गाने सुनेंगे आप उसी फिल्मों से सुनेंगे जो ऐतिहासिक घटनाओं पे बनी थी। गाने पैट्रियोटिक हो ना हो, लेकिन इतिहास की मेमोरी तो बिल्कुल आपकी मैं आज झंझोड़ कर रखने वाली हूँ। बहुत सारे सवाल आपको पूछने वाली हूँ हमारे इतिहास से। गाने इसीलिए शायद मैं पैट्रियोटिक बहुत सारे नहीं लगा रही हूँ, क्योंकि ये सारे गाने आपने सुबह से सुने हुई है। सो आई डोंट वॉन्ट टू पुट द सेम रिपीटेटिव लिस्ट फॉर ऑल ऑफ यू, और बहुत सारे आज आप भी सुनेंगे इन रेस्ट ऑफ द प्रोग्रामिंग। तो मैंने सोचा कि बातें इतिहास की होगी, गाने कुछ अलग,

0: सरदार उद्धम सिंह से बैकग्राउंड म्यूजिक आप सुन रहे थे और 104.9 एफएम फनेशिया रेडियो। जी हाँ, आज इस संगीत में ऐतिहासिक सफर में स्वागत करती हूँ आपका एक बार फिर से। ये सफर रहेगा आपके लिए जारी और 104.9 एफएम टिल 2 PM दूसरे तीन के बीच में हम प्रस्तुति करेंगे आपके लिए कम्युनिटी आउटरीच की कम्युनिटी राउंड अप। 15th of August सेलिब्रेशन हो रही है यहाँ पर आपके साथ और फनेशिया रेडियो के साथ। 14th of August हमारे जितने भी पाकिस्तानी लिसनर्स हैं उनको भी बहुत बहुत ढेर सारी बताया एज दे सेलिब्रेटेड देयर इंडिपेंडेंस डे यस्टरडे। तो चलिए, होगा कमर्शियल ब्रेक, लेकिन आज जैसे कि मैंने कहा, नो गूगल नो AI, आपको बस आपकी इतिहास की क्लासेस याद करनी है। 7th grade से लेके 8th grade के भी सवाल हो सकते हैं, 9th grade के भी हो सकते हैं, बहुत सारे हो गए सवाल इतिहास से, इतिहास के पन्नों से। हमारे वतन में इतनी सारी डायनेस्टीज आई, हमारे वतन में कितने सारे पन्ने पलट गए, डिफरेंट एम्पायर्स, डिफरेंट डायनेस्टीज, एंड यू नो एवरी सेंचुरी हैड अ डिफरेंट स्टोरी टू टेल। तो बस ऐसी बहुत सारी कहानियाँ आपके साथ रहेगी और 104.9 FM। याद कर लेते हैं ड्रीम होम मॉर्गेज को। जी हाँ, ड्रीम होम मॉर्गेज आपके ख्वाबों के घर के लिए। अगर आप रिफाइनेंस करवाना चाहें या पहली बार मॉर्गेज करवा रहे हैं, आज ही कॉल कीजिएगा हुसैन भाई को 9722455626। वंस अगेन, दैट इज 9722455626। और यू कैन विजिट dreamhomemortgage.com एंड दैट इज ड्रीम होम मॉर्गेज एंड दैट इज वंस अगेन 9722455626। त्योहारों की बस बिल्कुल जैसे कि भरमार आ रही है, अब राखी का त्यौहार आएगा, राखी के बाद नवरात्र होंगे, दिवाली वगैरह वगैरह, इतने सारे त्यौहार है, तो कुछ डायमंड्स की ज्वेलरी भी खरीदी जाए, है ना। सो डायमंड्स आर जस्ट नॉट फॉर एवर, दे आर ऑफ कोर्स आपके लिए आपके घर की इन्वेस्टमेंट भी है। तो आप जा सकते हैं तनिष्क में, यू कैन एंजॉय अप टू 25% ऑफ ऑन डायमंड वैल्यू एंड मेकिंग चार्जेस प्लस 0% डिडक्शन ऑन द एक्सचेंज ऑफ गोल्ड अबव 18 कैरेट्स, यानी कि 18 कैरेट की आपकी पुरानी जो भी ज्वेलरी है आप एक्सचेंज करेंगे तो उस पर आपको 0% देने होंगे। दैट इज तनिष्क इन फ्रिस्को, जरूर जाएगा। वंस अगेन, इट इज तनिष्क ज्वेलर्स इन फ्रिस्को। और जैसे कि मैंने कहा, बहुत सारी फिल्म्स हमारी बॉलीवुड में बनी हुई है इतिहास पे, ऐतिहासिक पात्र पे, ऐतिहासिक घटनाओं पे, वो सारी फिल्मों के गाने हम आपको सुनवाएंगे। उसी के साथ कुछ हो गए सवाल, कमर्शियल ब्रेक के बाद आपको मैं सवाल पूछना चाहूंगी मुगल डायनेस्टी के लिए कौन सा होगा, लेकिन थोड़ा सा।
1: At Tanishq, no two diamonds are exactly alike. They're beautifully rare, just like the woman who wears them. That's why this is the perfect time to find yours at the Tanishq Festival of Diamonds with up to 25% off on diamond value and making charges, plus zero deduction on your old gold exchange above 18 carat. Visit Tanishq Dallas at 2809 Preston Road, number 1200, Frisco 75034 today. Tanishq, a Tata product. Terms and conditions apply.
2: Give your children the gift of spiritual grounding and cultural identity through Chinmaya Mission's Balavihar program. Families can choose from 3 convenient locations. Chinmaya Mission also offers a variety of enriching programs, including Gita chanting, Shlokathon, satsangs for adults, festival celebrations, cultural activities, and language classes. Registration of Balavihar is now open. Visit cmdfw.org for complete details. Hari Om.
3: Dude, life में कुछ ऐसा करना है जिसमें मैं फ्रंट पेज पे रहूं।
4: फ्रंट पेज का तो पता नहीं, पर तेरा पेज 3 में होना मेरी गारंटी है।
3: कैसे?
4: पेज 3 ईटरी?
3: नो, नॉट अनदर रेस्टोरेंट अगेन।
4: Dude, it's Page 3. Start with the bar, signature cocktails, classic pours, and the food crafted to suit every craving, every appetite.
3: मतलब great food, great drinks, and great company, यानी कि मैं।
5: Page 3 ईटरी, eat, sip, gossip, repeat.
6: Who are the employees your company simply cannot afford to lose? And are you doing enough to reward and retain them? An executive bonus plan using life insurance can be a flexible way to offer select key employees valuable protection today and potential future benefits later. To learn whether this strategy may fit your business, visit shopcompareinsure.com to get started. Call 469-789-3603. That's shopcompareinsure.com. Your 360 insurance solution. Products subject to carrier approval, policy terms and state availability. Guarantees depend on the issuing carrier. Consult qualified legal and tax professionals before implementing any business insurance strategy. Not legal, tax, investment or financial advice.
7: 2026 mein aapki rashi ke liye dhan aur safalta ke yog hain.
8: Are sun, ye astrologer bol raha hai 2026 teri rashi walon ke liye bahut lucky hai.
9: Ma, reels pe sab lucky hi hote hain. Generic predictions sabko thodi help karti hain. To phir agar real clarity chahiye to personalized guidance lo.
10: की बात हो तो एक ही नाम है, पंडित राम तुलसी। जहां एस्ट्रोलॉजी सिर्फ राशियों तक लिमिटेड नहीं बल्कि आपकी पर्सनल जर्नी के हिसाब से गाइड करता है। करियर हो, स्टडीज, शादी या फ्यूचर प्लानिंग, हर डिसीजन अब होगा क्लियर और कॉन्फिडेंट।
9: कॉल पंडित राम तुलसी एट 9797972654 और विजिट astroramji.com।
11: क्या आपको बिजनेस खरीदने के लिए लोन चाहिए?
12: कॉल दी SBA लोन एक्सपर्ट्स।
11: क्या आप फ्रेंचाइज शुरू करना चाहते हैं?
12: कॉल दी SBA लोन एक्सपर्ट्स।
11: क्या आपको अपने बिजनेस के लिए वर्किंग कैपिटल की जरूरत है?
12: कॉल दी SBA लोन एक्सपर्ट्स।
11: कंस्ट्रक्शन हो या रेनोवेशन, बिजनेस खरीदना हो या रीफाइनेंस कराना हो, फॉर ऑल योर बिजनेस फाइनेंशियल नीड्स एट द बेस्ट इंटरेस्ट रेट एंड लोएस्ट डाउन पेमेंट, कॉल दी SBA लोन एक्सपर्ट्स एट 817-786-3338। दैट्स 817-786-3338।
13: This 15th of August, don't just celebrate Independence Day, celebrate it the Indian way. Join India Association of North Texas's Anand Bazaar 2026 at the Comerica Center in Frisco. Saturday from 2 p.m. onwards, experience a grand Independence Day parade, authentic Indian food, colorful cultural performances, live music, shopping, family fun, and an unforgettable celebration of India's independence. And the best part? It's completely indoors and free for everyone.
14: Sponsorship booth from $3,000 to $50,000 and vendor stalls at $750. Call 214-529-3257.
13: Celebrate India's 80th Independence Day with the entire community. IANT Anand Bazaar 2026 on Saturday, the 15th of August, 2 p.m. onwards at the Comerica Center in Frisco.

हरिहरन जी की आवाज़ में ताजमहल फिल्म से सुना आपने ये गीत। जी हाँ दोस्तों, स्वागत है प्यार भरा इस कार्यक्रम में। और आज के गाने जो भी है वो सारे गाने हमारी बॉलीवुड की फिल्म जो कहीं ना कहीं किसी ऐतिहासिक घटना ऐतिहासिक पात्र पे बनी है। जी हाँ, ऐसी बहुत सारी बातें हैं हमारे बॉलीवुड में। नाउ डिड दे डू द जस्टिफाई और नॉट, दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी। उन्होंने जस्टिस किया नहीं किया इन फिल्मों के साथ, इन कहानियों के साथ, उन पात्रों के साथ, वो कहानी अलग है। लेकिन बिल्कुल कोशिश की गई है और वो गाने हम सुनेंगे उसी इतिहास के पन्ने को पलटाते हुए। कुछ सवाल भी मैं आप सभी से पूछ रही हूँ यहाँ पे कार्यक्रम में। कमर्शियल ब्रेक में जाने से पहले मैंने आपसे सवाल पूछा था भगत सिंह के लिए। जी हाँ, उनके तीन दोस्तों के नाम जो तीनों साथ में जिनको फांसी दी गई थी, दैट वर राजगुरु, सुखदेव एंड भगत सिंह जी। अब आ रहा है मेरा दूसरा सवाल। हम जब भी दिल्ली की बात करते हैं, दिल्ली सल्तनत की, हमारे जहन में मुगल डायनेस्टी आती है, मुगल एम्पायर। लेकिन उससे पहले भी 8वीं शताब्दी में 8th सेंचुरी से लेके कहीं ना कहीं हिंदू राजवंश भी रहा था। तो ये है आपके लिए सवाल कि विच एवर किंग्स यू मे रिमेंबर, जो भी डायनेस्टी आपको याद आ रही है बिफोर मुगल डायनेस्टी। सी, मुगल डायनेस्टी आई थिंक केम आफ्टर 13th सेंचुरी, 13th-14th सेंचुरी के अराउंड थी मुगल डायनेस्टी। लेकिन उससे पहले दिल्ली की सल्तनत पे हिंदू राजवंश भी रहा है। तो जितने भी राजा आपको याद आ रहे हैं मुझे बताइएगा 9722355555। एज आई सेड कि मुगल डायनेस्टी वॉज ऑफकोर्स देयर फॉर अबाउट 500 ईयर्स, लेकिन उससे पहले कुछ हिंदू राजा भी रहे थे, हिंदू राजवंश भी रहे हैं दिल्ली की सल्तनत पे। तो ये है आपके लिए सवाल कि कौन से राजा, इवन इफ यू रिमेंबर ओनली वन नेम, एक ही राजा का नाम आपको याद आ रहा है तो भी मुझे बताइएगा। वंस अगेन द नंबर इज 9722355555। सवाल है मेरा दिल्ली की सल्तनत के लिए ऑन 104.9 FM फनेशिया रेडियो।

0: जोधा अकबर से सुना आपने ये बहुत ही खूबसूरत गीत। और सवाल, जैसे कि मैंने कहा कि देखिए, अकबर की बात हो या मुगल डायनेस्टी की बात हो, 13th और 14th सेंचुरी के बाद, लेकिन उससे पहले क्या? अगर कोई भी नाम आपको याद है कि मुगल एम्पायर से पहले, मुगल डायनेस्टी से पहले कितने राजा थे दिल्ली सल्तनत पे, दिल्ली की जो हमारी मिट्टी है उस पे, मुझे एक या दो नाम ऑफ एयर आए। अगर आप भी कोई नाम बताना चाहते हैं, इवन इफ इट इज वन नेम, एक नाम अगर आपको याद है तो बताइएगा। 9722355555 सवाल है मेरा, बिफोर मुगल डायनेस्टी। जी हाँ, आफ्टर मुगल डायनेस्टी ऑफ कोर्स ब्रिटिशर्स एंड देन द होल हिस्ट्री एज वी नो, लेकिन फिर भी मुगल डायनेस्टी से पहले 8th सेंचुरी, 9th सेंचुरी, 10th सेंचुरी तक भी हिंदू राजवंश था। तो कौन थे वो राजा, बताएंगे मुझे आप ऑन 104.9 FM फनेशिया रेडियो। चलिए सुनवाती हूँ ये गीत आपको, और इस फिल्म का नाम मैं आपको अभी नहीं बताऊंगी, क्योंकि फिल्म का नाम जो है वही मेरा जवाब है। तो फिल्म का नाम मैं आपको नहीं बता रही हूँ। और सफ़ी, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। आज जी हाँ, हम कुछ इतिहास के पन्नों को पलटा रहे हैं और उन सारी बॉलीवुड फिल्मों की बात कर रहे हैं जो बनी थी इतिहास पे, ऐतिहासिक घटना पे, ऐतिहासिक पात्र पे। लूंगी एक और कॉल ऑन एयर। फनीश, रेडियो की आवाज़ प्लीज कम कर दीजिएगा।
1: हेलो, शायद आपका आंसर ये मौर्या उस समय का था शासन।
0: मौर्या वाज नॉट बिफोर मुगल, लेकिन एक और आपको नाम याद आ रहा है दिल्ली की, क्योंकि देखिए मौर्य एम्पायर, ओके आई अग्री, मौर्य एम्पायर वॉज बिफोर मुगल डायनेस्टी, लेकिन दे वर नॉट इन दिल्ली। वो जो, अगर इफ यू रिमेम्बर, जो भी हमारे बिहार के आजू बाजू मगध राज, राइट, मगध राज के उसके आसपास था।
1: मैंने पूरा क्वेश्चन नहीं सुना।
0: नहीं नहीं, सो मगध ऑफकोर्स, जो भी हमारे अशोका की बात हो या बिंदु के जो पापा थे या जो पूरी डायनेस्टी थी, इवन मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य की बात कर रहे हैं, राइट, दोज वर नॉट इन दिल्ली रीजन। दिल्ली रीजन में वो नहीं थे, उनके मगध के आसपास का जो है एरिया वो उनकी थी सल्तनत। तो मेरा सवाल यह है कि बिफोर मुगल डायनेस्टी केम इन दिल्ली, उससे पहले कुछ हिंदू राजा हुआ करते थे उस सल्तनत पे, उस मिट्टी पे, तो वो कौन थे हिंदू राजा जिन्होंने दिल्ली पे राज किया था, वो है मेरा सवाल।
1: एक तो मुझे पृथ्वीराज चौहान पता है, लेकिन वो अजमेर पाकिस्तान साइड।
0: एक्चुअली यू आर वेरी क्लोज, तो आप, चलिए मैं आपको बताती हूँ वो सही जवाब, लेकिन वी आर वेरी क्लोज। और सॉरी सर, व्हाट वाज दैट क्वेश्चन?
1: वन मोर किंग वाज देयर, सम्राट अशोक।
0: अशोक भी दिल्ली के आसपास नहीं थे सर, वो भी ऑफकोर्स वहीं, मैं आपको एग्जैक्टली बताऊं कि अशोक कहाँ थे। इफ यू रिमेम्बर, कलिंगा भी उन्होंने जीता था, सो दिस वाज नॉट नॉट नियर द नॉर्दर्न रीजन एट ऑल। अशोका भी बिल्कुल थे मुगल एम्पायर पहले। एंड फनीश, आर यू लाइव ऑन एयर? हेलो,
2: आई थिंक I read it a little bit, and I think before Mughal Empire, it was Prithviraj Chauhan.
0: Yes, it was Prithviraj Chauhan. And what's your name?
2: My name is Shlok.
0: And where did you read this information?
2: I know I read it somewhere. I watched a video before.
0: Okay, so, and if I may ask, Shlok, you are born here, right? You go to school or high school? Which grade you are in, Shlok?
2: I'm in seventh grade.
0: So history about India fascinates you. You want to know more about India, what happened, how many kings we had, all the empires, right?
2: Yeah.
0: That's such a fascinating. And have you been to India any time, Shlok?
2: Yes, I have.
0: Like, you have? Like have you seen? Have you seen any palaces or any fort or anything that?
2: Yeah, in Rajasthan.
0: Yes. That's India's legacy, right? That is beautiful India inside Rajasthan's legacy. Thank you so much, Shlok, for calling in. Thank you so much. दिल्ली सल्तनत की अगर बात की जाए, दिल्ली में ऑफकोर्स 500 ईयर्स मुगल डायनेस्टी रही थी। बाबर की बात कर ले, अकबर की बात कर ले, शाहजहाँ की बात कर ले, औरंगजेब, यू नो द होल हायरार्की ऑफ दोज फादर सन, फादर सन, फादर सन, लेकिन उनसे पहले कौन था?

0: सवाल है मेरा, मुगल डायनेस्टी से पहले, मुगल राजवंश से पहले किन हिंदू सम्राट ने हिंदी दिल्ली पर राज किया था? एंड योर लाइव ऑन एयर, बताइए क्या है आपका जवाब?
1: जी पहले तो हैप्पी इंडिपेंडेंस टू एवरीवन।
0: थैंक यू मैम, थैंक यू आपको भी, आपको भी ढेर सारी बधाई। 80th एक्चुअली, 80th, जी हाँ, 80 साल हो गए हमारी इंडिपेंडेंस को। तो बताइए क्या है आपका जवाब हिंदू राजा के लिए?
1: पृथ्वीराज चौहान।
0: जी बिल्कुल, आप क्या जानती है, कितने पन्ने आपको याद है आपके इतिहास के? मैथ में पता नहीं कि इतिहास में कितने मार्क्स आते थे आपको, आउट ऑफ 100 कितनी चीटिंग करती थी और कितने मार्क्स आते थे आपको? चलिए अच्छा चलिए, तो पृथ्वीराज के लिए आप क्या कहेगी हमें?
1: लेकिन हाँ, मतलब मुझे ऐसे स्टोरीज पास वाली सुनना पसंद था, तो बहुत ही वीर राजा थे उनकी, लाइक वीरता के किस्से अभी भी काफी फेमस है।
0: बिल्कुल बिल्कुल, पृथ्वीराज चौहान। और आपका नाम क्या है मैम?
1: मेरा नाम है अनुप्रीता सक्सेना।
0: अनुप्रीता, क्या सच ए ब्यूटीफुल नेम अनुप्रीता, वेरी नाइस।
1: थैंक यू
0: ऑल राइट अनुप्रीता जी, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग।

0: बिल्कुल पृथ्वीराज चौहान, और आपका नाम क्या है मैम?
1: मेरा नाम है अनुप्रीता सक्सेना।
0: अनुप्रीता, के सच ए ब्यूटीफुल नेम अनुप्रीता, वेरी नाइस।
1: थैंक यू।
0: ऑल राइट अनुप्रीता जी, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग इन।

day, Papa. सम्राट पृथ्वीराज चौहान, जी हाँ, वो दिल्ली के तख्त पर बैठने वाले अंतिम आखिरी हिंदू सम्राट थे। और जो लाल किला, लाल कोट का विस्तार था, पहले वो कहा जाता था किला राय पिथौरा। जी हाँ, जब सम्राट पृथ्वीराज चौहान बैठा करते थे दिल्ली की सल्तनत पे, तो वो जो लाल किला का एरिया है उनको वो किलोराज पिथौरा कहते थे। तो ये सारी बातें हमारे इतिहास में भी हमने पढ़ी है कि ऑफकोर्स मुगल डायनेस्टी की में भी ज़्यादा जानकारी हमें इसीलिए है कि देव एज आई सेड यू नो इट वॉज अ होल हायरार्की। बाबर के बाद कौन आए, अकबर, अकबर के बाद उनका बेटा शाहजहां, एंड देन औरंगजेब, एंड देन वी नो ऑल दैट हिस्ट्री बिकॉज वो हमने बार बार पढ़ी है। इट वॉज अ लॉन्गर टाइम, आई थिंक 500 ईयर्स। लेकिन दिल्ली की सल्तनत पे पृथ्वीराज चौहान के पहले भी एक और राजा हुआ करते थे जिनका नाम था अनंगपाल तोमर। वो भी इनके उनमें 11वीं शताब्दी 11th century में वो थे। और ऐसे ही सम्राट पृथ्वीराज चौहान के पहले भी एक और राजा भी हुआ करते थे जिसकी जानकारी मैं आपको दूंगी। लेकिन बहुत सारी कुछ बातें, बहुत सारे कॉल्स आपके जारी है, तो कुछ आपसे भी बातें कर ले। और उसके बाद मैं आपको कहूँगी कि पृथ्वीराज चौहान के साथ भी एक और राजा थे जो दिल्ली पे रहा करते थे। 104.9 FM फनीशा रेडियो पे आप है मेरी यानी कि नीलम के साथ, एवरी सैटरडे एंड संडे टिल 3 PM।

नाउ बिफोर यू गो ऑन द कमर्शियल ब्रेक, आई नो हमारे कई लिसनर्स ने मुझे अशोका के लिए कहा था एंड दे ऑल्सो मैंशन मौर्य एम्पायर. एज यू ऑल नो, अशोका एंड मौर्य एम्पायर ऑफकोर्स वे बिफोर मुगल डायनेस्टी हुआ किया था. आई थिंक ऑलमोस्ट ड्यूरिंग द बुद्धा, सो ऑलमोस्ट एटलीस्ट 2500 ईयर्स अगो. लेकिन वो मगध एम्पायर में थे और जो मगध, जो पाटलिपुत्र आज के बिहार में उनका राज हुआ करता था, उनकी सल्तनत हुआ करती थी, एंड दैट वॉज मगध. मगध वॉज ऑफकोर्स जो पाटलिपुत्र उनका जो एक कैपिटल हुआ करता था, दैट इज कंसिडर्ड एज रीजन ऑफ बिहार. लेकिन दिल्ली की अगर बात कर ले तो दैट वॉज पृथ्वीराज चौहान और उनके साथ एक और राजा थे. लेकिन उनकी कहानी कमर्शियल ब्रेक के बाद ऑन 104.9 FM.

0: is the Fun Asia Network. You are listening to Fun Asia Radio 104.9 FM. KZMP 104.9 FM HD1, Pilot Point, Texas. Simulcasting on KTCG 104.1 FM HD2, Sanger, Texas. Powered by Fun Asia Films and Fun Pizza Kitchen.
1: Official tax and finance partner, AG FinTax.
0: Official injury law partner, the law offices of Omar Khwaja.
1: In association with Passion Health Primary Care.
2: Fun Asia 104.9 FM. Turn up the volume.
3: Beautiful home, Ravi. $1 million. Wow.
4: Thank you. Well, Sana and me just got lucky as Hussein Panjwani helped us with the purchase of our first home. He practically walked us through the entire process. Ever since, with his guidance and support, I've become a pretty savvy real estate investor myself. Unka radio show sunata, and then consulted with him for all my financing needs. Now my real estate portfolio has grown into many single family homes, apartment complexes, agricultural land, or up, ye $1 million property bhi.
5: Hi, this is Hussein Panjwani. Dream Home will help you grow your real estate portfolio. Remember, we just don't promise, we deliver.
6: For details, visit dreamhomemortgage.com or call Dream Home Mortgage 972-245-5626 or email info@dreamhomemortgage.com.
7: Some restrictions apply. Equal housing lender, NMLS 334616, Division of Brazos National Bank.
8: Jaane wo kaun sa desh jahan tum chale gaye.
9: आपका डॉक्टर गया लॉन्ग वेकेशन पर, कोई बात नहीं. पैशन हेल्थ प्राइमरी केयर के मल्टीपल लोकेशंस, एक्सपीरियंस फिजिशियंस के साथ क्वालिटी केयर कभी नहीं रुकती. और सिर्फ ट्रीटमेंट ही नहीं, आज ही अपना एनुअल फिजिकल शेड्यूल कीजिए. रेगुलर स्क्रीनिंग्स के साथ डिप्रेशन और एंजाइटी स्क्रीनिंग, अल्कोहल हेल्थ स्क्रीनिंग, फाइब्रो स्कैन, विटामिन B12 टेस्टिंग और बहुत कुछ. पैशन हेल्थ प्राइमरी केयर, हेल्थ केयर दैट नेवर टेक्स अ वेकेशन.
10: कॉल 214-666-6259 टू बुक योर अपॉइंटमेंट्स टुडे.
11: I am so stressed. Credit card bills, unsecured debts. What are we going to do?
12: Kuch bhi nahi. Oora Debt Relief will do it for us.
11: Kya matlab?
12: Oora can help us save up to 50% on our total debt and the rest we pay in easy monthly installments.
11: But what if it doesn't work? We cannot afford to lose more money. Hum khud hi manage kar lenge.
12: Oora Debt Relief is one of the leading debt settlement companies. They don't charge a single penny until our debt is settled. And they have a 100% money back guarantee. Call to karo 888-888-9914.
11: Ab to karna hi padega, madam.
13: Don't let debt ruin your life. Visit Oora.org or call 888-888-9914 and take control of your financial future.
14: Shaadi byah ka koi mauka ho ya koi tyohar, खूबसूरत लिबास खुशियों को दुगना कर देता है.
15: हर खुशी में आपके साथ मान्यवर मोहे, ट्रेडिशनल सेलिब्रेशन वेयर फॉर मेन, वुमेन एंड चिल्ड्रन, क्राफ्टेड विद एक्सक्विजिट ब्लेंडेड फैब्रिक्स. मान्यवर मोहे, लोकेटेड ऑन रीजेंट बुलेवार्ड ऑफ 635 ईस्ट इन इरविंग. आर यू सीकिंग क्लैरिटी इन लाइफ, वंडरिंग व्हाट डेस्टिनी हैज इन स्टोर फॉर यू?
16: हर समस्या का हल है एस्ट्रोलॉजर ईश्वर के पास. 400 साल की फैमिली विजडम के साथ वर्ल्ड फेमस एस्ट्रोलॉजर अब डैलस में.
15: दैट मैजिक रिमूवल हो, लव एंड रिलेशनशिप इश्यूज हो, गेट trusted solutions with 100% privacy.
16: Thousands ki life badli unki divine guidance se. Now it's your turn.
15: Samasya ka pakka samadhan. Astrologer Ishwar.
16: Call now 945-527-0897 or visit astrologerishwar.com.
17: Same order again? Same pizza, same taste, same story? Time to upgrade your cravings, Dallas. Because Fun Pizza Kitchen just dropped a bold new Mexican-inspired menu. And trust us, this is not your regular slice. Fiesta Veggie, Pollo Loco, Sanor Cameron, Mucho Macho Pork. Different names, crazy flavors. Once you try these, your old order might just get ghosted. Fun Pizza Kitchen, new flavors, new obsession.
18: अजी सुनते हो?
19: अजी नहीं, एजी सुनते हैं.
20: The OG of tax planning, AG FinTax. सुनेंगे आपके financial concerns, देंगे smart solutions. Every Friday 9:45 AM, only on Funasia Radio.
21: इस रक्षाबंधन चौकटा कैसीनो एंड रिसोर्ट ड्यूरांड के साथ सेलिब्रेट कीजिए वो रिश्ता जिसमें नोकझोंक भी है, दोस्ती भी एंड ए लाइफ टाइम ऑफ अनफॉरगेटेबल मेमोरीज. अपने भाई या बहन के साथ जुड़ी सबसे यादगार मेमोरी हमें 1 मिनट वॉइस नोट में भेजिए एंड विन एक्साइटिंग डेली प्राइजेस इंक्लूडिंग डाइनिंग एक्सपीरियंसेस, एंटरटेनमेंट, रिजॉर्ट स्टेज एंड द ग्रैंड प्राइज एंड अनफॉरगेटेबल सिबलिंग रीयूनियन वीकेंड एट चौकटा कैसीनो एंड रिसोर्ट ड्यूरांड. अपनी स्टोरी व्हाट्सएप कीजिए 214-837-7147 पर या कॉन्टेस्ट डिटेल्स के लिए विजिट कीजिए फनेशिया रेडियो के सोशल मीडिया पेजेस.
15: चौक टॉक कैसीनो एंड रिसॉर्ट डुरांट, वेयर अनफॉरगेटेबल मेमोरीज आर मेड टुगेदर. मस्ट बी 21 और ओल्डर टू पार्टिसिपेट. टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई. प्लीज प्ले रिस्पॉन्सिबली.

एंड वेलकम बैक. दिस इज़ KZMB 104.9 FM फनेश्वर रेडियो पे आज संगीत के जरिए. जी हाँ, हम सेलिब्रेट कर रहे हैं 15 अगस्त को, आपके और हमारे वतन को याद कर रहे हैं यहाँ पे टिल 2 PM. और उसके बाद होगी आपकी और हमारी बातें कम्युनिटी राउंड अप में. आज मैं आपको जो भी गाने सुनवा रही हूँ, जो भी बातें हो रही है, वो हो रही है इतिहास के पन्नों को पलटाते हुए. सवाल भी आपको पूछ रही हूँ उसी के साथ, हमारे जितनी भी फिल्म्स बनी है इन बॉलीवुड, कुछ ऐतिहासिक घटना या उनके पात्र पे ये बातें चलती रहेगी. लेकिन कुछ खाने पीने की भी बातें हो जाए भाई. सेलिब्रेशन कोई भी हो, एक अगर आपको अच्छा नाम चाहिए सेलिब्रेट करने के लिए, दैट इज तंदूरी फ्लेम रेस्टोरेंट. जी हाँ, आयरलैंड में जा सकते हैं, वहां पर आपको इंडियन फेवरेट्स आपके सारे मिल जाएंगे विथ होम स्टाइल पंच, एंड दैट इज वंस अगेन इन गार्लैंड तंदूरी फ्लेम. एजी फिनटेक्स नंबर है उनका 4699429888, और यू कैन विजिट agfintechs.com, द फास्टेस्ट ग्रोइंग टेक्स फर्म इन द US. कोई जल्दी फास्ट क्यों ग्रो कर रहा है पता है आपको? व्हेन दे आर वेरी ट्रस्टेड एंड एफिशिएंट, एंड दैट इज एजी फिनटेक्स. स्वागत कर रही हूँ आपका. और आज जैसे कि मैंने कहा, बहुत सारे कॉल्स आपके ऑफेयर भी ले रही हूँ. मैं भी अपनी इतिहास की मेमोरी को थोड़ी सी झंझोट रही हूँ, आपकी भी झंझोट रही हूँ. एंड प्लीज़ लेट्स नॉट यूज़ AI. अगर आप हो सके तो कोशिश कीजिएगा ताकि हमें पता चले कि आपने क्लासेस में कितनी गुलटी मारी थी इतिहास में और कितने आपको ग्रेड्स मिले थे. नाउ जस्ट किडिंग, आई नो आप सभी बहुत ही माहिर है कोई भी विषय हो, कोई भी टॉपिक हो. तो बातें चल रही थी कि दिल्ली की सल्तनत की जब भी बात आती है, ऑफकोर्स हमें 500 ईयर्स तक जो भी हमारी डायनेस्टी थी वो ज़्यादा रह जाती है याद, लेकिन उनके पहले भी हिंदू राजा का राज हुआ करता था. एज आई सेड, पृथ्वीराज चौहान वॉज द आखिरी हिंदू सम्राट थे जो दिल्ली के तख्त पर बैठे थे. लेकिन उससे पहले अनंत पाल तोमर थे प्रथम, और उनके बाद अनंत पाल तोमर द्वितीय. ये जो थे वो थे इन एट सेंचुरी में इन दिल्ली. तो अनंगपाल के बाद पृथ्वीराज, और एक्चुअली ये भी कहा जाता है कि जो मुगल डायनेस्टी में थी, एक बहुत ही छोटा सा ऐसा वक्त आया था कि जब हेमचंद्र, राजा हेमू करके सम्राट हेमू भी आए थे इन जस्ट फॉर फ्यू ईयर्स. पानीपत के एक युद्ध में उन्होंने 1556 में मुगल सेना को हराया था, एंड ही केम ऑन द थ्रोन, एंड दैट वॉज मुगल साम्राज्य की मैं बात करी हूँ. उससे पहले जितने भी हिंदू राजा आए थे, अशोका की बहुत सारी बातें निकली है. जी हाँ, सम्राट अशोक की, तो उनके लिए भी मुझे लगा कि चलिए एक सवाल पूछ ही लूँगी. लेकिन उससे पहले सुनते ही ये पद्मावत से लिया हुआ गीत, उसके बाद मुझे लग रहा है कि सम्राट अशोक को भी याद कर लेंगे एक सवाल के साथ.

0: पद्मावत से लिया गया थे गीत। और जब मैं दिल्ली सल्तनत की बातें कर रही थी, मुगल एम्पायर की, और सम्राट पृथ्वीराज की भी हमने बातें की, जो आखिरी ही हिंदू सम्राट थे दिल्ली की सल्तनत पे, लेकिन उसके अलावा ऑफकोर्स पहले मौर्य एम्पायर की भी बात निकली थी। मौर्य एम्पायर अगर आप देखें तो चंद्रगुप्त मौर्य जो थे, मगध के पाटलिपुत्र में उन्होंने कितने सालों तक राज किया था। उनके बेटे का नाम बिंदुसार था और उनके पोते यानी कि चंद्रगुप्त मौर्य के बेटे पोते यानी कि अशोक, सम्राट अशोका जिसे हम कहते हैं, जिन्हें पूरा श्रेय जाता है। बौद्ध धर्म हमारा जो भी बुद्धिज्म है उसे इंडिया से बाहर की जितनी भी सीमा है, श्रीलंका, चाइना, जापान तक पहुंचाने का श्रेय अगर जाता है तो एक ही राजा है, एंड दैट इज अशोक। अशोका वो हमने कर दिया है, एक्चुअली इट इज अशोक। अशोका वो फिल्मों में या फिर ऐसे बातों में, बट एक्चुअली इतिहास के पन्नों में उनका नाम अशोक ही है। और ये सारी कहानी आप जानते होंगे कि कलिंग के युद्ध के बाद उनका हृदय परिवर्तन हो गया था, क्योंकि कहा जाता है कि उन्होंने सल्तनत के लिए, अपने राज के लिए भी बहुत सारी हत्याएं की थी, अपने भाई की और उन्होंने पूरे परिवार में, लेकिन उन्होंने इतने सारे युद्ध भी जीते थे। ही वॉज अ वेरी वेरी ब्रेव किंग। लेकिन कलिंग के बाद उन्हें लगा था कि ये सारी चीज़ों का क्या मतलब, जिंदगी में इतनी हिंसा करके मुझे आखिरकार क्या मिला, और उन्होंने बौद्ध धर्म ले लिया था। इतना ही नहीं, उन्होंने इंडिया से बाहर, जैसे कि मैंने कहा, बहुत सारे दूसरे नेबरिंग कंट्रीज़ में बौद्ध धर्म को उन्होंने प्रचार किया था। तो पूरा श्रेय जाता है सम्राट अशोक को। तो चलिए, ये तो मैंने आपको जानकारी ऑफकोर्स दी जो आपको बताई है, लेकिन आप मुझसे भी ज़्यादा माहिर है इतिहास में, मुझे पता है, तो मैं आपसे पूछना चाहूँगी एक सवाल जिसके लिए लूँगी कुछ कॉल्स ऑन एयर। हमारे जितने भी नेशनल सिंबल्स है, उस बहुत सारे नेशनल सिंबल्स है राइट, लेकिन हमारे तिरंगे में हम जिसे सलाम करते हैं अशोक चक्र, तो उनसे क्यों हम याद करते हैं, व्हाई डू वी कॉल उस चक्र को अशोक चक्र, हम क्यों कहते हैं, ये आप मुझे बताएंगे। कि जो हमारा तिरंगा है, राष्ट्रीय ध्वज है, उसके बीच में जो दिखता है अशोक चक्र, तो व्हाई डू वी कॉल दैट अशोक चक्र, क्यों हम सम्राट अशोक को याद करते हैं उस चक्र को देखकर, तो बताएंगे मुझे आप 972-235-5555। वंस अगेन माय क्वेश्चन इज अबाउट अशोक चक्र, हमारे तिरंगे में जो चक्र है उसे अशोक चक्र क्यों कहा जाता है। 104.9 FM फनीशा रेडियो पे मैं हूँ नीलम, आपके साथ लूंगी कुछ आपके कॉल्स अशोक चक्र के लिए, राइट हियर ऑन 104.9 FM एंड फनीशा यू आर लाइव ऑन एयर। हेलो,
1: हेलो,
0: यस, बताइए क्या है आपका जवाब।
1: आई थिंक तुम्हें को पता है क्योंकि मैंने स्कूल में सीखा था।
0: अरे वाह, आपके टीचर आर सो प्राउड ऑफ यू राइट नाउ।
1: होपफुली अशोक चक्र में करेंटली देयर आर 24 स्पोक्स, करेक्ट,
0: राइट, तो अशोक चक्र
1: एंड दोस रिप्रेजेंट द 24 आवर्स ऑफ द डे एंड इट वाज ओरिजिनली एडेड इन द इंडियन फ्लैग बिकॉज
0: आपका नाम क्या है मैम? थैंक यू सो मच। सवाल मैं पूछ रही हूँ कि अशोक चक्र को हम क्यों याद करते हैं, तिरंगा में हम जो देखते हैं अशोक चक्र है, एक चक्र है राइट, दैट्स अवर नेशनल सिम्बॉल, वाई डू वी कॉल दैट अशोक चक्र, बताएंगे मुझे आप 104.9 FM फनीशा रेडियो। आपके जितने भी टीचर्स हैं वो इतने प्राउड फील कर रहे होंगे आपको कि देखो जितनी भी इतिहास के हमारे लेसन से हमने बिल्कुल उसे जाया नहीं किया।

0: अशोक चक्र को अशोक चक्र हम क्यों कहते हैं, क्यों हम याद करते हैं? फनीश, आर यू लाइव ऑन एयर? बताइए क्या है आपका जवाब।
1: Hi ma'am, this is Hiran Parikh and thank you so much for doing excellent programs on the weekend first of all.
0: Oh, thank you so much sir, you are very kind. Bataiye, kya hai
1: aapka? The reason is, the flag, in Indian flag, we adopted the Ashok Chakra and it has got 24 arcs which represents the 24 hours. And this chakra, as far as I know, if I remember correctly from my school days, was taken up from the Sachi Stupa, or one of the Sarnath monuments built by Ashoka.
0: Yes, absolutely right sir. Thank you so much Hiranji, bahut bahut shukriya. And Fanisha, are you live on air?
2: Hi, my name is Chandandeep.
0: Yes sir, please bataiye kya hai aapka jawab.
2: So basically, I'm a veteran, retired veteran from the Navy.
0: Oh, you are, sir. Very, very congratulations on that. And we are so proud to have you on air, sir. Thank you for calling in. Bataiye.
2: Okay, so to my knowledge, what we learned from Navy, so 24 spokes, basically, that represents 24 hours. Basically, जो चूक्त कर्म इसलिए बोलते हैं क्योंकि वो अशोका का जो फॉल उसका जो उसको रिप्रेजेंट करता है, उसको कैसे उसका धर्म आ जाए, यूजुअल वैराइटीज एंड द जस्टिस, और जो उसमें व्हील्स है वो बोलते हैं कि कंट्री को लाइक कीप मूविंग फॉरवर्ड,
0: गति में ही प्रगति है, वो आपने पढ़ा होगा सर कि जहां जहां गति है वहां वहां प्रगति है, राइट?
2: और बेसिक पीस एंड ट्रूथ जो अशोका ने बोला था कि उनकी शांति और सच्चाई, वो ये रिप्रेजेंट करता है. तो एंड आई थिंक इट वॉज अडॉप्टेड एक्सेप्टेड इन द somewhere in the July 1947 before the independence.
0: Before independence. That I don't remember. Very good. Thank you so much, sir, for calling in. अशोक चक्र का क्या है मायना? बताते हैं कुछ बातें इस गाने के बाद.

अशोक जी हाँ, अशोका से लिया गया था ये गीत आपने सुना, और आज मैं वही फिल्मों के गाने बजा रही हूँ जो आपके लिए बॉलीवुड में कहीं ना कहीं बने। एज आई सेड, यू नो, वेदर दे रियली डीड अ जस्टिस और नॉट, दैट्स अ वेरी डिफरेंट टॉपिक, उसके लिए एक और सैटरडे करेंगे कि ये सारी कहानियाँ में कितनी सच्चाई थी, कितना मसाला भरा गया था, कितनी कमर्शियल, क्योंकि जब देखिए जब भी बॉलीवुड की फिल्म बनती है, ऑफकोर्स दे विल नॉट मेक इट एज इट इज़, क्योंकि कहीं ना कहीं उन्हें भी फिल्म चलानी होती है, फिल्मों में गाने डालने पड़ते हैं, राजा को बेचारे अशोका को नचाना भी पड़ता है कहीं ना कहीं। तो ये सारी बातें, दैट्स अनदर टॉपिक के इतिहास पर अगर फिल्म बनती है तो कितनी सच्चाई दिखाई जाती है। खैर, आज हमारा वो टॉपिक नहीं है। आज टॉपिक है कि मैं आपसे वहीं इतिहास से जुड़े हुए कुछ सवाल कर रही हूँ। हम सभी जानते हैं कि अशोक को बहुत ही एक वीर राजा के रूप में हम याद करते हैं, सम्राट अशोक को, लेकिन उन्होंने ये जो उनकी जो धर्म के लिए, उनकी जो शरणागति थी बुद्ध के लिए, धर्म के लिए, दैट हैपेंड आफ्टर कलिंग। कहा जाता है कि उससे पहले ही वॉज अ ब्रूटल ब्रूटल किंग, और उन्होंने अपने साम्राज्य के लिए इतने सारे युद्ध लड़े थे, लेकिन कलिंग के बाद, उसके बाद उन्हें लगा कि ये सारी बातें होने के बाद क्या, एंड ऑफ द डे वो गीत है ना, ये दुनिया अगर मिल भी जाए तो क्या। आई थिंक ही डिड हैव दैट मोमेंट कि अगर सब कुछ मुझे मिल गया है, मैं सम्राट हूँ, लेकिन उसके बाद क्या, वॉट इज नेक्स्ट। और यही एक पल था कि उन्होंने बुद्ध धर्म अपना लिया था। उसके बाद उन्होंने ये जो अशोक चक्र हम कहते हैं, वो एक धर्म और न्याय का प्रतीक है, जिसमें धर्म चक्र भी कहा जाता है, जहाँ शांति का प्रतीक है, एंड जहाँ जहाँ भी शांति की बात होती है, बिल्कुल भारत देश वहीं करता है। तो जब हमारे तिरंगे की बात हुई थी, हमारे नेशनल सिंबल की, राष्ट्रीय प्रतीक की बात हुई थी, तब सारनाथ स्तूप से अशोक चक्र लिया गया था, क्योंकि हम भी धर्म और शांति में मानते हैं, धर्म और न्याय में, और निरंतर प्रगति, मोशन, जहाँ प्रगति, जहाँ गति है वहाँ प्रगति है, बस चलते रहना ही हमारी किस्मत होनी चाहिए। एंड दैट वॉज अ वेरी रीज़न कि हम अशोक चक्र इसीलिए कहते, क्योंकि ये जो चक्र है, जो सिंबल है, वो सारनाथ स्तूप से लिया गया है। तो यह है हमारे इतिहास की बातें, यह है हमारी लेगेसी की बातें, एंड यू नो इट मेड मी सो गुड। जो पिछले, आई थिंक बिफोर द कमर्शियल ब्रेक, वन ऑफ द किड्स कॉल्ड, एंड ही इज़ इन अमेरिका, आई थिंक ही वाज बोर्न इन अमेरिका, 7th-8th grade का बच्चा, और उन्होंने जिस तरह से मुझे सम्राट पृथ्वीराज के लिए कहा है, आई वॉज सो इम्प्रेस्ड। सिमिलरली आई थिंक यू नो ऑल, जहाँ जहाँ भी हम इंडिया जाते हैं, पहली बात हमारे जहन में होती है ऑफकोर्स फैमिली को मिलना, फैमिली के साथ शॉपिंग करना, वो बहुत लंबी लिस्ट होती है शॉपिंग की, खाने पीने की लंबी लिस्ट होती है, स्पेशली आई एम फ्रॉम मुंबई, तो भाई सोच सकते हैं कि मुंबई में तो कितनी सारी जगह है। खैर, लेकिन उसके साथ हमारी टू डू लिस्ट में ये भी बात होती है कि बच्चों को कुछ दिखाना है हमारे वतन से, समथिंग दैट दे एडमायर, समथिंग दैट दे हैव नॉट सीन हियर, क्योंकि यहाँ पे हम जानते हैं कि कितने भी साल हो जाए, हमारे यहाँ पर जो कल्चर है, जो फ्लेवर है, जो इतिहास है, वो कहीं ना कहीं यहाँ पे उन्हें नहीं मिलेगा। तो जब भी हमारे बच्चे ये जो सारे पैलेसेस होते हैं, फोर्ट होते हैं, एंड यू नो इट मेक्स अस प्राउड, राइट, कि अरे वाह, देखिए हमारे कंट्री में, हमारे वतन में ये इतिहास था। खैर, बातें बहुत है करने के लिए, वक्त कम है तो बातें होती रहेंगी। सुनते एक और गीत बाजीराव मस्तानी से, और उसके बाद मुझे लग रहा है कि कमर्शियल ब्रेक के बाद एक और सवाल हो जाए, हमारे इतिहास हमारे वतन से।

0: At Tanishq, no two diamonds are exactly alike. They're beautifully rare, just like the woman who wears them. That's why this is the perfect time to find yours at the Tanishq Festival of Diamonds, with up to 25% off on diamond value and making charges, plus zero deduction on your old gold exchange above 18 carat. Visit Tanishq Dallas at 2809 Preston Road, number 1200, Frisco, 75034 today. Tanishq, a Tata product. Terms and conditions apply.
1: जी सुनते हो, सोच रही थी बेटे की शादी इंडिया में करे।
2: इंडिया में तो यहाँ जो फ्रेंड्स और रिलेटिव्स हैं, वो कैसे अटेंड करेंगे?
1: पर यहाँ सारी अरेंजमेंट्स मैनेज करना भी तो कितना मुश्किल होगा।
2: हेलो, तुम डैलस में हो, यहाँ कोई भी इवेंट करना सुपर इजी है, स्पेशली जब वैनेसा इवेंट्स का साथ हो।
1: सच में सब संभाल लेंगे?
2: अरे सब कुछ, वेडिंग हो, हाउस वार्मिंग, ग्रेजुएशन, यू नेम इट, दे डिलीवर। वेन्यू, फोटोग्राफी, हॉस्पिटैलिटी, सब कुछ एक ही जगह। सिग्नेचर इवेंट्स का डेकोर और खाना बाय द रेनॉल्ड बसेरा ग्रैंड ओनली।
3: कॉल हरी बसेरा ऑन 469-442-8770. वेनेसा इवेंट्स, योर सेलिब्रेशन पार्टनर।
4: Are you looking for a smarter approach to reducing taxes while building and preserving wealth? My Time Equity, a registered investment advisory firm led by CPA Sudhir Pai, offers active portfolio management, structured notes, tax and financial planning, real estate strategies, AI and late-stage pre-IPO opportunities, and other alternative investments. Learn how a personalized strategy can help you pursue your financial goals. Visit mytimeequity.com or call 972-330-2771.
3: My Time Equity is a fee-based registered investment advisory firm. This advertisement is for informational purposes only and does not constitute investment, legal or tax advice. Investing involves risk, including the possible loss of principal.
5: Coughing or sneezing at home? Your air ducts may be to blame. And clogged dry vents can even cause fires. Duct Time removes dust, pollen, allergens and lint, giving you cleaner air, better health, energy savings and peace of mind. Serving the DFW area and 15 plus years of experience. With CSIA certified technicians and free estimates. Fun Asia listeners get $100 off duct cleaning plus free dryer vent cleaning and sanitizer with service. Call Jeetu Patel at 972-877-2500 or visit callducttime.com. Breathe easy, live safe with Duct Time.
2: अगर आपकी नाइट भी तंदूरी डिलाइट्स के बिना अधूरी लगती है, तो ये खबर आपके लिए। दिस समर एंजॉय 20% ऑफ ऑन ऑल एपेटाइजर्स, तंदूरी आइटम्स एंड मॉकटेल्स ओनली एट तंदूरी फ्लेम। चिकन तंदूरी, मलाई चिकन टिक्का, पनीर टिक्का, मोमो या सोया चाप, अब हर बाइट के साथ मिलेगी एक्स्ट्रा सेविंग्स। डाइन इन ओनली एट तंदूरी फ्लेम गार्डन, वेयर एवरी बाइट इज अ सेलिब्रेशन।
3: What would happen to your business if a key owner, partner, or top employee passed away unexpectedly? Would revenue, credit, client relationships, or daily operations be affected? KeyPerson Life Insurance can help provide funds to support the business during a difficult transition. Protect the people who help keep your business running. Visit shopcompareinsure.com to get started. Call 469-789-3603. That's shopcompareinsure.com. Your 360 insurance solution. Product subject to carrier approval, policy terms and state availability. Guarantees depend on the issuing carrier. Benefits and tax treatment depend on individual circumstances. Consult qualified legal and tax professionals. Not legal, tax or investment advice.
6: This 15th of August, don't just celebrate Independence Day, celebrate it the Indian way. Join India Association of North Texas's Anand Bazaar 2026 at the Comerica Center in Frisco. Saturday from 2 p.m. onwards, experience a grand Independence Day parade, authentic Indian food, colorful cultural performances, live music, shopping, family fun, and an unforgettable celebration of India's independence. And the best part? It's completely indoors and free for everyone.
3: For sponsorship booth from $3,000 to $50,000 and vendor stalls at $750. Call 214-529-3257.
6: Celebrate India's 80th Independence Day with the entire community. IANT Anand Bazaar 2026 on Saturday the 15th of August, 2 p.m. onwards at the Comerica Center in Frisco.
7: एंड वेलकम बैक, दिस इज़ KZMP 104.9 FM फनी शरीर पे, आप है मेरी यानी क्रीलम के साथ, और आपका और हमारा साथ हर शनिवार की दोपहर एंड ऑल्सो ऑन संडे आफ्टरनून टिल 2 PM। वेनेसा इवेंट्स, जी हाँ, वेडिंग की बात हो, ग्रेजुएशन, हाउस वार्मिंग या कोई भी खास त्यौहार हो या कोई मौके हो जहाँ पर आप सेलिब्रेट करना चाहते हैं, वेन्यू से लेके डेकोर से लेके कैटरिंग एक ही नाम है, दैट इज वेनेसा इवेंट। बिल्कुल, आप जब आपके बहुत ही खास त्यौहार को मनाने, आपके खास माइलस्टोन को मनाने के लिए, खास किसी मौके को मनाने में मशरूफ है, तब आपकी मदद करेंगे वेनेसा इवेंट्स। एंड यू कैन कॉल हरी बसेरा 4694428770, दैट इज 4694428770। और जैसे हम त्यौहार की बात करते हैं, बिल्कुल आज है 80th इंडिपेंडेंस डे, आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। एंड यस्टरडे पाकिस्तान सेलिब्रेटेड इट्स इंडिपेंडेंस डे, तो हमारे जितने भी लिसनर्स आर फ्रॉम पाकिस्तान, उनको भी ढेर सारी बधाइयां। रक्षाबंधन की अगर बात करें तो रक्षाबंधन में फनेशा रेडियो के साथ चोकटो कैसीनो एंड रिजॉर्ट ने मिलकर एक बहुत ही खास आपके लिए बात बनाई है कि इफ यू कैन सेंड देम अ 1 मिनट वॉइस नोट ऑन व्हाट्सएप 2148377147, आपके भाई या बहन की कोई खास मेमोरी, यू कुड विन एक्साइटिंग डेली प्राइजेस इंक्लूडिंग डाइनिंग एक्सपीरियंसेस, एंटरटेनमेंट एंड रिजॉर्ट डेज। वंस अगेन, दैट इज चोकटो कैसीनो एंड रिजॉर्ट ड्यूरेंट। एंड आपको कहाँ भेजना है ये नोट, 2148377147। रेडियो अभी अभी ट्यून इन किया है, कोई बात नहीं, हम तो 12 बजे से यहाँ बैठे हैं। जब भी आपको हमारी याद आ जाए, रेडियो की याद आ जाए, आप कहीं पर जा रहे हैं, कहीं से आ रहे हैं, आपकी राहों की हूँ मैं रह गुजर एवरी वीकेंड। सो आज जो हमारा विषय है, सवाल पूछ रही हूँ इतिहास के पन्नों से, जो भी गाने सुनवा रही हूँ, हमारी बॉलीवुड में जो भी फिल्म्स बनी थी इतिहास पे, उनके गाने हैं, और साथ में सवाल भी हम कुछ इतिहास से ही पूछ रहे हैं। जैसे कि हमने बहुत सारे बातें की पृथ्वीराज चौहान की, हमने बातें की सम्राट अशोक की, वी ऑल्सो टॉक्ड अबाउट भगत सिंह, ये सारे सवाल अब तक हमने आपको पूछे। आखिरी सवाल मैं पूछना चाहती हूँ, जो थोड़ी सी ट्रिकी हो सकती है बात, क्योंकि इस तरह से मैं पूछूंगी कि थोड़ा ट्रिकी हो सकता है सवाल। चलिए कोई बात नहीं, आपके लिए क्या ट्रिकी क्या कठिन, सब कुछ इजी ही होता है। सुन लेते ये गीत और उसके बाद मैं आपको पूछूंगी आखिरी सवाल इस सेगमेंट का ऑन 104.9 FM। रानी लक्ष्मीबाई जी, हाँ, मणिकर्णिका, जो कंगना रनौत ने इस फिल्म में काम किया था, उस फिल्म से सुनेंगे ये गीत।

0: मणिकर्णिका रानी जैसी जी हैं, जैसी कि रानी लक्ष्मीबाई मूवी से सुना आपने ये गीत। और चलिए अब आखिरी सवाल इस सेगमेंट का, एंड आई सेड इट विल बी लिटिल ट्रिकी, लेकिन आप लोगों के लिए ट्रिकी भी कुछ होता नहीं है, आप लोग सब कुछ जानते होते। सो सवाल है कि मैं अगला गीत जो आपको सुनवाने जा रही हूँ, फिल्म का नाम है मोहनजोदड़ो। जी हाँ, और आज जैसे जैसे आप जानते हैं कि सारी फिल्म सारे गाने बॉलीवुड के मैं इस फिल्मों से लाई हूँ जो इतिहास पे बने थे, उससे मुझे जहन में ख्याल आया कि आप मुझे ये बताइए कि मोहनजोदड़ो जो ये सभ्यता है, जो हमारी सिविलाइजेशन है, उसका क्या नाता है हमारी जो नाम है इंडिया से या हिंदू से। ऑफकोर्स आप हिंदू जानते हैं, हिंदू नाम है जो हमारे रिलीजन का, और इंडिया भी नाम है, हिंदुस्तान नाम है, तो इन सारे नामों का इस सभ्यता जो है जिसे हम मोहनजोदड़ो कहते हैं उससे क्या नाता है। एज आई सेड इट्स लिटिल ट्रिकी, सोचिए ज़रा कि मोहनजोदड़ो जो है उसका और हमारे नाम जो इंडिया या हिंदू की बात कर ले, उस हिंदुस्तान भी उसी से आया है, तो क्या हो सकता है रिश्ता, व्हाट इज़ द कनेक्शन बिटवीन दिस टू, मोहनजोदड़ो की जो सिविलाइजेशन है इंडस वैली सिविलाइजेशन उसके बीच में और हमारे नाम में इंडिया में या हिंदू में क्या है नाता। 104.9 FM फनेशा रेडियो पे बताएंगे मुझे आप ये, और मैं आपको सुनवाती हूँ इसी फिल्म से गीत मोहनजोदड़ो से लिया हुआ यहाँ पे, और आप मुझे बताएंगे कि मोहनजोदड़ो में इंडिया नाम और हिंदू नाम कैसे आ गया। चलिए एक कॉल ले लेती हूँ। फनेशा, यू आर लाइव ऑन एयर, बताइए क्या है आपका जवाब।
1: हाय
0: हाय,
1: इंडस वैली सिविलाइजेशन से इंडिया नाम आया।
0: अरे वाह, और
1: बस मुझे तो फिलहाल यही मालूम है।
0: इतने इतना सुनकर आपकी हिस्ट्री की टीचर इतनी खुश हुई होगी इंडिया में बैठ के कि मैं जब पढ़ा रही थी ये लड़की पूरे ध्यान से सुन रही थी, कहीं पे भी और ध्यान नहीं था, राइट। आपका नाम क्या है मैम?
1: थैंक यू
0: सो मच। एंड फनीशा, यू आर लाइव ऑन एयर, रेडियो की आवाज प्लीज कम कर दीजिएगा।
2: इंडिया का रिलेशन तो इंडस वैली से।
0: जी सर, जी सर, तो उससे नाम आया इंडिया, बट यू नो देयर इज आल्सो वन वेरी फनी फैक्ट जो मैं आपको बताऊंगी इस गाने के बाद। तो 104.9 FM फनेशा रेडियो पे सुन रहे हैं आप मुझे यानी कि नीलम को, और मैं सवाल पूछ रही हूँ इंडिया के नाम से। फनेशा बताइए क्या है आपका जवाब। हेलो, एंड आई थिंक आई लॉस्ट दैट लाइन। जी बताइए, यू आर लाइव ऑन एयर सर।
3: या आई एम चंदनी पेरगे।
0: Yes, you are on air, sir.
3: So Mohenjo-daro jo hai, basically ye Sindhu Ghati ka jo which we call the Indus Valley Civilization.
0: Ji
3: ji. Uska main city tha, as we saw in the Hrithik Roshan movie.
0: Ji ji.
3: To wahan pe jo Sindhu nadi thi. So when the Farsi log jo Parsis kam aaye, unko Sindhu bola nahi aata tha, to they called it Hindu.
0: Hindu. Like. Ji ji ji ji.
3: So after that, you know, the when the Greek came, they translated to Indus. So Indus. So आगे जाके जा तो हिंदू से हिंदुस्तान बन गया और इंडस से इंडिया बन गया।
0: इंडिया से इंडिया, very good sir, thank you so much. And Phanisha, you're live on air. Hello.
4: This message has.
0: And Phanisha, last caller, बताइए क्या है आपका जवाब।
5: नीलम जी, this is Preeti.
0: जी प्रीति जी बताइए। Yes, you're on air. बताइए प्रीति जी।
5: Sorry.
0: That's fine, you can call me off air. बातें हो रही है इंडस वैली की। जी हाँ, मोहनजोदड़ो ये फिल्म तो आपने देखी होगी, फिल्म चली ना चली दैट्स नॉट द पॉइंट हियर, फिल्म में कैसी रही वो पॉइंट नहीं है, बस इसी फिल्म से मुझे नाम याद आ गया कि क्यों हम इंडिया या हिंदू बन गए। ये सारी बातें इस गाने के बाद। 9722355555 on 104.9 FM फनेशिया रेडियो।

5000 साल पुरानी हमारी संस्कृति जी, हमारी सभ्यता जी, हाँ, सिंधु नदी के आसपास फूली थी ये सभ्यता, ये इंडस वैली जिसे हम कहते हैं। वेल, सिंधु से हो गया हिंदू, जिसके अलग अलग जितनी भी थियरीज है, देर आर डिफरेंट डिफरेंट थियरीज के सिंधु से हिंदू कैसे हुआ, इंक्लूडिंग पर्शियंस जब आए थे, पर्शियंस ने सिंधु से हिंदू कर दिया था, या नॉट ओनली दैट, ग्रीक जब आए थे, अलेक्जेंडर इंडिया में आए थे तब भी उन्होंने इंडिया कर दिया था। तो ऐसे बहुत सारी अलग अलग थियरी है, लेकिन जैसे मैंने कहा, ये सारे नाम आए थे सबसे पहले इस सिंधु नदी से, सिंधु नदी के आसपास, यू नो, एंड एनीथिंग दैट यू सी रिवर, जहाँ जहाँ भी गांव बसे हैं, वो सारे पहले, हज़ारों सालों के पहले की मैं बात कर रही हूँ, हमेशा नदी के आसपास, वेन एवर देर इज़ अ वाटर, वाटर सोर्स होती है, कोई भी वाटर बॉडी, उसी के आसपास जो भी सभ्यता होती है वो फूलती है, फलती है। सिमिलरली सिंधु नदी वॉज द वेरी फर्स्ट रिवर जिसके आसपास ये सिविलाइजेशन हुआ था, एंड दैट्स वाई सिंधु से बन गया हिंदू, एंड इंडस वैली से बन गई इंडिया।

बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। अभी भी आपके ढेर सारे कॉल्स, अभी भी आपकी ढेर सारी बातें ऑफ़ एयर आ रही है, कर रही हूँ। मौका कोई भी हो, विषय कोई भी हो, कोशिश होती है आपके साथ कुछ ऐसी बातें हो जिससे आपको कुछ जानकारी मिले, मुझे कुछ जानकारी मिले। बॉलीवुड है ही हमेशा, एंटरटेनमेंट भी है, लेकिन उसके अलावा हमारी बातें होती है बियॉन्ड बॉलीवुड, एवरी वीकेंड यहाँ पे ऑन 104.9 FM।

0: सभ्यता की बातें, संस्कृति की बातें, इतिहास की बातें, वतन की बातें मैं नीलम कर रही हूँ आपके साथ ऑन 104.9 एफएम फनेशिया रेडियो। एंड एज यू ऑल नो 2 to 3 PM वी हैव अ कम्युनिटी राउंड अप जिसमें बहुत सारी बातें होने वाली है, हमारे कम्युनिटी में होने वाले इवेंट्स की, एक्टिविटीज़ की। हमारे साथ जुड़ते हैं धार्मिक या सामाजिक संस्था के प्रतिनिधि। फिलहाल हमारे साथ जुड़े हुए, एक्चुअली आई डू ट्राई टू टेक ऑफकोर्स ऑल द कॉल्स बिटवीन 2 and 3, बट समटाइम एज एन एक्सेप्शन आई एम टेकिंग दिस कॉल टूडे बिफोर 2 PM। सो बातें होगी कुछ क्विकली अबाउट अखिल विश्व गायत्री परिवार की। यस दीप्ति जी, यू आर लाइव ऑन एयर एंड दिस इज फनेशिया रेडियो।
1: नमस्ते नीलम जी, थैंक यू सो मच।
0: जी जी दीप्ति जी, थैंक यू फॉर कॉलिंग इन। बताइए आप क्या कहना चाहेंगी AWGP एंड BSS के लिए प्लीज।
1: जी जी बिल्कुल, दिस इज दीप्ति अग्रवाल। जैसा कि आपने, थैंक यू सो मच फॉर इंट्रोडक्शन। गायत्री परिवार, जैसा कि हम सभी जानते हैं, गायत्री परिवार इज अ नॉन प्रॉफिट वॉलंटियर रन सोशल ऑर्गेनाइजेशन। हमारा मिशन है टू हैव अ मॉडर्न अडॉप्शन ऑफ अवर एज ओल्ड विजडम ऑफ आवर वैदिक ऋषिज एंड देयर फिलॉसफी। यहाँ पे हमारे वी हैव वेरियस इनिशिएटिव्स लाइक स्वाध्याय, योगा क्लासेस, यज्ञ, मेडिटेशन। उन्हीं में से एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव है बाल संस्कार शाला का। बाल संस्कार शाला बेसिकली 5 से 15 साल के बच्चों के लिए वैल्यू बेस्ड एजुकेशन इनिशिएटिव है, जहाँ हम कोशिश करते हैं कि टू टीच

0: इनिशिएटिव है बाल संस्कार शाला का।
1: जी
0: बाल संस्कार शाला बेसिकली 5 से 15 साल के बच्चों के लिए वैल्यू बेस्ड एजुकेशन इनिशिएटिव है, जहां हम कोशिश करते हैं कि टू टीच आवर किड्स अबाउट साइंस बिहाइंड आवर एंशिएंट प्रैक्टिसेस एंड ट्रेडिशंस। वी आर ट्राइंग टू कनेक्ट अवर किड्स इन USA विद अवर रूट्स एंड अवर कल्चर बैक इन इंडिया।
1: बहुत बहुत खूब। और ये कब से स्टार्ट हो रही है ये आपकी जो स्कूल है BSS की?
0: जी नीलम जी, अब BSS विल बी स्टार्टिंग फ्रॉम August 31st दिस ईयर एंड वी हैव वेरियस क्लासेस इन BSS लाइक योगा क्लासेस, कल्चर क्लासेस, हिंदी, एंड किड्स आर एबल टू टेक अप टू 4 कॉलेज क्रेडिट्स विद द हेल्प ऑफ दिस प्रोग्राम।
1: जी जी, ऑलराइट, वेरी गुड। और कोई कॉन्टेक्ट इन्फॉर्मेशन आप देना चाहेंगी तो?
0: जी बिल्कुल बिल्कुल। और मैं ये भी बताना चाहूंगी, विद द हेल्प ऑफ दिस BSS वी ट्राई टू गिव देम अ प्लेटफॉर्म टू शोकेस देयर टैलेंट इन वेरियस इवेंट्स लाइक दिवाली, रिपब्लिक डे, वी सेलिब्रेट ऑल दीज थिंग्स ऑन अ लार्ज स्केल। हमारी वेबसाइट है awgpdfw.org एंड देर आर कपल ऑफ फोन नंबर लिस्टेड देयर। वन ऑफ देम इज 4695866568। So if you have any kids between 5 to 15 years, please take advantage of this wonderful initiative and register your kids.
1: Very nice, very nice. Once again, हम बातें कर रहे हैं दीप्ति जी से, जो है अखिल विश्व गायत्री परिवार की तरफ से, जो हमें कुछ जानकारी दे रही है उनके BSS स्कूल के लिए। थैंक यू सो मच दीप्ति जी आपके फॉर कमिंग ऑन एयर, आपकी ये जानकारी के लिए। एंड बिल्कुल आपको ढेर सारी शुभकामनाएं एंड गुड लक फॉर द अपकमिंग ईयर फॉर द BSS।
0: Thank you so much, Neelam ji, for having us here.
1: Absolutely, ma'am. Thank you so much. भारत की बातें, वतन की बातें, इतिहास की बातें, जी हाँ, कश्मीर से कन्याकुमारी हो या गुजरात से अरुणाचल तक, कितनी सारी भाषाएं हैं ना हमारी, कितनी सारी संस्कृति, कितनी सारी अलग अलग परंपराएं, खाने की बात हो, रहने की बात हो, रहन सहन की बात हो, सब कुछ अलग। लेकिन बहुत सारों साल से, ये भी हो सकता है कि आप यहाँ पर है या वतन से बहुत दूर है हमारी तरह, फॉर डेकेड्स यू हैव नॉट बीन, यू आर नॉट सिटीजन ऑफ इंडिया एनीमोर, लेकिन जब भी तिरंगा आसमान में लहराता है, आज भी इतने सालों के बाद भी दिल से सारी एक ही आवाज़ निकलती है, दैट इज भारत माता की जय। और आप सभी को एक बार फिर से इस भारत माता की जय के नारे के साथ ढेर सारी शुभकामनाएं फॉर इंडियाज इंडिपेंडेंस डे।

0: The Fun Asia Network. You are listening to Fun Asia Radio 104.9 FM. KZMP 104.9 FM HD1, Pilot Point, Texas. Simulcasting on KTCG 104.1 FM HD2, Sanger, Texas. Powered by Fun Asia Films and Fun Pizza Kitchen.
1: Official tax and finance partner, AG FinTax.
0: Official injury law partner, the law offices of Omar Khwaja.
1: In association with Passion Health Primary Care.
2: श्रावण हमें जोड़ता है भगवान से, रक्षाबंधन हमें जोड़ता है अपनों से, और कुछ रिश्ते एक डोर से शुरू होते हैं और एक अनमोल निशानी के साथ हमेशा के लिए अमर हो जाते हैं। हर रिश्ता अपनी एक कहानी लिखता है और पीएमजे ज्वेल्स उस कहानी को देता है सोने की चमक, हीरो की रोशनी और क्राफ्टमैनशिप जो पीढ़ियों तक साथ रहे।
3: पीएमजे ज्वेल्स नाउ ओपन ऑन 13215 मेन स्ट्रीट, फ्रिस्को।
4: बेटा 95% आए?
5: हाँ मम्मी।
4: गुड, अब चलिए पापा, आप अपना रिपोर्ट कार्ड दिखाइए।
6: मेरा?
4: हाँ, प्रॉफिट मार्जिन, कैश फ्लो, टैक्स प्लानिंग, बिजनेस गोल्स, सारे अकाउंट्स अपडेटेड।
6: वो
7: स्कूल का रिपोर्ट कार्ड साल में एक बार आता है, बट बिजनेस का रिपोर्ट कार्ड हर महीने। एजी फिनटैक्स हेल्प्स यू अंडरस्टैंड प्रॉफिटेबिलिटी, कैश फ्लो, टैक्स प्लानिंग, बिजनेस ग्रोथ थ्रू बुककीपिंग एंड सीएफओ सर्विसेज। विजिट agfintax.com, कॉल 972-618-8555। एजी फिनटैक्स लेड बाय फोर्ब्स फाइनेंस काउंसिल मेंबर अनिल ग्रांधी। सर्विसेज आर सब्जेक्ट टू इंडिविजुअल एलिजिबिलिटी एंड एप्लीकेबल लॉस, टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई।
8: हेलो, वीकेंड लंच एमरजेंसी हेल्पलाइन, हाउ मे आई हेल्प यू?
9: हेलो, मेरे रिलेटिव्स आ रहे हैं, एवरीवनस आस्किंग लंच में क्या है?
8: फिकर नॉट, वी हैव द perfect solution.
3: The Flavor Lounge in Frisco brings you its all new weekend lunch buffet, from flavorful Indian favorites to live counters and chef special, 25 plus dishes, welcome drink, chaat, appetizers, main course and dessert. Saturday to Sunday 12 pm to 3 pm. This weekend let the Flavor Lounge do the cooking.
10: 2026 में आपकी राशि के लिए धन और सफलता के योग हैं।
11: अरे सुन, ये एस्ट्रोलॉजर बोल रहा है 2026 तेरी राशि वालों के लिए बहुत लकी है।
12: माँ, रील्स पे सब लकी ही होते हैं, जेनेरिक प्रेडिक्शंस सबको थोड़ी हेल्प करती हैं। तो फिर अगर रियल क्लैरिटी चाहिए तो पर्सनलाइज्ड गाइडेंस लो।
13: गाइडेंस की बात हो तो एक ही नाम है, पंडित राम तुलसी, जहाँ एस्ट्रोलॉजी सिर्फ राशियों तक लिमिटेड नहीं बल्कि आपकी पर्सनल जर्नी के हिसाब से गाइड करता है। करियर हो, स्टडीज, शादी या फ्यूचर प्लानिंग, हर डिसीजन अब होगा क्लियर और कॉन्फिडेंट।
12: कॉल पंडित राम तुलसी एट 9797972654 और विजिट astroramji.com।
14: सेम ऑर्डर अगेन, सेम पिज्जा, सेम टेस्ट, सेम स्टोरी। टाइम टू अपग्रेड योर क्रेविंग्स डैलस, because Fun Pizza Kitchen just dropped a bold new Mexican inspired menu, and trust us, this is not your regular slice. Fiesta Veggie, Pollo Loco, Senor Cameron, Mucho Macho Pork, different names, crazy flavors. Once you try these, your old order might just get ghosted. Fun Pizza Kitchen, new flavors, new obsession.
15: ब्रेकिंग न्यूज, होम लोन या रीफाइनेंस अब और भी आसान। माई फैमिली होम लोन डॉट कॉम देता है ट्रांसपेरेंट प्राइसिंग, नो हिडन फीस, नो सरप्राइजेस। और हाँ, सबसे बड़ी खबर, उनका AI पावर्ड प्लेटफॉर्म रियल टाइम रेट्स कंपेयर करता है ताकि आपको मिले बेटर डील्स एंड फास्टर अप्रूवल्स। 15,000 प्लस गूगल रिव्यूज, हजारों फैमिलीज का भरोसा। विजिट माई फैमिली होम लोन डॉट कॉम और कॉल 4697343338, 4697343338। माई फैमिली होम लोन डॉट कॉम इज by Loan Factory, NMLS 2025289, licensed mortgage broker in Texas. All loans subject to credit approval. Equal housing lender.
16: This 15th of August, don't just celebrate Independence Day, celebrate it the Indian way. Join India Association of North Texas's Anand Bazaar 2026 at the Comerica Center in Frisco. Saturday from 2 p.m. onwards, experience a grand Independence Day parade, authentic Indian food, colorful cultural performances, live music, shopping, family fun, and an unforgettable celebration of India's independence. And the best part? It's completely indoors and free for everyone.
3: Sponsorship booth from $3,000 to $50,000 and vendor stalls at $750. Call 214-529-3257.
16: Celebrate India's 80th Independence Day with the entire community. IANT Anand Bazaar 2026 on Saturday the 15th of August, 2 p.m. onwards at the Comerica Center in Frisco.
17: And
5: एंड वेलकम बैक. दिस इज KZMP 104.9 FM फनी रेडियो पे मैं हूँ नीलम आपके साथ. बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए. ये कार्यक्रम है आपका, हमारी पूरी कम्युनिटी का, एवरी सैटरडे बिटवीन 2 and 3 PM. यहाँ पर हमारी कोशिश होती है आपके लिए लाते हम बहुत सारे कम्युनिटी में होने वाले इवेंट्स और एक्टिविटीज की जानकारी. उसी के साथ जुड़ते हैं हमारे साथ धार्मिक या सामाजिक संस्था के प्रतिनिधि. ये सारी बातचीत, ये सारे गाने होते हैं आपके लिए. आप ही से बनता है ये कार्यक्रम, कम्युनिटी से बनता है ये कार्यक्रम, हर शनिवार की दोपहर टिल 3 PM. आप सभी को इंडिपेंडेंस डे की हार्दिक शुभकामनाएं. जी हाँ, 12 से 2 बजे तक आपने बहुत सारी बातें सुनी हमारे साथ. इतिहास के पन्नों को पलटते हुए कुछ हमने आपसे जानकारी ली, कुछ हमने आपको जानकारी दी. एंड नाउ इट इज टाइम फॉर कम्युनिटी इवेंट्स. और जब कम्युनिटी इवेंट्स की बात करी हूँ, एकल फाउंडेशन लेकर आ रहा है बहुत ही अच्छा उनका एक शो, विच इज एकल फाउंडेशन फंड रेजिंग गाला कथक ऑन द सिल्वर स्क्रीन. और इनकी ज्यादा जानकारी हम लेंगे प्रेम भाई और उनके साथ जुड़े हुए सुब्बो जी, जिनसे हम करेंगे कुछ बातचीत. एंड फनीशा रेडियो, यू आर लाइव ऑन एयर सर. दिस इज 104.9 FM. वेरी गुड आफ्टरनून टू बोथ ऑफ यू.
6: जय श्री कृष्णा नीलम जी.
5: जय श्री कृष्णा. यस सर, यस सर. प्रेम भाई, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस. सो टेल अस समथिंग अबाउट एकल फाउंडेशन एंड व्हाट इज कमिंग अप.
6: या वी हैव आवर सीनियर एडवाइजर सुब्बू जी विद अस एंड ही विल टॉक अबाउट एकल.
5: यस सर, यस सर. सुब्बू जी नमस्कार.
17: नीलम जी नमस्कार. नीलम जी बहुत बहुत धन्यवाद सब लोगों का.
5: जी सर,
17: ऑल लिसनर्स के को इंडिपेंडेंस डे का शुभकामना है. इट्स अ ग्रेट डे, 80th एनिवर्सरी ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस. एंड फनीशिया एंड यू आर ऑल डूइंग अ ग्रेट जॉब सर्विंग द कम्युनिटी. थैंक्स फॉर गिविंग द अपॉर्चुनिटी. एंड देन एकल विद्यालय ऑल्सो इज ए वेरी गुड नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन मीटिंग कैटरिंग टू द नीड्स ऑफ रिमोट एरियाज इन इंडिया. जहां एक स्कूल भी जहाँ नहीं रहता है उधर जाके एक स्कूल खोल के सब लोग पढ़ाई करता है. इट इज स्टार्टेड इन समथिंग इन 1980s. करंटली एकल डैलस चैप्टर इज हेडेड बाय मीनू सुहालका जी एंड प्रेम जी इज आवर सपोर्टर एंड ट्रेजरर एंड इज देयर फॉर द लास्ट फ्यू इयर्स. आई बीइंग द वन ऑफ द पास्ट प्रेसिडेंट आई एम वी आर वर्किंग अलोंग विद सुहालका.
5: सो
17: हमारा एक and we have an excellent event coming up on August 28th.
5: Yes sir, please.
17: Through Phanesia, we would like to request all our listeners, please listen, go to akal.org/US and search for the Dallas events and then please attend the show Kathak. So Kathak in cinema world mein jaisa rehta hai, we are going to demo that. All the proceeds, 100% proceeds goes for the needy children back in India.
5: Wow, such a noble very very noble gesture and noble cause. Once again we are talking to Subhoji and Premji and they are from Ekal Foundation. They are having a fundraising event on this month, that is the 28th of August, and they are talking about that it is Kathak on the silver screen, jahan par aap dekhenge Bollywood filmon mein Kathak ka bahut hi khoobsurti se jo istemal kiya gaya hai wo. Kuch aur jankari dena chahenge aap, any contact details or any ticket information?
17: Sir, टिकट इन्फॉर्मेशन तो सब akal.org/US लिंक में मिलता है पूरा. बट आई वुड लाइक टू टेल वन थिंग.
5: यस सर.
17: यू कैन हेल्प द पीपल, यू कैन हेल्प योर बिजनेसेस योर सेल्फ बाय, यू कैन डू ए स्पॉन्सरशिप, यू कैन प्रमोट योर बिजनेस इनडायरेक्टली, यू कैन हेल्प द एकल. सो एकल दैट इवन द वे इज प्लान्ड, credit goes to our one of the lead local leader Prem Suhalka ji. Nicely planned, it gives opportunity for various business to showcase their products to the attendees.
5: Wow.
17: So you see, that means aapko आनंद मिलता है आपको. यू आर ट्राइंग टू हेल्प द किड्स एंड ऑल्सो गेटिंग बेनिफिटेड. और क्या चाहिए.
5: सो
17: एंड द एंटायर टिकट होल्डर has got a dinner also is taken care. Khana bhi, khana, music, and then
5: and
17: you can meet a lot of people there.
5: Yes.
17: Entertainment. Aur kya chahiye Nilam ji?
5: Yes, absolutely. Dekhiye, aap acha kaam bhi kar rahe hai aur uske saath aapko entertainment bhi mil raha hai, and it's a free dinner as well. और एंड यू नो एंड ऑफ द डे आपको ये भी होगा महसूस कि यू डिड समथिंग गुड फॉर समवन. योर टिकट योर कॉन्ट्रीब्यूशन वुड गो टू अ किड अ स्टूडेंट इन द रिमोट एरिया जहाँ पर कभी भी उन्हें विद्या नहीं मिली थी, ज्ञान नहीं मिला था. मे बी बिकॉज ऑफ योर कॉन्ट्रीब्यूशन दे विल बी एबल टू गो टू स्कूल. सो वेरी वेरी गुड इन डिड अ कॉज. और कुछ कहना चाहेंगे आप प्रेम जी और
17: नीलम जी? वी हैव वन ग्रेट थिंग, ग्रेट अपॉर्चुनिटी फॉर द लिजनर्स, फाइनेंशियल लिजनर्स. वी हैव कम अप आवर प्रेम जी एंड टीम एंड दे हैव कम अप विद अ नाइस आइडिया. हम लोग एक प्रश्न पूछेंगे एकल के बारे में.
5: यस सर.
17: जो भी उसका रिप्लाई देता है प्रेम जी और नंबर देगा आपको, सबको बताइए एंड वो प्रश्न हम बताएंगे. पहले लेट प्रेम जी गिव हिज इंफॉर्मेशन एंड फोन नंबर, देन आई विल गिव द
5: सो व्हाट विल हैपन इज यस प्रेम, वी विल हैव अ क्वेश्चन. अगर मैं लिसनर्स को एक बार फिर से बता दूं, अगर आप उस सवाल के जवाब दे पाए, यू कैन कॉल दिस नंबर दैट दे आर गिविंग एंड यू कैन विन अ फ्री टिकट टू एकल फाउंडेशन फंड रेजिंग गाला. Yes, Prem bhai, go ahead, please, sir, with your question and the contact number.
6: Yeah, the number is 817-915-3907.
5: Mm-hmm. Wonderful, wonderful. If you can repeat once again, please.
6: 817-915-3907.
5: Wonderful, great. So, ye jo aapka sawal hai, please go ahead and tell us.
17: Sawal hum batayenge, Neelam ji, sab logon ko, for the benefit of the listeners, we have 100,000 schools in India, all the way from Kashmir to Kanyakumari, yes, Gujarat to Assam. All the areas, we have 100,000 schools. And each school is around 30 students.
5: Yes.
17: And one ekal means one teacher school.
5: Yeah.
17: And we are started sometime in 1983-85. So now, approximately, the listeners need to tell us how many kids have been educated so far. How many kids, girls and boys have been we have provided literacy to them. You have to tell the number.
5: Sure. And you can call this the number which Prem Bhai has given. You can call him directly and you can win a free ticket by Prem Bhai. So once again, Prem Bhai ka number ek bar agar phir se aap repeat kar paaye to. 817-915-3907. Okay, 915-3907. One ticket per family. Yes, one ticket per family, 817-315. Jo number aapne abhi suna, pura number once again, it is. Prem bhai, please repeat that number.
6: 817-915-3907.
5: It is 817-915-3907. Agar aapko koi bhi jankari ho Ekal Foundation ki, if you can call this number, they will give you one free ticket पर फैमिली. बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद आप दोनों का. सर, एनीथिंग एल्स दैट यू वुड लाइक टू ऐड?
17: यस बढ़िया, थैंक यू वेरी मच नीलम जी फॉर ऑल योर काइंड सपोर्ट.
5: यस सर,
17: एंड ओवर सो मेनी इयर्स योर कांस्टेंट सपोर्ट फाइनेंशियल, वी आर वेरी मच ग्रेटफुल टू यू फॉर द सपोर्ट यू आर गिविंग. प्लीज डू, यू आल्सो डू अटेंड आवर शो इवेंट एंड मेक इट सक्सेसफुल.
5: यस आई विल बी एब्सोल्युटली बी देयर.
6: थैंक यू सो मच नीलम जी. And I appeal from our side that please join. This is a beautiful cause, and at the same time, the show is excellent show and dinner as well and networking. So for any reason you like, please come. Yeah, we would like to definitely talk about Ekal Mission more and more. But whatever you like, please come and, you know, meet us there.
5: Absolutely. Thank you so much, both of you, and have a great Saturday. Thank you, sir.
17: Thank you.
6: Yeah,
17: you
6: thank
17: too,
6: you
17: man.
6: So much.

0: हैप्पी इंडिपेंडेंस डे टू ऑल ऑफ यू वंस अगेन ऑन फनीशा रेडियो। मैं हूं नीलम, आपके साथ रहती हूं इस कार्यक्रम के साथ। हर शनिवार की दोपहर ये कार्यक्रम आप हमारे साथ सुन सकते हैं टिल 3 PM। ब्रॉट टू यू बाय अवर सीईओ वैशाली ठक्कर। जी हां, फ्री प्लेटफॉर्म फॉर एंटायर कम्युनिटी, दैट इज कम्युनिटी आउटरीच की ये प्रस्तुति कम्युनिटी राउंड अप। चलिए कुछ इवेंट्स की जानकारी आपको दे दूं बिफोर वी स्टार्ट बिगेन द कमर्शियल ब्रेक। ओमकार सत्संग मंडल एंड SNPS प्रेजेंट्स 12 ज्योतिर्लिंग की कथा बाय श्री मेहुल भाई जानी एट SLPS सेंटर एंड द डेट्स आर फ्रॉम टुमारो 16th टिल 20th ऑफ ऑगस्ट। DFW गुजराती समाज प्रस्तुत करते हैं एन इवनिंग विथ पोएट श्री विनोद जोशी। जी हाँ, इफ यू लाइक लिटरेचर एंड पोएट्री, दिस इज द टाइम फॉर यू। संडे सेप्टेम्बर 6, 4 PM SSA ऑडिटोरियम इन रिचर्डसन टेक्सस, दैट इज एन इवनिंग विथ विनोद जोशी। INT, जी हाँ, भूलिएगा मत, आज है कॉमरिका सेंटर में 2 बजे से, जिसकी शुरुआत हो चुकी है इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेशन फ्रिस्को कॉमरिका सेंटर। फ्री एंट्री इंडोर एंड दैट इज शॉपिंग के साथ एंटरटेनमेंट एंड हैपनिंग एट फ्रिस्को फ्रॉम 2 PM ऑनवर्ड्स। चातुर्मास संत पारायण हैपनिंग संडे ऑगस्ट 16, दैट इज टुमारो 4 PM एंड ऑल्सो मंडे ऑगस्ट 17 बाय एट BAPS श्री स्वामीनारायण मंदिर। वंस अगेन दैट इज 7:30 टुमारो मंडे एंड टुमारो 4 PM संडे ऑगस्ट 16। विवाह श्रीनाथम हवेली इज हैविंग कांचना हिंडोड़ा एंड दैट इज हैपनिंग टुडे दिस आफ्टरनून 4 PM ऑनवर्ड्स। ऐसे बहुत सारे कार्यक्रम की और भी जानकारी है हमारे पास जो हम आपको देते रहेंगे आफ्टर द कमर्शियल ब्रेक। कहीं मत जाएगा, बे विद अस।
1: कहाँ गया, कहाँ रखा था? सुनो ना, मेरा वो वाला सेट कहाँ है?
2: कौन सा?
1: अरे वो गोल वाला, थोड़ा ट्रेडिशनल, उसमें पोलकी भी है।
2: अरे सारे तो सेम है।
1: नहीं, वो श्री कृष्णा से जो लिया था ना हमने, ये देखो ये वाला।
2: ओ हाँ, ये तो अलग है।
3: अलग तो होगा ही, श्री कृष्णा ज्वेलर्स से जो है। From timeless gold and radiant diamonds to heritage polkis, discover Texas's largest handcrafted jewelry collection now at Main Street in Frisco. Shri Krishna Jewelers, crafted for moments that matter. Visit shrikrishna.com.
4: जीनी हुकम मेरे आका, हम आज पार्टी के मूड में हैं। एक ऐसी जगह बताओ जहां मेरी एंट्री ही रॉयल हो।
5: मिराज लाउंज चलिए मेरे आका, लग्जरी लिमोजीन राइड्स आपके इंतजार में है।
6: मुझे ज्यादा क्राउड पसंद नहीं।
5: नो प्रॉब्लम आका, लग्जरी प्राइवेट स्पेस भी हाजिर है आपकी प्राइवेट पार्टी के लिए।
6: और एंटरटेनमेंट,
5: मूवी नाइट, बेली डांसिंग नाइट्स, प्रीमियम हुकर्स और अमेजिंग वाइब्स सब आपकी खिदमत में।
6: वाह जीनी, ये जगह है या कोई जादू?
5: जादू नहीं, मिराज लाउंज एट मिकिनी रेंज पार्कवे। मिरेकल्स हैपन इन मिराज।
7: 2026 में आपकी राशि के लिए धन और सफलता के योग हैं।
8: अरे सुन, ये एस्ट्रोलॉजर बोल रहा है 2026 तेरी राशि वालों के लिए बहुत लकी है।
9: माँ, रील्स पे सब लकी ही होते हैं, जेनेरिक प्रेडिक्शंस सबको थोड़ी हेल्प करती हैं। तो फिर अगर रियल क्लैरिटी चाहिए तो पर्सनलाइज्ड गाइडेंस लो।
10: गाइडेंस की बात हो तो एक ही नाम है, पंडित राम तुलसी, जहाँ एस्ट्रोलॉजी सिर्फ राशियों तक लिमिटेड नहीं बल्कि आपकी पर्सनल जर्नी के हिसाब से गाइड करता है। करियर हो, स्टडीज, शादी या फ्यूचर प्लानिंग, हर डिसीजन अब होगा क्लियर और कॉन्फिडेंट।
9: कॉल पंडित राम तुलसी एट 9797972654 और विजिट astroramji.com।
11: सेम ऑर्डर अगेन, सेम पिज्जा, सेम टेस्ट, सेम स्टोरी। टाइम टू अपग्रेड योर क्रेविंग्स डैलस, because Fun Pizza Kitchen just dropped a bold new Mexican inspired menu, and trust us, this is not your regular slice. Fiesta Veggie, Pollo Loco, Senor Cameron, Mucho Macho Pork, different names, crazy flavors. Once you try these, your old order might just get ghosted. Fun Pizza Kitchen, new flavors, new obsession.
12: इस साल तो कमाल हो गया, हमारा रेवेन्यू डबल हो गया।
13: सर अच्छा है, लेकिन आपने टैक्स प्लानिंग किया?
12: नहीं।
13: बुक कीपिंग अपडेटेड है?
12: नहीं।
13: कैश फ्लो फोरकास्ट बनाया?
12: वो भी नहीं।
13: तो पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त।
3: रेवेन्यू देखकर खुश मत होइए, बिजनेस में तब ऑल इज वेल होगा जब हमारे नंबर्स भी स्ट्रांग हो। फॉर योर टैक्स प्लानिंग, बुक कीपिंग एंड CFO सर्विसेज, विजिट agfintax.com, कॉल 972-618-8555। AG Fintax, your growth our strategy. AG Fintechs led by Forbes Finance Council member Anil Grandhi.
14: Services are subject to individual eligibility and applicable laws. Terms and conditions apply.
15: Hello, Weekend Lunch Emergency Helpline. How may I help you?
16: Hello, मेरे relatives आ रहे हैं. Everyone's asking lunch में क्या है?
15: Fikar not. We have the perfect solution.
3: The Flavor Lounge in Frisco brings you its all-new Weekend Lunch Buffet. From flavorful Indian favorites to live counters and chef special. 25 plus dishes, welcome drink, chaat, appetizers, main course and dessert. Saturday to Sunday, 12 p.m. to 3 p.m. This weekend, let the Flavor Lounge do the cooking.
17: कौन है ये लोग? कहां से आते हैं?
18: जो बॉलीवुड का असली मजा जानते हैं, फन एशिया पर ही आते हैं।

104.9 FM फन एशिया रेडियो ब्रिंगिंग द कम्युनिटी टुगेदर। जी हाँ, आपने सही सुना, कम्युनिटी की बातें, कम्युनिटी के इवेंट्स, एंड दिस आर ऑल फ्री इवेंट जो हम आपके साथ शेयर करते हैं। मोस्ट ऑफ देम यहाँ पर हमारी ये कोशिश होती है कि प्रॉफिट, नॉन प्रॉफिट इवेंट्स, नॉन प्रॉफिट एक्टिविटीज़ को हम ज़्यादा प्रमोट करें ड्यूरिंग दिस आवर फॉर एंटायर कम्युनिटी। श्री कृष्ण अष्टाक्षर जाप एंड दिस इज हैपनिंग टुडे एट विवाह श्रीनाथ धाम हवेली एंड स्टार्टिंग एट 3 PM, 3 PM टिल 4 PM। रक्षाबंधन सेलिब्रेशन एंड इट इज हैपनिंग सैटरडे ऑगस्ट ऑफ 29th ऑफ ऑगस्ट 10 AM टिल 11 AM एंड एट ब्रह्मा कुमारीज मेडिटेशन सेंटर इन फार्मर्स ब्रांच, दैट इज रक्षाबंधन सेलिब्रेशन बाय ब्रह्मा कुमारीज। कीर्तितान घड़वी लोक फोक सिंगर एंड जी हाँ, दिस इज हैपनिंग ऑन 27th ऑफ सितंबर एट SLPS कम्युनिटी सेंटर। वंस अगेन इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेशन एंड दिस इज बाय ब्रुगो मातृ सेवा एंड हैपनिंग टुडे। एक्चुअली दे स्टार्टेड एट 11:30 AM बट इट इज स्टिल गोइंग ऑन एंड दैट इज बाय ब्रुगो मातृ सेवा एट मिनर्वा बैंक्वेट हॉल इन प्लेनो। राधा कृष्ण टेम्पल एंड दे आर प्रेजेंटिंग इन एलन जन्माष्टमी कॉन्सर्ट सैटरडे सेप्टेम्बर 5th एंड इट स्टार्टिंग एट 7 PM अ फ्री कॉन्सर्ट जन्माष्टमी कॉन्सर्ट एट राधा कृष्ण टेम्पल इन एलन। वैष्णव संघ ऑफ डालस प्रेजेंट्स श्री यमुना जी गुणगान महोत्सव 27, 28, and 29th ऑफ ऑगस्ट एंड द वेन्यू इज द मेरिडियन वेन्यू इन फेयरव्यू टेक्सास। विवाह श्रीनाथ धाम हवेली प्रेजेंट 15th ऑफ ऑगस्ट 4 PM टिल 7 PM कांचना हिंडोरा। वंस अगेन ये सारी बातें आपके लिए हो रही है ड्यूरिंग दिस वीकेंड, नेक्स्ट वीकेंड और सम टाइम इन सितंबर आल्सो। हम आपके लिए हर हफ्ते ये कैलेंडर प्रेजेंट करते हैं, कम्युनिटी का है ये कैलेंडर, आपके लिए हम प्रस्तुत करते हैं ये। एंड बिल्कुल अगर आप भी किसी जानकारी को हमसे शेयर करना चाहे, कोई भी इवेंट हमसे, हमारी कम्युनिटी से शेयर करना चाहे, देन प्लीज डू रीच आउट टू अस neelam@funasia.net। वंस अगेन दैट इज NEELAM @funasia.net।

0: is the Fun Asia Network. You are listening to Fun Asia Radio 104.9 FM. KZMP 104.9 FM HD1, Pilot Point, Texas. Simulcasting on KTCG 104.1 FM HD2, Sanger, Texas. Powered by Fun Asia Films and Fun Pizza Kitchen.
1: Official tax and finance partner, AG FinTax.
0: Official injury law partner, the law offices of Omar Khwaja.
1: In association with Passion Health Primary Care.
2: Fun Asia 104.9 FM. Turn up the volume.
3: Are you looking for a smarter approach to reducing taxes while building and preserving wealth? My Time Equity, a registered investment advisory firm led by CPA Sudhir Pai, offers active portfolio management, structured notes, tax and financial planning, real estate strategies, AI and late-stage pre-IPO opportunities, and other alternative investments. Learn how a personalized strategy can help you pursue your financial goals. Visit MyTimeEquity.com or call 972-330-2771.
4: MyTime Equity is a fee-based registered investment advisory firm. This advertisement is for informational purposes only and does not constitute investment, legal or tax advice. Investing involves risk, including the possible loss of principal.
5: At Tanishq, no two diamonds are exactly alike. They're beautifully rare, just like the woman who wears them. That's why this is the perfect time to find yours at the Tanishq Festival of Diamonds, with up to 25% off on diamond value and making charges, plus zero deduction on your old gold exchange above 18 carat. Visit Tanishq Dallas at 2809 Preston Road, number 1200, Frisco, 75034 today. Tanishq, a Tata product. Terms and conditions apply.
6: अरे वो केक आया क्या?
7: डीजे कौन हैंडल करेगा?
6: डेकोर वाले को कॉल किया.
7: बैंड बजाने से पहले मेरा ही बैंड बज गया.
6: रिलैक्स, ऑसम इवेंट्स को कॉल किया.
7: ऑसम इवेंट्स?
6: हाँ भाई, वेडिंग हो, बर्थडे बैश, कॉर्पोरेट गाला या फुल ऑन कॉन्सर्ट नाइट, अमरीन हसनात एंड द टीम विल हैंडल एवरीथिंग.
7: मतलब प्लानिंग टू एग्जीक्यूशन, टेंशन खत्म.
6: नॉट जस्ट दैट, बुक योर नेक्स्ट इवेंट एंड गेट फ्री प्रोफेशनल एमसीइंग बाय अमरीन हसनात हरसेल्फ.
8: कॉल नाउ एट 214-725-7466. That's 214-725-7466 and turn your celebration into an awesome event.
9: Shaadi byah ka koi mauka ho ya koi tyohar, khoobsurat libas khushiyon ko dugna kar deta hai.
10: Har khushi mein aapke saath Manyavar Mohe, traditional celebration wear for men, women and children, crafted with exquisite blended fabrics. Manyavar Mohe, located on Regent Boulevard of 635 East in Irving.
11: I am so stressed. Credit card bills, unsecured debts. What are we going to do?
12: Kuch bhi nahi. Oora Debt Relief will do it for us.
11: Kya matlab?
12: Oora can help us save up to 50% on our total debt and the rest we pay in easy monthly installments.
11: But what if it doesn't work? We cannot afford to lose more money. Hum khud hi manage kar lenge.
12: Oora Debt Relief is one of the leading debt settlement companies. They don't charge a single penny until our debt is settled. And they have a 100% money back guarantee. Call to karo 888-888-9914.
11: Ab to karna hi padega, madam.
13: Don't let debt ruin your life. Visit Oora.org or call 888-888-9914 and take control of your financial future.
14: It's true. हम अपनी सद्बुद्धि से बहुत सी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं, बट समटाइम्स इवन द बेस्ट नीड अ लिटिल गाइडेंस. विद ओवर 400 इयर्स ऑफ फैमिली ट्रेडिशन थ्रू हिज एक्सटेंसिव नॉलेज ऑफ एस्ट्रोलॉजी एंड पाम रीडिंग, पंडित ईश्वर जी कैन हेल्प यू विद एनी डिफिकल्टी इन योर पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ, फ्रॉम रिलेशनशिप इश्यूज टू नेगेटिव एनर्जी रिमूवल. कॉल द मोस्ट ट्रस्टेड एस्ट्रोलॉजर पंडित ईश्वर जी 9455270897. और विजिट astrologerishwar.com.
15: सुनो, कल बहुत काम है. पहले ग्रोसरी, फिर पूजा का सामान, गिफ्ट्स भी खरीदने हैं, और इन सब कुछ के बाद मैं कुकिंग नहीं करने वाली. कहीं अच्छा सा डिनर करके आएंगे.
16: और ये सब कुछ अगर एक ही जगह हो जाए तो?
15: कहाँ?
17: फूडिस्तान इन ऑबरी. फ्रेश ग्रोसरी, हलाल मीट, पूजा एसेंशियल्स, लाइव पानी पूरी, केटरिंग सर्विसेज, प्लस लोएस्ट प्राइस मैच गारंटी. एंड इनसाइड फूडिस्तान, एंजॉय द प्रीमियम इंडियन कुजीन एट डीवाइव, एन अपस्केल रेस्टोरेंट फॉर द परफेक्ट फैमिली डिनर.
18: फूडिस्तान इन ऑबरी. मेंशन फन एशिया एंड एंजॉय 10% डिस्काउंट.
19: वीकेंड का प्लान अभी तक नहीं बना? बस 90 मिनट्स नॉर्थ ऑफ डैलस, चौकटाव कैसीनो एंड रिसॉर्ट ड्यूरेंट में हर विजिट बन जाता है एक विनिंग एक्सपीरियंस. पोकर हो या ब्लैक जैक, एक्साइटिंग स्लॉट्स हो या फिर 20 अमेजिंग रेस्टोरेंट्स में जबरदस्त डाइनिंग, और अगर ब्रेक चाहिए तो लग्जूरियस स्काई टावर और रिलैक्सिंग स्पा आपका इंतजार कर रहे हैं. तो सिर्फ लकी फील मत कीजिए, लकी बन जाइए. चौकटाव कैसीनो एंड रिसॉर्ट ड्यूरेंट, एंटरटेनमेंट, लग्जरी और एक्साइटमेंट सब एक ही डेस्टिनेशन में. प्लीज प्ले रिस्पॉन्सिबली. मस्ट बी 21 इयर्स.
12: older to gain.

0: Anishk, no two diamonds are exactly alike. They're beautifully rare, just like the woman who wears them. That's why this is the perfect time to find yours at the Tanishq Festival of Diamonds, with up to 25% off on diamond value and making charges, plus zero deduction on your old gold exchange above 18 carat. Visit Tanishq Dallas at 2809 Preston Road, number 1200, Frisco, 75034 today. Tanishq, a Tata product. Terms and conditions apply.
1: अगर आपकी नाइट भी तंदूरी डिलाइट्स के बिना अधूरी लगती है, तो ये खबर आपके लिए। This summer enjoy 20% off on all appetizers, tandoori items and mocktails only at Tandoori Flame. Chicken tandoori, malai chicken tikka, paneer tikka, momo ya soya champ. अब हर बाइट के साथ मिलेगी extra savings. Dine in only at Tandoori Flame Garland, where every bite is a celebration.
2: अजी सुनते हो, सोच रही थी बेटे की शादी इंडिया में करे?
1: इंडिया में? तो यहाँ जो फ्रेंड्स और रिलेटिव्स हैं, वो कैसे अटेंड करेंगे?
2: पर यहाँ सारी अरेंजमेंट्स मैनेज करना भी तो कितना मुश्किल होगा।
1: हेलो, तुम डैलस में हो, यहाँ कोई भी इवेंट करना सुपर इजी है, स्पेशली जब वैनेसा इवेंट्स का साथ हो।
2: सच में सब संभाल लेंगे?
1: अरे सब कुछ, वेडिंग हो, हाउस वार्मिंग, ग्रेजुएशन, यू नेम इट, दे डिलीवर। वेन्यू, फोटोग्राफी, हॉस्पिटैलिटी, सब कुछ एक ही जगह। सिग्नेचर इवेंट्स का डेकोर और खाना बाय द रेनॉल्ड बसेरा ग्रैंड ओनली।
3: कॉल हरी बसेरा ऑन 4694428770. Vanessa Events, your celebration partner.
4: रेस्टोरेंट चूज करना हो, गूगल रिव्यूज। होटल बुक करना हो, गूगल रिव्यूज। लेकिन बच्चों के डॉक्टर की जब बात आए तो एक ही रिव्यू सबसे इम्पोर्टेंट होता है, माँ का रिव्यू।
3: इसलिए डॉक्टर फरहाद हैज बीन रिकॉग्नाइज्ड एज अ DFW चाइल्ड मॉम अप्रूव्ड पीडियाट्रिशियन फॉर 4 कंसेक्यूटिव इयर्स, 2023 थ्रू 2026। मीट डॉक्टर निशात फरहाद एट पैशन हेल्थ पीडियाट्रिक्स, सर्विंग फैमिलीज एट फ्रिस्को एंड ऑब्री, स्टार्टिंग एट द एंड ऑफ ऑगस्ट। पैशन हेल्थ प्राइमरी केयर, बिकॉज एवरी हेल्थी स्माइल बिगिंस विद ट्रस्टेड care. Call 214-666-6259 and schedule your appointments today.
5: ये तारा वो तारा हर तारा।
6: अरे अरे अरे, डैलस के आसमान में इतने सारे तारा नहीं। बिजनेस ओनर्स के लिए तो सिर्फ एक ही तारा काफी है, तारा कमर्शियल एनर्जी। 2002 से टेक्सास के हजारों बिजनेसेस का ट्रस्टेड एनर्जी पार्टनर। होटल्स, गैस स्टेशंस, वेयरहाउसेस, मेडिकल फैसिलिटीज, रिटेल स्टोर्स और ऑफिस बिल्डिंग्स, कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग, पर्सनलाइज्ड एनर्जी सॉल्यूशंस और एक्सेप्शनल कस्टमर सर्विस। तारा कमर्शियल एनर्जी, पावरिंग टेक्सास बिजनेसेस फॉर ओवर 2 decades. कॉल 844-428-2808 और विजिट taraenergy.com टुडे। तारा कमर्शियल एनर्जी, जो आपके बिजनेस को रोशन रखे।
7: मैं शादी करूंगी तो करीना वाला डिजाइनर लहंगा पहन के करूंगी, वरना दूल्हे को टाटा बाय बाय कर दो।
8: अरे मैडम, करीना वाला लहंगा और आपका बजट मैच करेगा क्या?
3: अब करेगा, बिकॉज इंडियन अटायर फ्रिस्को समर सेल इज ऑन। स्टनिंग लहंगास, एलिगेंट साड़ीज, ब्राइडल ज्वेलरी, मेंस एंड किड्स वेयर।
9: इतना सब और प्राइस?
3: अप टू 25% ऑफ ऑन लहंगास एंड ब्राइडल कलेक्शन। समर सेल थ्रू द एंड ऑफ ऑगस्ट, ओनली एट इंडियन अटायर फ्रिस्को। ट्रेडिशनल हो या फ्यूजन, अब हर आउटफिट बोलेगा
10: मैं हीरो।
3: Are you trying to protect your business, retain top talent, and plan for future succession all at the same time? An executive retention strategy using life insurance may help address multiple business goals, including key person protection, employee retention incentives, and future buyout planning. To explore business life insurance strategies, visit shopcompareinsure.com to get started. Call 469-789-3603. That's shopcompareinsure.com. Your 360 insurance solution. Products subject to carrier approval, policy terms, and state availability. Guarantees depend on the issuing carrier. Business planning strategies should be reviewed with qualified legal and tax professionals. Not legal, tax, or investment advice.
11: Give your children the gift of spiritual grounding and cultural identity through Chinmaya Mission's Balavihar program. Families can choose from 3 convenient locations. Chinmaya Mission also offers a variety of enriching programs, including Gita chanting, Shlokathon, satsangs for adults, festival celebrations, cultural activities, and language classes. Registration for Balvihar is now open. Visit cmdfw.org for complete details. Hari Om.

जब तुम उसकी बारात में क्रैश लैंड हुई, टल्ली हो गई। उस दिन कॉलेज वाले प्यार से फॉरएवर वाला प्यार हो गया तुमसे, बाय गॉड।

स्वागत करती हूँ एक बार फिर तमाम सुनने वालों का. थैंक यू सो मच फॉर ट्यूनिंग इन टू 104.9 FM फनीशा रेडियो, ब्रिंगिंग द कम्युनिटी टुगेदर. मैं हूँ आपकी होस्ट, आपकी दोस्त अमरीन हसनात. आई बी विथ यू टिल 6 PM एंड टुडे द कम्युनिटी हैज गैदर्ड टुगेदर एट द कोमेरिका इवेंट सेंटर फॉर IANT स्पेशल आनंद बाजार. जी हाँ, हिंदुस्तान का इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट कीजिए मिलजुल कर एट दिस फ्री इवेंट विच इज ओपन टू पब्लिक. ऑल काइंड्स ऑफ एंटरटेनमेंट, एवरीथिंग फ्रॉम parade to fireworks and everything else in between, from food stalls and shopping and so much more. So don't miss out on that. IANT's Anand Bazaar. You are listening to Boli Pyar Ki, jisme bahut pyar se hum aapke regional language ke song request karte hain puri. Shuruaat karte hain aaj is Tamil song ke saath. Phone lines are open 972-235-5555. No Hindi, no Urdu, no English. Sirf aur sirf regional languages ke gaane.

0: What a lovely Tamil wedding song that was from the film Enemy. 42 minutes past 3, you're listening to Boli Pyar Ki, which is all about प्यारे प्यारे रीजनल लैंग्वेजेस के गाने. अब वो भाषा चाहे तेलुगु हो या तमिल, मलयालम हो या पंजाबी, गुजराती हो या भोजपुरी, सिंधी हो या हो पश्तो, वट एवर इज योर रीजनल लैंग्वेज, इट्स योर अपॉर्चुनिटी टू शोकेस इट ड्यूरिंग दिस इवेंट. अगर आपको लगता है कि आपकी लैंग्वेज का गाना नहीं प्ले किया गया, well, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी और कसूर भी सारा आपका है. Obviously, you didn't call to request your Nepali song or your Haryanvi song. Whatever it is, you're going to have to call and let me know. मैं कोशिश तो करती हूँ अपनी psychic abilities use करूँ, लेकिन फिर भी उतनी पावरफुल नहीं है मेरी टेलीपैथिक abilities. फनीशा रेडियो, आप ऑन एयर है, रेडियो का वॉल्यूम प्लीज कम कर दीजिए एंड टेक मी ऑफ ब्लूटूथ, टेक मी ऑफ स्पीकर सो आई कैन हियर यू.
1: Can you hear me now?
0: A little bit better, yes. क्या नाम है आपका?
1: जय कुकरेजा.
0: All right, बोलिए कौन सी लैंग्वेज का गाना रिक्वेस्ट करेंगे?
1: सिंधी.
0: सिंधी? Okay.
1: Yes.
0: क्या नाम है आपके गाने का?
1: दमादम मस्त कलंदर.
0: दमादम मस्त कलंदर. All right, are you wanting the new one? मीका सिंह वाला. ठीक है जी, प्ले करते हैं. कहाँ से कॉल कर रहे हैं आप जय?
1: Downtown Dallas.
0: Downtown Dallas. All right, here is your song. Brothers for life, Nikka Singh.

0: This is one of those songs that is universally loved by cultures across the Indian subcontinent, चाहे जो भी ज़ुबान आप बोलते हो, जब ये गाना प्ले होता है तो सभी झूम उठते हैं. Thank you for tuning in to Dil Se on 104.9 FM. I'm your host, Amreen Hasnat, taking requests for regional language songs. 972-235-5555 है हमारे स्टूडियो का नंबर. आइए चलते हैं नेक्स्ट कॉलर की तरफ. फनीशर रेडियो, आप ऑन एयर है, आपका नाम?
1: हेलो
0: जी, आप ऑन एयर है, आपका नाम?
1: हाय अमरीन जी, सोहेल अनामारियम, हाउ आर यू?
0: आई एम गुड. मैं अच्छी हूँ, आप बताइए कौन सा गाना सुनेंगे आप?
1: किशोर कुमार, आजे दिन टके. मरियम जस्ट स्टेप्ड आउट ऑफ द कार, सो आई लेट मी गो थ्रू हर, क्योंकि आई वाज वेटिंग, आई सेड होल्ड तो करना पड़ता है ना काफी टाइम तक.
0: आई नो, आई एम सॉरी, लेकिन आज ज्यादा तो नहीं आपको, मैंने गाना लाइन अप भी कर दिया आपके लिए, बस उनको जल्दी से.
1: आ गई, आ गई. हेलो, बोल अमरीन है.
2: हाय अमरीन.
0: हेलो मरियम, हाउ आर यू?
2: आई एम गुड, थैंक फॉर आस्किंग.
0: আপনার গানটা লাইন আপ করা হয়ে গেছে আজ এই দিনটাকে, কিশোর কুমার.
2: Thank you.
0: You are very welcome. Here it is. Enjoy your song.

0: What a lovely song, and how we say it in Bangla, Uporbo, Uporbo. 49 minutes past 3, you're listening to Dil Se on 104.9 FM. And Dil Se Pesh Kar Rahi Hoon Main, yani ke aapki host, aapki dost Amreen Hasnat. Boli Pyar Ki segments mein hum har regional language ke sirf do hi gaane प्ले कर पाते हैं बिकॉज वक्त कम है और मुकाबला सख्त. हमारा ये सेगमेंट शाम 5 बजे तक जारी रहता है और कोशिश होती है कि हम हर रिक्वेस्ट को पूरी करें. अब ये आपने माइंड में रखना है कि इस सेगमेंट में 5 से 10 मिनट का मिनिमम होल्ड टाइम है. सो अगर पेशेंस है आपके पास उतना तो ज़रूर होल्ड कीजिए इस तसल्ली के साथ कि व्हेनेवर योर कॉल गेट्स थ्रू योर सॉन्ग विल बी प्लेड. आइए चलते हैं नेक्स्ट कॉलर की तरफ. फनीशर रेडियो, आप ऑन एयर हैं. आपका नाम? हेलो जी, ऑन एयर हैं आप. आपका नाम?
1: जी रतन बोल रहा हूं.
0: जी रतन बोलिए, कौन सा मैथिली सॉन्ग सुनाएं आपको हम?
1: जब अहां से मिले.
0: जब क्या? आई एम सॉरी.
1: जब अहां से मिले छी.
0: अहां से मिले छी. ओके, लेट्स सी इफ आई कैन फाइंड दैट. और रतन कहां से कॉल कर रहे हैं आप?
1: बॉनहम से.
0: आई एम सॉरी,
1: बॉनहम.
0: ऑल राइट, थैंक यू सो मच फॉर योर कॉल रतन. ये रहा आपका मैथिली सॉन्ग.

0: सुन रहे थे रतन साहब की फरमाइश पर हम ये मैथिली सॉन्ग. यू लिसनिंग टू बोली प्यार की, ब्रॉट टू यू इन पार्ट बाय श्री कृष्णा ज्वेलर्स, जो किसी तारुफ के मोहताज नहीं. एंड इंडिया में सबका दिल जीतने के बाद अब दे गॉट अ न्यू लोकेशन इन फ्रिस्को on 13145 Main Street, Shri Krishna Jewelers, crafting fine jewelry and cherished memories since 1967. आइए चलते हैं नेक्स्ट कॉलर की तरफ. फनीशा रेडियो, आप ऑन एयर हैं, आपका नाम?
1: कांता.
0: जी कांता, बोलिए कौन सी लैंग्वेज का गाना रिक्वेस्ट करेंगी?
1: गुजराती.
0: क्या नाम है आपके गाने का?
1: तुम्हारो मेरो माला.
0: अच्छा, फिर से पहला वर्ड बताइए क्या? तो
1: मेरू माला पिक्चर.
0: नहीं नहीं, गाने का नाम बताइए.
1: तुम्हारो मेरू माला.
0: ओके, लेट्स सी, मैं ढूंढती हूँ ये गाना. तुम्हारी मालन, राइट? पुराना गाना है क्या?
1: यस यस.
0: ओके ठीक है, हम आपके लिए ढूंढते हैं. कहाँ से कॉल करिए कांता आप हमें?
1: Alright,
0: thank you so much. अच्छा, सुनने वालों को हम फिर से रिमाइंड करते चलें कि जब आपकी कॉल कनेक्ट होती है ना हमारे साथ, तो या तो आपको मेरी आवाज सुनाई देगी गाने की जो रेडियो पे प्ले हो रहा है वो, या फिर आपको ऑन होल्ड म्यूजिक सुनाई देगा. आइदर वे इसका मतलब ये है कि आपकी कॉल कनेक्ट हो गई है और आप क्यू में है, यानी कतार में है. सो अपनी बारी का कीजिए इंतजार.

0: The Fun Asia Network. You are listening to Fun Asia Radio 104.9 FM. KZMP 104.9 FM HD1, Pilot Point, Texas. Simulcasting on KTCG 104.1 FM HD2, Sanger, Texas. Powered by Fun Asia Films and Fun Pizza Kitchen.
1: Official tax and finance partner, AG FinTax.
0: Official injury law partner, the law offices of Omar Khwaja.
1: In association with Passion Health Primary Care.
2: Beautiful home, Ravi. $1 million. Wow.
3: Thank you. Well, Sana and me just got lucky as Hussein Panjwani helped us with the purchase of our first home. He practically walked us through the entire process. Ever since, with his guidance and support, I've become a pretty savvy real estate investor myself. Unka radio show suna tha, and then consulted with him for all my financing needs. Now my real estate portfolio has grown into many single family homes, apartment complexes, agricultural land, or up ye $1 million property bhi.
4: Hi, this is Hussein Panjwani. Dream Home will help you grow your real estate portfolio. Remember, we just don't promise, we deliver.
5: For details, visit dreamhomemortgage.com or call Dream Home Mortgage 972-245-5626 or email info@dreamhomemortgage.com. Some restrictions apply. Equal housing lender, NMLS 334616, Division of Brazos National Bank.
6: At Tanishq, no two diamonds are exactly alike. They're beautifully rare, just like the woman who wears them. That's why this is the perfect time to find yours at the Tanishq Festival of Diamonds, with up to 25% off on diamond value and making charges, plus zero deduction on your old gold exchange above 18 carat. Visit Tanishq Dallas at 2809 Preston Road, number 1200, Frisco, 75034 today. Tanishq, a Tata product. Terms and conditions apply.
7: इस रक्षाबंधन चौकटा कैसीनो एंड रिसोर्ट ड्यूरांड के साथ सेलिब्रेट कीजिए वो रिश्ता जिसमें नोकझोंक भी है, दोस्ती भी, एंड ए लाइफ टाइम ऑफ अनफॉरगेटेबल मेमोरीज. अपने भाई या बहन के साथ जुड़ी सबसे यादगार मेमोरी हमें 1 मिनट वॉइस नोट में भेजिए एंड विन एक्साइटिंग डेली प्राइजेस इंक्लूडिंग डाइनिंग एक्सपीरियंसेस, एंटरटेनमेंट, रिजॉर्ट स्टेज एंड द ग्रैंड प्राइज, एन अनफॉरगेटेबल सिबलिंग रीयूनियन वीकेंड एट चौकटा कैसीनो एंड रिसोर्ट ड्यूरांड. अपनी स्टोरी व्हाट्सएप कीजिए 2148377147 पर या कॉन्टेस्ट डिटेल्स के लिए विजिट कीजिए फन एशिया रेडियो के सोशल मीडिया पेजेस.
8: चौक टॉक कैसीनो एंड रिसॉर्ट डुरांट, वेयर अनफॉरगेटेबल मेमोरीज आर मेड टुगेदर. मस्ट बी 21 और ओल्डर टू पार्टिसिपेट. टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई. प्लीज प्ले रिस्पॉन्सिबली.
9: अगर आपकी नाइट भी तंदूरी डिलाइट्स के बिना अधूरी लगती है तो ये खबर आपके लिए. दिस समर एंजॉय 20% ऑफ ऑन ऑल एपेटाइजर्स, तंदूरी आइटम्स एंड मॉकटेल्स ओनली एट तंदूरी फ्लेम. चिकन तंदूरी, मलाई चिकन टिक्का, पनीर टिक्का, मोमो या सोया चाप, अब हर बाइट के साथ मिलेगी एक्स्ट्रा सेविंग्स. डाइन इन ओनली एट तंदूरी फ्लेम गार्डन, वेयर एवरी बाइट इज अ सेलिब्रेशन.
10: 2026 में आपकी राशि के लिए धन और सफलता के योग हैं।
11: अरे सुन, ये एस्ट्रोलॉजर बोल रहा है 2026 तेरी राशि वालों के लिए बहुत लकी है.
12: माँ, रील्स पे सब लकी ही होते हैं, जेनेरिक प्रेडिक्शंस सबको थोड़ी हेल्प करती हैं. तो फिर अगर रियल क्लैरिटी चाहिए तो पर्सनलाइज्ड गाइडेंस लो.
13: गाइडेंस की बात हो तो एक ही नाम है, पंडित राम तुलसी, जहाँ एस्ट्रोलॉजी सिर्फ राशियों तक लिमिटेड नहीं बल्कि आपकी पर्सनल जर्नी के हिसाब से गाइड करता है. करियर हो, स्टडीज, शादी या फ्यूचर प्लानिंग, हर डिसीजन अब होगा क्लियर और कॉन्फिडेंट.
12: कॉल पंडित राम तुलसी एट 9797972654 और विजिट astroramji.com.
14: हेलो, वीकेंड लंच एमरजेंसी हेल्पलाइन, हाउ मे आई हेल्प यू?
15: हेलो, मेरे रिलेटिव्स आ रहे हैं, एवरीवन इज आस्किंग लंच में क्या है.
14: फिकर नॉट, वी हैव द perfect solution.
16: The Flavor Lounge in Frisco brings you its all-new weekend lunch buffet. From flavorful Indian favorites to live counters and chef special, 25-plus dishes, welcome drink, chaat, appetizers, main course and dessert. Saturday to Sunday, 12 p.m. to 3 p.m. This weekend, let the Flavor Lounge do the cooking.
17: Beta, 95% aaye?
18: Haan, mummy.
17: Good. Ab chaliye, papa, aap apna report card dikhaiye.
19: Mera?
17: Haan. Profit margin, cash flow, tax planning, business goals, सारे accounts updated.
19: वो
20: स्कूल का रिपोर्ट कार्ड साल में एक बार आता है, बट बिजनेस का रिपोर्ट कार्ड हर महीने. AG FinTax helps you understand profitability, cash flow, tax planning, business growth through bookkeeping and CFO services. Visit agfintax.com. Call 972-618-8555. AG FinTax, led by Forbes Finance Council member Anil Grandhi.
21: Services are subject to individual eligibility and applicable laws. Terms and conditions apply.
22: 90s ke gaane sirf hits nahi, hamari yaadein hain. Aur ab wo legendary awaaz aa rahi hai live to Plano. वो आवाज जिसने 90s को अनफॉरगेटेबल बना दिया। कुमार सानू लाइव इन कॉन्सर्ट, अनफॉरगेटेबल 90s, सितंबर 11th एट द ब्रांड न्यू रॉबिन्सन फाइन आर्ट्स प्लेनो। लिमिटेड सीट्स, फ्री पार्किंग एंड मीट एंड ग्रीट ऑप्शंस अवेलेबल। टिकट्स एट eventbrite.com। मोर इन्फो 214-869-2668। प्रेजेंटेड बाय फोकस एंटरटेनमेंट एंड फॉर्च्यून ग्रुप।
0: खुशामदीद कहती हूँ एक बार फिर तमाम सुनने वालों को। थैंक यू सो मच फॉर ट्यूनिंग इनटू 104.9 एफएम फन एशिया रेडियो, ब्रिंगिंग द कम्युनिटी टुगेदर। मैं हूँ आपकी होस्ट, आपकी दोस्त अमरीन हसनात, और हर सैटरडे और संडे आपसे मुलाकात होती है 104.9 एफएम की फ्रीक्वेंसी पर 3 से 6 बजे के दरमियान। एक्चुअली सैटरडे को 3:30 और संडे को 3 बजे मेरी कोशिश होती है कि रंगारंग सेगमेंट से आपका मनोरंजन किया जाए, आपको एंटरटेन किया जाए। आई होप आप हमारे सभी सेगमेंट से लुत्फंदोज होते हैं। आज सैटरडे को हमारा सेगमेंट होता है बोली प्यार की, जिसमें रीजनल लैंग्वेजेस के गाने हम आपको सुनवाते हैं। इट इज 6 minutes past 4, टुडे इज 15th of August 2026। आई एम श्योर सुबह से सभी सेगमेंट्स में आपको हिंदुस्तान की इंडिपेंडेंस डे की मुबारकबाद दी जा रही है, तो मैं भी पीछे नहीं रहूंगी। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे टू ऑल द इंडियंस हु आर ट्यून्ड इन टू आवर शो दिस इवनिंग। आइए चलते हैं नेक्स्ट कॉलर की तरफ। फनीशा रेडियो, आप ऑन एयर हैं, आपका नाम? हेलो।
18: हेलो
0: जी, आप ऑन एयर हैं, आपका नाम?
18: पार्थ
0: जी, बोलिए, कौन सी लैंग्वेज का गाना रिक्वेस्ट करेंगे?
18: ओडिया।
0: उड़िया लैंग्वेज, ओके। बताइए क्या नाम है आपके गाने का?
18: वंदे उत्कल जननी।
0: वंदे
18: उत्कल,
0: उत्कल, ओके।
18: UTKAL, उत्कल,
0: उत्कल, ओके।
18: जननी,
0: जननी, ओके। गॉट इट, थैंक यू। पार्थ, कहाँ से कॉल कर रहे हैं आप हमें?
18: अरविंद।
0: ओके, थैंक यू सो मच फॉर योर कॉल। आई बिलीव दिस इज योर सॉन्ग, एंजॉय।

0: सुन रहे थे आप पार्थ की रिक्वेस्ट पर ये उड़िया सॉन्ग। आइए चलते हैं नेक्स्ट कॉलर की तरफ। फनीशा रेडियो, आप ऑन एयर है, आपका नाम?
1: मेरा नाम समीर है
0: जी। समीर बोलिए, कौन सी लैंग्वेज?
1: अमरीन, अमरीन मुझे सुनना है मिले सुर मेरा तुम्हारा, इसमें हर लैंग्वेज है। इंडिया की सब लैंग्वेजेस है।
0: अच्छा, और हिंदी तो नहीं है, क्योंकि हम कोशिश
1: हिंदी
0: करते
1: है, गुजराती है, मराठी है, हर लैंग्वेजेस।
0: हाँ, लेकिन हमको हिंदी नहीं ना प्ले करनी थी, हमको बाकी लैंग्वेजेस।
1: ये बाकी सब लैंग्वेजेस है इसके अंदर।
0: अच्छा चलिए, आप कहते हैं समीर, आमतौर पे हम ऐसा करते नहीं, बट वी विल प्ले दिस सॉन्ग फॉर यू एंड होपफुली विल गेट टू हियर। तो अब इसको हम कौन सी भाषा में काउंट करेंगे, बिकॉज हर लैंग्वेज का एक काउंट होता है ना।
1: दिस इज इंडियन, दिस इज इंडियन सॉन्ग, लाइक एवरी लैंग्वेज इज देयर इन दिस सॉन्ग।
0: अच्छा चलिए ठीक है। और समीर कहाँ से कॉल कर रहे हैं आप हमें?
1: मैं डैलस से कॉल कर रहा हूँ।
0: ऑलराइट, थैंक यू फॉर योर कॉल।

0: lines are open for your request and dedications of regional language songs. अब आपका गाना तेलुगु है या मलयालम, पश्तो है या सराइकी, गुजराती है या है मराठी, हरियाणवी है या भोजपुरी, ये तो आप ही कॉल करके बताएंगे. 972-235-5555. सो फार हमने सिंधी के चूंकि दो गाने प्ले किए हैं, विल नॉट बी टेकिंग एनी रिक्वेस्ट फॉर सिंधी सॉन्ग्स. फनीशा रेडियो, आप ऑन एयर है, आपका नाम?
1: मेरा नाम है सोमिल अमरीन. आपने जो गाना बजाया मिले सुर मेरा तुम्हारा, दिल खुश हो गया. थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू.
0: सो ग्लैड. और ये बताइए आप कौन सी लैंग्वेज का गाना रिक्वेस्ट करेंगे?
1: तो माने से ने तमिल का एंड ना सांभर हुच है.
0: तमिल का सॉन्ग, ओके. और गाने का क्या नाम है?
1: गायन नो नाम छे मोनिका. मोनिका नहीं बहुत याद आवे हमरा. मोनिका सांभर हुच
0: है. दैट्स इन तमिल. आप अपनी सारी गुजराती मुझ पर निकाल लो, जैसे मुझे तो मैं तो पैदा ही गुज्जू हुई थी, है ना?
1: Okay, let me find the song and play it for you. Thank you, Soumil. All right, guys,
0: here's our second Tamil song of the day.

0: होप यू गाइस एंजॉयड दैट कनाडा सॉन्ग. ऑलराइट, देखते हैं हमारी लिस्ट में कौन कौन सी लैंग्वेजेस के गाने सो फार हमने आपके लिए प्ले की. वी डिड तमिल, सिंधी, बांग्ला, मैथिली, गुजराती, उड़िया एंड कनाडा. लेट्स सी अगला गाना कौन सी भाषा में होगा. फनीशर रेडियो, आप ऑन एयर है, आपका नाम?
1: आशीष
0: जी. आशीष बोलिए, कौन सी लैंग्वेज का गाना रिक्वेस्ट करेंगे?
1: हाउ अबाउट पंजाबी.
0: पंजाबी, क्या नाम है आपके गाने का?
1: की बनू दुनिया दा बाय गुरदास मान.
0: की बनू दुनिया दा, बहुत उम्मीदें बहुत कम है दुनिया का क्या बनेगा. ओके, डू यू वांट द वर्जन जिसमें उनके साथ दिलजीत दोसांझ भी हैं, द कोक स्टूडियो वर्जन?
1: ओके,
0: और आशीष आप कहां से कॉल कर रहे हैं हमें?
1: फ्रिस्को.
0: फ्रिस्को, ऑलराइट, थैंक यू.

0: की बनू दुनिया दा गुरदास मान और दिलजीत दोसांझ की आवाज में सुन रहे थे आप ये मस्त पंजाबी गाना. दिस पार्ट ऑफ आवर शो ब्रॉट टू यू बाय अटॉर्नी उमर खाजा हु इज एन एक्सपर्ट व्हेन इट कम्स टू injury and accident incidents because he knows how to deal with those attorneys and all those insurance companies that don't want to give you what you deserve as in the compensation. Free consultation bhi dete hain aur aapko koi fees bhi nahi charge karte until you win. So remember the name, that's attorney Omar Khwaja, 469-300-5046. Aaiye chalte hain next caller ki taraf. Funisha Radio, aap on air hai, aapka naam?
1: अजय
0: जी बोलिए. अजय कौन सी लैंग्वेज का गाना रिक्वेस्ट करेंगे?
1: मारवाड़ी सॉन्ग फ्रॉम आमिर खान चौधरी.
0: चौधरी ओके चौधरी. और आपने कहा आमिर खान?
1: मामे खान एम ए एम ई
0: खान. ओके मुझे नहीं. ओके सो आई थॉट आमिर खान है. उसे आमिर खान मारवाड़ी गाने गाते. दैट वाज फनी. ओके आई विल प्ले दैट फॉर यू. थैंक यू सो मच फॉर योर कॉल एंड आई बिलीव दिस इज योर सॉन्ग. और कहां से कॉल कर रहे हैं आप?
1: प्लेनो.
0: प्लेनो ऑलराइट थैंक यू हियर यू गो.

0: That was more Thor Tille Rana, Narodha Malini ki awaz mein sun rahe the aap ye gana. 38 minutes past 4. Today is the 15th of August 2026. Thank you for sharing your Saturday afternoon with us. Funisha Radio, aap on air hai, aapka naam? Hello, Funisha Radio, you're on the air.
1: Hello.
0: Ji, aap on air hai, aapka naam?
1: मेरा नाम मीनाक्षी है.
0: बोलिए, कौन सी लैंग्वेज का गाना रिक्वेस्ट करेंगी?
1: इट्स गोना बी नेपाली सॉन्ग.
0: नेपाली सॉन्ग. क्या नाम है आपके गाने का?
1: तीन ताते.
0: तीन ताते.
1: यस,
0: तीन ताते. ऑलराइट, दैट्स आई एम अस्यूमिंग थ्री वर्ड्स, राइट? तीन पाते, और इज इट वन वर्ड? लाइक जैसे तीन पत्ती, राइट?
1: वन वर्ड.
0: तीन पत्ती. ओके, ठीक है. थैंक यू फॉर योर कॉल. मीनाक्षी, कहाँ से कॉल कर रही हैं आप हमें?
1: डालस.
0: ऑलराइट, थैंक यू फॉर योर कॉल, एंड हियर इज योर सॉन्ग. एंजॉय.
1: थैंक यू.

0: मिल पाते। सुन रहे थे आप ये नेपाली सॉन्ग मीनाक्षी की रिक्वेस्ट पर। यू आर लिसनिंग टू दिल से एंड दिस इज आवर स्पेशल सेगमेंट बोली प्यार की, जिसमें हम आपको आपकी रिक्वेस्ट पर रीजनल लैंग्वेजेस के गाने सुनवाते हैं। इस सेगमेंट में उर्दू, हिंदी या इंग्लिश के गाने नहीं प्ले किए जाते। सो फार वी प्ले तमिल, सिंधी, बांग्ला, मैथिली, गुजराती, कन्नडा, उड़िया, पंजाबी एंड नेपाली सॉन्ग्स। सिंधी के तीन और तमिल के दो गाने हो चुके हैं। दैट मीन्स इन लैंग्वेजेस की हम और रिक्वेस्ट नहीं ले पाएंगे। फनीशा रेडियो, आप ऑन एयर हैं, आपका नाम? हेलो फनीशा रेडियो, यू आर ऑन द एयर, प्लीज स्पीक अप। आपकी कॉल कनेक्टेड है जी, आपका नाम?
1: हेलो हेलो अमरीन जी, मेरा नाम कौशिक है।
0: जी कौशिक, बोलिए, कौन सी लैंग्वेज का गाना रिक्वेस्ट करेंगे?
1: एक आसामी सॉन्ग, जुबिन का
0: आसामी
1: नाम है, अनामिका
0: Anamika, all right. Let me see if I can find that song for you. I think I did. And here it is. Thank you so much for your call. Kahan se call kar rahe hain aap hame?
1: Frisco se.
0: Frisco se. Thank you. Enjoy.

0: सुन रहे थे आप ये असमीज लैंग्वेज का गाना. होप यू एंजॉयड दिस पार्ट ऑफ बोली प्यार की इज ब्रॉट टू यू बाय द फ्लेवर लाउंज. आई नो वी हैव गॉट लॉट्स ऑफ पीपल ऑन होल्ड. आई एम गोना ट्राई टू टेक ऑल ऑफ द कॉल्स बिफोर 5 PM इफ पॉसिबल. लेकिन अगर आप डिस्कनेक्ट करेंगे यू गो बैक इन क्यू. देयर इज अ होल टाइम ऑफ 5 to 10 minutes ड्यूरिंग दिस सेगमेंट. स्पीकिंग ऑफ फ्लेवर लाउंज, दे आर नाउ सर्विंग ऑल न्यू वीकेंड लंच बुफे दैट हैज एवरीथिंग यू लव एट Flavor Lounge, and it's only $24.99 per person. You can also enjoy the buffet on Saturday and Sunday from 12 PM to 3 PM. That's what this is for. So take your family and friends and enjoy the delicious food at the Flavor Lounge again. That's the weekend lunch buffet from 12 to 3 PM every Saturday and Sunday with mouth-watering delicious dishes and exciting live counters only at the Flavor Lounge in Frisco. Chalte hain next caller ki taraf. Fanisha Radio, aap on air hai. Thank you for holding. Aapka naam? Hello, you're on the air. Please speak up.
1: Hi, my name is Rahul.
0: Ji, Rahul, boliye. Kaun si language ka gana request karenge?
1: Yeah, I want to request a Konkani song.
0: Okay.
1: It is called Yo Baile Yo.
0: Yo Baile Yo. Okay. क्या मतलब है इसका?
1: Come on, wife, come on. That's
0: okay. ठीक है. और आप कहाँ से कॉल कर रहे हैं हमको?
1: मैं आपको फ्लावर माउंट से कॉल कर रहा हूँ.
0: ऑलराइट, थैंक यू फॉर योर कॉल.

0: was Yo Baile Yo a Konkani song. आइए चलते हैं next caller की तरफ. Thank you for holding. आप on air है. आपका नाम? Hello. आप on air है. आपका नाम जी?
1: Hello. मेरा नाम अनुजा है.
0: बोलिए अनुजा जी, कौन सी लैंग्वेज का गाना रिक्वेस्ट करेंगी?
1: मराठी सॉन्ग.
0: मराठी. मैं सोच रही थी कि आज किसी ने मराठी गाने की फरमाइश नहीं की. बोलिए कौन सा गाना सुनेंगी?
1: मेरे बेटे का सबसे फेवरेट सॉन्ग है नाच रे मोरा बाय आशा भोसले.
0: नाच रे मोरा.
1: हाँ
0: नाच रे मोरा. ओके लेट मी सी इफ आई कैन फाइंड इट. और आप कहाँ से कॉल कर रही हैं हमको? डैलस से. थैंक यू फॉर योर कॉल. ये रहा आपका मराठी सॉन्ग. एंजॉय.

0: नाचे मोरा, सुन रहे थे आप ये मराठी सॉन्ग। आइए चलते हैं नेक्स्ट कॉलर की तरफ। फनीशर रेडियो, आप ऑन एयर हैं, आपका नाम? हेलो
1: हेलो
0: जी, आप ऑन एयर हैं, आपका नाम?
1: आई वांट टू लिसन वन मराठी सॉन्ग।
0: ऑलराइट, आई जस्ट प्लेड वन, दिस इज गोना बी द सेकंड मराठी सॉन्ग। व्हाट्स द नेम ऑफ योर सॉन्ग?
1: जीव रंगला दंगला फ्रॉम मूवी जोगवा।
0: जीव रंगला, ओके। और आपका क्या नाम है सर?
1: कीर्ति।
0: ऑलराइट, थैंक यू फॉर योर कॉल कीर्ति। ये रहा आपका मराठी सॉन्ग, दिस इज बैक टू मराठी सॉन्ग्स। एंजॉय।

0: सुन रहे थे आप हरिहरन और श्रेया घोषाल की आवाज में ये मराठी सॉन्ग बोली प्यार की. इज गोइंग टू रैप अप नाउ विद आवर फाइनल रिक्वेस्ट ऑफ द डे. लेट्स सी किस लैंग्वेज का गाना आप प्ले करने करेंगे. हम फनीशा रेडियो पर आप ऑन एयर हैं. आपका नाम?
1: Hey, my name is Krishna.
0: जी कृष्णा बोलिए, कौन सी लैंग्वेज का गाना रिक्वेस्ट करेंगे?
1: I'm requesting for Tamil.
0: Tamil song. I already played two Tamil songs. I'm so sorry. Any other language?
1: Maybe any Telugu song.
0: Okay, yeah. Kaun sa wala?
1: Any Rajnikant song.
0: Any Rajnikant song. All right, yeah. Let's see. Let me see if I can find one for you. Okare Okaru, is that good?
1: Yeah.
0: Okay, chalo, sounds good. I will play that for you. Ladies and gentlemen, let's go ahead and enjoy this first Telugu song, which is also going to be, I guess, our last song for Boli Pyar Ki. Agar aap hold par hain, I do apologize. Hamara ye segment 5 baje khatam ho jata hai. So we'll not be able to take any more requests. My apologies.

रजनीकांत पर पिक्चराइज किया गया ये तेलुगु गाना सुन रहे थे आप, विच वॉज द लास्ट सॉन्ग ऑफ टुडेज सेगमेंट. एज वी रैप अप बोली प्यार की, जस्ट वॉन्ट टू वंस अगेन थैंक यू ऑल फॉर बींग सच ग्रेट लिसनर्स. आप ही की वजह से हम अपनी इन साउथ एशियन लैंग्वेजेस को प्रमोट कर पाते हैं, शोकेस कर पाते हैं ड्यूरिंग द सेगमेंट बोली प्यार की. टुडे आई एक्चुअली वॉज एबल टू play 13 different South Asian languages, including Telugu, Marathi, Konkani, Assamese, Nepali, Punjabi, Odia, Kannada, Gujarati, Maithili, Bangla, Sindhi and Tamil. In fact, we played multiple songs in Tamil and Sindhi songs thanks to our callers. And before we go into the break, I want to remind you guys about Page 3 Eatery. Weekend hai. I know many people don't want to cook on weekends, so you want to go out, whether it's brunch, lunch or dinner. Page 3 Eatery is going to give you a great variety of kebabs, chaats, fusion bites, mocktails, whatever you're in the mood for. So chahe

डेट पे जा रहे हैं या फैमिली के साथ, पेज 3 ईटरी इज अ प्लेस टू गो. यू कैन विजिट देयर वेबसाइट फॉर डिटेल्स, दैट्स page3eatery.com.

0: the Fun Asia Network. You are listening to Fun Asia Radio 104.9 FM. KZMP 104.9 FM HD1, Pilot Point, Texas. Simulcasting on KTCG 104.1 FM HD2, Sanger, Texas. Powered by Fun Asia Films and Fun Pizza Kitchen.
1: Official tax and finance partner, AG FinTax.
0: Official injury law partner, the law offices of Omar Khwaja.
1: In association with Passion Health Primary Care.
2: Fun Asia 104.9 FM. Turn up the volume.
3: Beautiful home, Ravi. $1 million. Wow.
4: Thank you. Well, Sana and me just got lucky as Hussein Panjwani helped us with the purchase of our first home. He practically walked us through the entire process. Ever since, with his guidance and support, I've become a pretty savvy real estate investor myself. Unka radio show sunata, and then consulted with him for all my financing needs. Now my real estate portfolio has grown into many single family homes, apartment complexes, agricultural land, aur ab ye $1 million property bhi.
5: Hi, this is Hussein Panjwani. Dream Home will help you grow your real estate portfolio. Remember, we just don't promise, we deliver.
6: For details, visit dreamhomemortgage.com or call Dream Home Mortgage 972-245-5626 or email info@dreamhomemortgage.com. Some restrictions apply. Equal housing lender, NMLS 334616, Division of Brazos National Bank.
7: Desi flavors bhi aur Texas ke favorites bhi. Ab sab kuch milega ek hi jagah. HEB mein. Sona Masoori Rice, Nanak Paneer, Pale Ji Biscuits aur bahut kuch. Wahi authentic swaad jiske saath aap bade hue hain. Aur saath hi HEB ke exclusive Texan favorites jo aapko yahan pasand hai. अब एक ही शॉपिंग ट्रिप में ज्यादा काम निपटाइए और इस समर जरूर देखिए HEB के नए DFW स्टोर्स मिड सीरीज अर्विंग और मर्फी में खुल रहे हैं तो आज ही अपने नजदीकी HEB पर जाएं और खरीदिए अपने ट्रेडिशनल्स और टेक्सन फेवरेट्स HEB हियर एवरीथिंग इज बेटर
8: वीकेंड का प्लान अभी तक नहीं बना बस 90 मिनट्स नॉर्थ ऑफ डैलस चॉकटाव कैसीनो एंड रिसॉर्ट ड्यूरेंट में हर विजिट बन जाता है एक विनिंग एक्सपीरियंस पोकर हो या ब्लैक जैक एक्साइटिंग स्लॉट्स हो या फिर 20 अमेजिंग रेस्टोरेंट्स में जबरदस्त डाइनिंग और अगर ब्रेक चाहिए तो लग्जूरियस स्काई टावर और रिलैक्सिंग स्पा आपका इंतजार कर रहे हैं तो सिर्फ लकी फील मत कीजिए लकी बन जाइए चॉकटाव कैसीनो एंड रिसॉर्ट ड्यूरेंट एंटरटेनमेंट लग्जरी और एक्साइटमेंट सब एक ही डेस्टिनेशन में Please play responsibly. Must be 21 years or older to game.
9: Same order again? Same pizza? Same taste? Same story? Time to upgrade your cravings, Dallas. Because Fun Pizza Kitchen just dropped a bold new Mexican-inspired menu. And trust us, this is not your regular slice. Fiesta Veggie, Pollo Loco, Senor Cameron, Mucho Macho Pork. Different names, crazy flavors. Once you try these, your old order might just get ghosted. Fun Pizza Kitchen. New flavors, new obsession.
10: अजी सुनते हो
11: अजी नहीं एजी सुनते हैं
12: The OG of tax planning AG Fintax सुनेंगे आपके financial concerns देंगे smart solutions every Friday 9:45 AM only on Funasia Radio
13: Dude, लाइफ में कुछ ऐसा करना है जिसमें मैं फ्रंट पेज पे रहूं।
14: फ्रंट पेज का तो पता नहीं पर तेरा पेज 3 में होना मेरी गारंटी है
13: कैसे
14: पेज 3 ईटरी
13: नो नॉट अनदर रेस्टोरेंट अगेन
14: डूड इट्स पेज 3 स्टार्ट विद द बार सिग्नेचर कॉकटेल्स क्लासिक पोर्स एंड द फूड क्राफ्टेड टू सूट एवरी क्रेविंग एवरी एपेटाइट
13: मतलब ग्रेट फूड ग्रेट ड्रिंक्स एंड ग्रेट कंपनी यानी कि मैं
15: पेज 3 ईटरी ईट सिप गॉसिप रिपीट
16: Hello Texas Parivar, where do you go when bank says no? Are you self-employed? And are you struggling with your qualification? Yes, we have loan options for you. So call KJ Kamna Ko at 214-845-4189 kyunki aapka bharosa hi meri pehchan hai. NMLS 926641.
17: This 15th of August, don't just celebrate Independence Day, celebrate it the Indian way. Join India Association of North Texas's Anand Bazaar 2026 at the Comerica Center in Frisco. Saturday from 2 p.m. onwards, experience a grand Independence Day parade, authentic Indian food, colorful cultural performances, live music, shopping, family fun, and an unforgettable celebration of India's independence. And the best part? It's completely indoors and free for everyone.
18: Sponsorship booth from $3,000 to $50,000 and vendor stalls at $750. Call 214-529-3257.
17: Celebrate India's 80th Independence Day with the entire community. IANT Anand Bazaar 2026 on Saturday, the 15th of August, 2 p.m. onwards at the Comerica Center in Frisco.

बी पराग की आवाज में सुन रहे थे आप ये पेट्रियोटिक गाना एज पार्ट ऑफ आवर इंडियाज इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेशन. दैट्स व्हाट दिस नेक्स्ट आवर इज गोइंग टू बी डेडिकेटेड टू, विशिंग ऑल आवर इंडियन लिसनर्स अ वेरी हैप्पी इंडिपेंडेंस डे. इट्स 8 मिनट्स पास्ट 5. आप सुन रहे हैं द 15th August edition of दिल से. आई एम योर होस्ट अमरीन हसनान.

0: केसरी के बाद अब अरिजीत सिंह की आवाज में सुन रहे थे आप फिल्म राजी से लिया गया ये गाना। PMJ Jules is now in DFW and wishing you all a very happy Independence Day of India. If you are looking for beautiful jewelry, you know where to find it. PMJ Jewels in Frisco, located right on Main Street.
1: India in deep trouble now, having lost two matches in a row.
2: अपना है दिल ये आज का।
3: मैं मैच देखने नहीं आऊंगा।

नाचना जरूर है, मुझे नाचना जरूर है, मुझे नाचना जरूर है, माँ मेरी देखेगी नाचना जरूर है।

महालक्ष्मी अय्यर की आवाज में सुन रहे थे पना फिल्म से लिया गया ये गाना, जो कि काजल और आमिर खान पर पिक्चराइज किया गया था। इट इज 44 मिनट्स पास्ट 5 ऑन दिस 15th of August 2026 एंड दिस इज द इंडिपेंडेंस डे एडिशन ऑफ दिल से। हाउएवर देयर वाज समवन हु जस्ट लॉस्ट देयर इंडिपेंडेंस, दैट्स राइट, दैट वाज इब्राहिम जुनेद हु जस्ट गॉट मैरिड एंड हिज बडी राहिम वांट्स टू कांग्रेचुलेट हिम आई गेस for losing his independence. No, I'm just kidding, of course. Lots of Mubarak, I guess, to the newly wedded couple. Wish you all the best and all the happiness that comes with the wedding celebration and happiness of, I guess, a happy wedded life. All the best to you, Ibrahim. And we're going to continue, though, with our patriotic songs. This one taken from the film Chak De India.

एंड आज इंडिपेंडेंस डे के मौके पर फन पिज्जा किचन की तरफ से आपको मिलेगा $10 का गिफ्ट कार्ड एंड द लकी नंबर You guessed it, it is 15. If you're the 15th caller right now, you can win a $10 gift card from Fun Pizza Kitchen. 972-235-5555. 972-235-5555. You're welcome to call multiple times.

और इसी आखिरी गाने के साथ चाहूंगी आपसे इजाजत. आई होप यू एंजॉयड दिस इंडिपेंडेंस डे एडिशन ऑफ दिल से, एंड यू विल जॉइन मी अगेन टुमारो सेम प्लेस सेम टाइम, यानी के राइट हियर ऑन 104.9 एफएम बिटवीन 3 एंड 6 पीएम. दिस इज अमरीन हसनात साइनिंग ऑफ फॉर दिल से.

0: Point, Texas. Simulcasting on KTCG 104.1 FM HD2, Sanger, Texas. Powered by Fun Asia Films and Fun Pizza Kitchen.
1: Official tax and finance partner, AG FinTax.
0: Official injury law partner, the law offices of Omar Khwaja.
1: In association with Passion Health Primary Care.
2: Beautiful home, Ravi. $1 million. Wow.
3: Thank you. Well, Sana and me just got lucky as Hussein Panjwani helped us with the purchase of our first home. He practically walked us through the entire process. Ever since, with his guidance and support, I've become a pretty savvy real estate investor myself. Unka radio show sunata, and then consulted with him for all my financing needs. Now my real estate portfolio has grown into many single family homes, apartment complexes, agricultural land. Oh, harap, ye $1 million property bhi.
4: Hi, this is Hussein Panjwani. Dream Home will help you grow your real estate portfolio. Remember, we just don't promise, we deliver.
5: For details, visit dreamhomemortgage.com or call Dream Home Mortgage 972-245-5626 or email info@dreamhomemortgage.com. Some restrictions apply. Equal housing lender, NMLS 334616, Division of Brazos National Bank.
6: Kahan gaya? Kahan rakha tha? Suno na, mera wo wala set kahan hai?
7: Kaun sa?
6: अरे वो गोल वाला थोड़ा ट्रेडिशनल उसमें पोल की भी है.
7: अरे सारे तो सेम है.
6: नहीं वो श्री कृष्णा से जो लिया था ना हमने, ये देखो ये वाला.
7: ओ हाँ ये तो अलग है.
8: अलग तो होगा ही, श्री कृष्णा ज्वेल्स से जो है. From timeless gold and radiant diamonds to heritage polkis, discover Texas's largest handcrafted jewelry collection now at Main Street in Frisco. Shri Krishna Jewelers, crafted for moments that matter. Visit shrikrishna.com.
9: सुनो कल बहुत काम है, पहले ग्रोसरी फिर पूजा का सामान, गिफ्ट्स भी खरीदने हैं और इन सब कुछ के बाद मैं कुकिंग नहीं करने वाली, कहीं अच्छा सा डिनर करके आएंगे.
10: और ये सब कुछ अगर एक ही जगह हो जाए तो
9: कहाँ? फूडिस्तान इन ऑबरी, फ्रेश ग्रोसरी, हलाल मीट, पूजा एसेंशियल्स, लाइव पानी पूरी, केटरिंग सर्विसेज, प्लस लोएस्ट प्राइस मैच गारंटी. एंड इनसाइड फूडिस्तान, एंजॉय द प्रीमियम इंडियन कुजीन एट डीवाइव, एन अपस्केल रेस्टोरेंट फॉर द परफेक्ट फैमिली डिनर.
11: फूडिस्तान इन ऑबरी, मेंशन फन एशिया एंड एंजॉय 10% डिस्काउंट.
12: मैं शादी करूंगी तो करीना वाला डिजाइनर लहंगा पहन के करूंगी, वरना दूल्हे को टाटा बाय बाय करूं.
13: अरे मैडम, करीना वाला लहंगा और आपका बजट मैच करेगा क्या?
11: अब करेगा, बिकॉज इंडियन अटायर फ्रिस्को समर सेल इज ऑन. स्टनिंग लहंगास, एलिगेंट साड़ीज, ब्राइडल ज्वेलरी, मेंस एंड किड्स वेयर.
14: वेट, इतना सब और प्राइस?
11: अप टू 25% ऑफ ऑन लहंगास एंड ब्राइडल कलेक्शन समर सेल थ्रू द एंड ऑफ ऑगस्ट, ओनली एट इंडियन अटायर फ्रिस्को. ट्रेडिशनल हो या फ्यूजन, अब हर आउटफिट बोलेगा
15: मैं.
16: इट्स ट्रू, हम अपनी सद्बुद्धि से बहुत सी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं, बट समटाइम्स इवन द बेस्ट नीड अ लिटिल गाइडेंस. विद ओवर 400 इयर्स ऑफ फैमिली ट्रेडिशन थ्रू हिज एक्सटेंसिव नॉलेज ऑफ एस्ट्रोलॉजी एंड पाम रीडिंग, पंडित ईश्वर जी कैन हेल्प यू विद एनी डिफिकल्टी इन योर पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ, फ्रॉम रिलेशनशिप इश्यूज टू नेगेटिव एनर्जी रिमूवल. कॉल द मोस्ट ट्रस्टेड एस्ट्रोलॉजर पंडित ईश्वर जी 9455270897 और विजिट astrologerishwar.com.
17: जाने वो कौन सा देश जहाँ तुम चले गए.
18: आपका डॉक्टर गया लॉन्ग वेकेशन पर, कोई बात नहीं. पैशन हेल्थ प्राइमरी केयर के मल्टीपल लोकेशंस, एक्सपीरियंस फिजिशियंस के साथ क्वालिटी केयर कभी नहीं रुकती. और सिर्फ ट्रीटमेंट ही नहीं, आज ही अपना एनुअल फिजिकल शेड्यूल कीजिए. रेगुलर स्क्रीनिंग्स के साथ डिप्रेशन और एंजाइटी स्क्रीनिंग, अल्कोहल हेल्थ स्क्रीनिंग, फाइब्रो स्कैन, विटामिन B12 टेस्टिंग और बहुत कुछ. पैशन हेल्थ प्राइमरी केयर, हेल्थ केयर दैट नेवर टेक्स अ वेकेशन.
11: कॉल 214-666-6259 टू बुक योर अपॉइंटमेंट्स टुडे.
19: हेलो, मेरे रिलेटिव्स आ रहे हैं, एवरीवन्स आस्किंग लंच में क्या है.
20: फिकर नॉट, वी हैव द परफेक्ट सॉल्यूशन.
11: द फ्लेवर लाउंज इन फ्रिस्को ब्रिंग्स यू इट्स ऑल न्यू वीकेंड लंच बुफे, फ्रॉम फ्लेवरफुल इंडियन फेवरेट्स टू लाइव काउंटर्स एंड शेफ स्पेशल, 25 प्लस डिशेस, वेलकम ड्रिंक, चाट, एपेटाइजर्स, मेन कोर्स एंड डिजर्ट, सैटरडे टू संडे 12 PM टू 3 PM. This weekend, let the flavor lounge do the cooking.
21: ये तारा वो तारा हर तारा.
10: अरे अरे अरे, डैलस के आसमान में इतने सारे तारा नहीं. बिजनेस ओनर्स के लिए तो सिर्फ एक ही तारा काफी है, तारा कमर्शियल एनर्जी. 2002 से टेक्सास के हजारों बिजनेसेस का ट्रस्टेड एनर्जी पार्टनर. होटल्स, गैस स्टेशंस, वेयरहाउसेस, मेडिकल फैसिलिटीज, रिटेल स्टोर्स और ऑफिस बिल्डिंग्स, कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग, पर्सनलाइज्ड एनर्जी सॉल्यूशंस और एक्सेप्शनल कस्टमर सर्विस. तारा कमर्शियल एनर्जी, पावरिंग टेक्सास बिजनेसेस फॉर ओवर 2 decades. कॉल 844-428-2808 और विजिट taraenergy.com टुडे. तारा कमर्शियल एनर्जी, जो आपके बिजनेस को रोशन रखे.
22: वीकेंड का प्लान अभी तक नहीं बना? बस 90 मिनट्स नॉर्थ ऑफ डैलस, चॉकटाव कैसीनो एंड रिसॉर्ट, ड्यू
0: एंड में हर विजिट बन जाता है एक विनिंग एक्सपीरियंस. पोकर हो या ब्लैक जैक, एक्साइटिंग स्लॉट्स हो या फिर 20 अमेजिंग रेस्टोरेंट्स में जबरदस्त डाइनिंग, और अगर ब्रेक चाहिए तो लग्जूरियस स्काई टावर और रिलैक्सिंग स्पा आपका इंतजार कर रहे हैं. तो सिर्फ लकी फील मत कीजिए, लकी बन जाइए. चकचाल कैसीनो एंड रिजॉर्ट ड्यूरेंट, एंटरटेनमेंट, लग्जरी और एक्साइटमेंट सब एक ही डेस्टिनेशन में. प्लीज प्ले रिस्पॉन्सिबली. मस्ट बी 21 इयर्स ओल्ड टू गेम.

नमस्कार, सलाम, सत श्री अकाल एंड हेलो डैलस। आप सुन रहे हैं फनेशियर रेडियो 104.9 एफएम और मैं हूँ आरजे सिम्मी। आज का दिन काफी स्पेशल है। आज सिर्फ एक कोई मामूली डेट नहीं है, आज है 15 अगस्त, इंडिया का इंडिपेंडेंस डे। हर साल हम 15 अगस्त सेलिब्रेट करते हैं, तिरंगा देखते हैं, पैट्रियाटिक सॉन्ग सुनते आते हैं और व्हाट्सएप स्टेटस वगैरह भी लगाते हैं, सोशल मीडिया पर हैप्पी इंडिपेंडेंस डे लिखते हैं, सबको विश करते हैं। लेकिन आज ना मैं आपसे एक थोड़ा डिफरेंट सवाल पूछना चाहती हूँ कि आपके लिए इंडिपेंडेंस का मतलब क्या है? क्या ये कि आप अपनी मर्जी से जिए, या फिर आपको फाइनेंशियल फ्रीडम मिले, या फिर आप अपने डिसीजंस खुद ले पाए, या फिर हर वो हक जो हमें बिना किसी डर के अपनी जिंदगी जीने देने का मौका देता है, अपॉर्चुनिटी देता है? व्हाट डज इंडिपेंडेंस मीन टू यू? आई वांट टू नो फ्रॉम यू गाइज। और आपको मुझे कॉल करना है, फोन लाइन्स खुली हैं, नंबर है 9722355555।

आरजे सिमी और पूरे फनेशन नेटवर्क की तरफ से हमारे सारे लिसनर्स को अ वेरी हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। आई होप यू ऑल आर हैविंग अ गुड टाइम। और ये सॉन्ग्स प्ले करने से पहले मैंने आपसे एक सवाल पूछा था कि व्हाट डज इंडिपेंडेंस मीन टू यू, और काफी हमें सारे कॉल्स आए और कुछ इंटरेस्टिंग आंसर्स भी आए। सोनल जी ने कॉल करके बताया कि उनके लिए ना इंडिपेंडेंस डे का मतलब होता है कि वो सारे फ्रीडम फाइटर्स जिन्होंने अपनी लाइफ सेक्रीफाइस की हमारे लिए, सारे इंडियंस के लिए, कि वो आजाद हो पाए फ्रॉम द ब्रिटिश रूल, उन सबको वो याद करती हैं एंड शी इज वेरी वेरी ग्रेटफुल। सो इट्स अ डे ऑफ ग्रेटिट्यूड फॉर हर। और वहीं पे ऑन द लाइटर नोट संदीप का भी कॉल आया और उन्हें बोला कि भाई आजादी तो बीवी से चाहिए, क्योंकि वो ये क्यों किया, वो क्यों किया, ये सारे क्वेश्चन वो काफी पूछती हैं। तो आई नो कि इट वॉज ऑन अ फन नोट। सो एंड गाइज, बाकी लोग भी जो भी आप मुझे सुन रहे हैं, आप लोग मुझे कॉल करके बताइए कि वॉट डज इंडिपेंडेंस मीन टू यू। एक इंटरेस्टिंग चीज है कि हर स्टेज पे इंडिपेंडेंस का मतलब जो है चेंज होता रहता है। जब हम छोटे होते थे तो इंडिपेंडेंस का मतलब होता था कि स्कूल में 15th अगस्त को जाना है, सेलिब्रेशन हुआ करता था, व्हाइट यूनिफॉर्म पहनना है, तिरंगा देखना है लहरते हुए, मार्च पास्ट और जो थोड़े कल्चरल परफॉर्मेंसेस होते थे वो भी इंजॉय करना है। एंड द बेस्ट पार्ट ऑफ द सेलिब्रेशन यूज टू बी लड्डूज, वो तो कैसे ही मिस कर सकते हैं। और 15th अगस्त को यूजुअली पढ़ाई वगैरह नहीं होती थी, तो इट वॉज काइंड ऑफ हॉलीडे फॉर द किड्स। लेकिन जब हम बड़े हुए और हमको पता चला कि वॉट इंडिया हैड गॉन थ्रू, ब्रिटिश रूल से फ्रीडम मिली, और फिर रियलाइज हुआ कि भाई थैंक यू सो मच टू ऑल दी फ्रीडम फाइटर्स, ऐसा फिर हमको ग्रैटिट्यूड वगैरह हमारे भी जहन में आने लगा। और जैसे जैसे हम बड़े होते गए यही डेफिनेशन चेंज होती गई। और कॉलेज में जब इंडिपेंडेंस का पूछोगे तो उनको एक मैं जो दो अपने डिसीजन खुद लेने हैं, आई डोंट वॉन्ट एनी इंटरफेरेंस, आई वॉन्ट टू डिसाइड माई करियर माई पाथ। सो you know it depends person to person, and I want to know from you what does independence mean for you. You can call me at 972-235-5555.

0: Are you looking for a smarter approach to reducing taxes while building and preserving wealth? MyTime Equity, a registered investment advisory firm led by CPA Sudhir Pai, offers active portfolio management, structured notes, tax and financial planning, real estate strategies, AI and late-stage pre-IPO opportunities, and other alternative investments. Learn how a personalized strategy can help you pursue your financial goals. Visit mytimeequity.com or call 972-330-2771.
1: MyTime Equity is a fee-based registered investment advisory firm. This advertisement is for informational purposes only and does not constitute investment, legal or tax advice. Investing involves risk, including the possible loss of principal.
2: Shravan hame jodta hai Bhagwan se. Rakshabandhan hame jodta hai apno se. Aur kuch rishte एक डोर से शुरू होते हैं और एक अनमोल निशानी के साथ हमेशा के लिए अमर हो जाते हैं। हर रिश्ता अपनी एक कहानी लिखता है और PMJ ज्वेल्स उस कहानी को देता है सोने की चमक, हीरों की रोशनी और क्राफ्टमैनशिप जो पीढ़ियों तक साथ रहे।
3: PMJ ज्वेल्स नाउ ओपन ऑन 13215 मेन स्ट्रीट फ्रिस्को।
4: शादी ब्याह का कोई मौका हो या कोई त्योहार, खूबसूरत लिबास खुशियों को दुगना कर देता है।
5: हर खुशी में आपके साथ मान्यवर मोहे, ट्रेडिशनल सेलिब्रेशन वेयर फॉर मेन, वुमेन एंड चिल्ड्रन, क्राफ्टेड विद एक्सक्विजिट ब्लेंडेड फैब्रिक्स। मान्यवर मोहे, लोकेटेड ऑन रीजेंट बुलेवार्ड ऑफ 635 ईस्ट इन इरविंग।
6: हेलो टेक्सास परिवार, क्या आपको पता है देयर इज अ फर्स्ट टाइम होम बायर प्रोग्राम अंडर फेनी एंड फ्रेडी फॉर कंफर्मिंग लोन्स that helps you to get better rates by almost half a point to 1%. So call kijiye Kamna ko at 214-845-4189 kyunki aapka bharosa hi meri pehchan hai. NMLS 96641.
7: Coughing or sneezing at home? Your air duct may be to blame. And clogged dry vents can even cause fires. Duct Time removes dust, pollen, allergens and lint, giving you cleaner air, better health, energy savings and peace of mind. Serving the DFW area and 15 plus years of experience with CSIA certified technicians and free estimates. Fun Asia listeners get $100 off duct cleaning plus free dryer vent cleaning and sanitizer with service. Call Jeetu Patel at 972-877-2500 or visit callducttime.com. Breathe easy, live safe with Duck Time.
8: अगर आपकी नाइट भी तंदूरी डिलाइट्स के बिना अधूरी लगती है तो ये खबर आपके लिए। दिस समर एंजॉय 20% ऑफ ऑन ऑल एपेटाइजर्स, तंदूरी आइटम्स एंड मॉकटेल्स ओनली एट तंदूरी फ्लेम। चिकन तंदूरी, मलाई चिकन टिक्का, पनीर टिक्का, मोमो या सोया चाप, अब हर बाइट के साथ मिलेगी एक्स्ट्रा सेविंग्स। डाइन इन ओनली एट तंदूरी फ्लेम गार्डन, वेयर एवरी बाइट इज अ सेलिब्रेशन।
9: बेटा 95% आए?
10: हाँ मम्मी।
9: गुड, अब चलिए पापा आप अपना रिपोर्ट कार्ड दिखाइए।
11: मेरा?
9: हाँ, प्रॉफिट मार्जिन, कैश फ्लो, टैक्स प्लानिंग, बिजनेस गोल्स, सारे अकाउंट्स अपडेटेड।
11: वो
12: स्कूल का रिपोर्ट कार्ड साल में एक बार आता है, बट बिजनेस का रिपोर्ट कार्ड हर महीने। AG Fintax helps you understand profitability, cash flow, tax planning, business growth through bookkeeping and CFO services. Visit agfintax.com. Call 972-618-8555. AG Fintax, led by Forbes Finance Council member Anil Grandhi.
13: Services are subject to individual eligibility and applicable laws. Terms and conditions apply.
14: Genie, hukam meri akal. Hum aaj party ke mood mein hain. Ek aisi jagah batao jahan meri entry hi royal ho.
15: Miraj Lounge chaliye meri akal. Luxury limousine rides aapke intezaar mein hain.
16: मुझे ज्यादा क्राउड पसंद नहीं।
15: नो प्रॉब्लम आका, लग्जरी प्राइवेट स्पेस भी हाजिर है आपकी प्राइवेट पार्टी के लिए।
16: और एंटरटेनमेंट,
15: मूवी नाइट, बेली डांसिंग नाइट्स, प्रीमियम हुकर्स और अमेजिंग वाइब्स, सब आपकी खिदमत में है।
16: वाह जीनी, ये जगह है या कोई जादू?
15: जादू नहीं, मिराज लाउंज एट मिकिनी रेंज पार्कवे। मिरेकल्स हैपन इन मिराज।
17: This 15th of August, don't just celebrate Independence Day, celebrate it the Indian way. Join India Association of North Texas's Anand Bazaar 2026 at the Comerica Center in Frisco. Saturday from 2 p.m. onwards, experience a grand Independence Day parade, authentic Indian food, colorful cultural performances, live music, shopping, family fun, and an unforgettable celebration of India's independence. And the best part? It's completely indoors and free for everyone.
3: for sponsorship booth from $3,000 to $50,000 and vendor stalls at $750. Call 214-529-3257.
17: Celebrate India's 80th Independence Day with the entire community. IANT Anand Bazaar 2026 on Saturday, the 15th of August, 2 p.m. onwards at the Comerica Center in Frisco.

आप सुन रहे हैं फाइनेंशियल रेडियो 104.9 एफएम और मैं हूँ आरजे सिमी। आज हम बात कर रहे हैं अपने इंडिपेंडेंस डे के बारे में एंड फ्रॉम द इंटायर फाइनेंशियल नेटवर्क एंड फ्रॉम मी एज वेल आरजे सिमी, आप सबको अ वेरी हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। आई होप यू ऑल आर हैविंग अ गुड टाइम। अगर आपको लग रहा है कि कहाँ जाएं सेलिब्रेट करें तो कॉमेरिका सेंटर इन फ्रिस्को में जो है बहुत अच्छे सेलिब्रेशन हो रहे हैं। अगर आप अभी तक नहीं गए हैं तो आई थिंक इट्स ओपन टिल 9 or 10 PM, तो आप अभी भी जा सकते हैं, एक झलक ले सकते हैं। इट्स अ नाइस प्लेस, आई हैव बीन देयर। और जो लास्ट सॉन्ग था ना, वो रिक्वेस्ट था फ्रॉम सोहेल एंड मरियम। उनकी बहुत स्पेसिफिक रिक्वेस्ट थी कि भाई इसका ओरिजिनल वर्जन ही बनना चाहिए, तो आई गेस यू गाइज वुड बी लाइकिंग इट। और मुझे बहुत ही अमेजिंग और क्यूट छोटे बच्चों के कॉल्स आए। आई गॉट अ कॉल फ्रॉम यूरी एंड एज वेल एज फ्रॉम आसिफ, और उनसे बातें हुई। इट वॉज सो क्यूट टॉकिंग टू देम। यूरी ने जवाब दिया, हमने क्वेश्चन पूछा था कि भाई व्हाट डज इंडिपेंडेंस मीन टू यू, उन्होंने बताया कि इंडिपेंडेंस मीन्स फ्रीडम, फ्रीडम फ्रॉम ऑल द थिंग्स, ओके, फ्रीडम इन लाइफ। एंड इट वॉज रियली स्वीट। आई नो कि ये बच्चे जो है अमेरिका में पले बड़े हैं, लेकिन आई एम सो सो प्राउड ऑफ देम कि इनके जो रूट्स हैं, कल्चर्स हैं, वो अभी तक उनको अच्छे से याद है। दे नो वेल अबाउट इंडिया, दैट्स सो गुड। एंड आसिफ की एक क्यूट रिक्वेस्ट थी कि मेड इन इंडिया जो सॉन्ग है ना, वो दोबारा प्ले किया जाए। तो भाई आपकी इतनी प्यारी सी रिक्वेस्ट मैं कैसे ना लूँ। हियर इट इज़।

ये है फर्नीचर रेडियो 104.9 एफएम और आप सुन रहे हैं मुझे अर्ज सिमी को, और मेरा और आपका साथ अभी रहने वाला है पूरे के पूरे 9 बजे तक। तो कीप स्टेइंग इन ट्यून एंड कंटिन्यू लिसनिंग टू फर्नीचर रेडियो। आज हम जो है 15th अगस्त है, तो हम इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट कर रहे हैं, और हम सब की तरफ से फ्रॉम द इंटायर फर्नीचर नेटवर्क टू ऑल आर डियर लिसनर्स अ वेरी हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। और आज का ना जो शो है उसका भी एक स्पेशल एंगल है। हम में से बहुत से लोग हैं जो इंडिया से दूर है, मतलब बचपन जो है इंडिया में बीता, तो हमें इंडिया की बहुत सारी चीज़ें अभी तक याद है, लेकिन फिर हम बाद में यूएस में शिफ्ट हो गए, इंडिया से थाउजेंड ऑफ माइल्स अवे। किसी के पेरेंट्स इंडिया में हैं, किसी के फ्रेंड्स इंडिया में हैं, किसी का तो घर अभी भी इंडिया में ही है, और हम यहाँ अपनी एक नई लाइफ बिल्ड कर रहे हैं। तो मैं आपसे एक इंटरेस्टिंग सवाल पूछना चाहती हूँ कि इंडिया से बाहर आने के बाद आपको इंडिपेंडेंस का मीनिंग क्या ज्यादा समझ आया, आपको रियलाइज हुआ? क्योंकि जब आप घर से दूर होते हो ना, तो बहुत सारी चीजें खुद से करनी पड़ती हैं, जैसे कि घर पे खाना बनाना, अपनी लॉन्ड्री खुद करना पड़ता है, अपॉइंटमेंट्स, बिल्स, हर चीज का खुद ख्याल रखना पड़ता है, इवन कार के मेंटेनेंस का, जो कि वाज अ लग्जरी आई वुड से बैक इन इंडिया। और वहां पे पूरे फैमिली मेंबर्स होते हैं आपके साथ, आपको बहुत अच्छा आपकी जो है केयर की जाती है, एंड यू रियली डू नॉट हैव टू गेट ट्रबल्ड सो मच। ये सब जो घर वगैरह के काम है उनके लिए उतनी परेशानी नहीं होती है। लेकिन साथ ही जब हम यूएस आते हैं तो एक डिफरेंट काइंड ऑफ इंडिपेंडेंस भी मिलती है। आप अपनी आइडेंटिटी डिस्कवर करते हो, करियर बनाते हो, बहुत सारी चीजें यहां की भी अच्छी हैं, अपने डिसीजंस लेते हो। तो जब आप यूएस आए तो आपको किस चीज में जो है असली इंडिपेंडेंस दिखा? आई वुड लाइक टू नो। और कॉल हमारी लाइन्स जो है ओपन है, आप कॉल कर सकते हैं हमें @972-235-5555।

वंदे मातरम एंड हैप्पी इंडिपेंडेंस डे टू ऑल माय लिसनर्स. और आज ना एक एक डीप सवाल मैं आपसे करना चाहती हूँ, क्योंकि हम इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट कर रहे हैं. हम कहते हैं ना, इंडिया इज फ्री, वी आर फ्री, लेकिन क्या हम मेंटली फ्री हैं? क्या इस क्वेश्चन से फ्री हैं कि लोग क्या कहेंगे, फैमिली क्या सोचेगी, सोसाइटी क्या कहेगी, रिलेटिव्स क्या बोलेंगे? कितनी बार हमने अपनी खुशी सिर्फ इसलिए पोस्टपोन कर दी क्योंकि हमें इस बात का डर था कि लोग क्या कहेंगे. मे बी इंडिपेंडेंस का एक इंपॉर्टेंट पार्ट ये भी है कि वी शुड बी फ्री फ्रॉम अदर पीपल्स ओपिनियन. हम अपनी लाइफ के डिसीजंस खुद ले सके, गलती करें, उस गलती से सीखें और फिर दोबारा ट्राई करें. दैट्स ऑल इट इज. इंडिपेंडेंस का मतलब ये नहीं कि हमें किसी की जरूरत नहीं है, हम तो भाई हर चीज खुद ही कर लेंगे. इंडिपेंडेंस का सही मतलब ये है कि मुझे सपोर्ट की जरूरत हो सकती है, लेकिन मेरे लाइफ के डिसीजंस ना मेरी चॉइस से ही होंगे. दिस वॉज माई वर्जन ऑफ इंडिपेंडेंस. एंड विद दिस वी आर क्लोजिंग दिस सेगमेंट जहां हमने आपसे पूछा था, What does independence mean to you? This is Arjun Simmi and stay tuned guys. अभी बहुत सारी बातें और करनी है, दूसरे segments आने वाले हैं after this song and a break.